नमस्कार। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर जी आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आज शनिवार है, शक्षमवत 1948 के ज्येष्ठ मास की दूसरी तिथि तदनुसार 23 मई 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 39 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। हम अपने कार्यक्रमों के साथ अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं।

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। हिंदी में समाचार कुछ पलों में आकाशवाणी दिल्ली से होंगे।
1: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो

0: चार दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहलिंग कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केन्द्र प्रौद्योगिकी अवसंरचना इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना साथ ही विनिर्माण नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले ही समूह स्वर में देशभक्तिपूर्ण मातृ वंदना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ही गुलिस्तान हमारा। आइए देशभक्तिपूर्ण ये मातृ

समूह स्वर में देशभक्तिपूर्ण मातृवंदना अभी आप सुन रहे थे। लीजिए अब सुनिए वाणी जयराम और दिनकर कैंकिनी के स्वर में ये मीराबाई का भजन।

अभी आपने ये मीराबाई का भजन सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। लीजिए अब सुनिए पंडित कुमार गंधर्व के स्वर में ये भजन।

अभी आप ये मनमोहन भजन सुन रहे थे पंडित कुमार गंधर्व के स्वर में। श्रोताओं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना के साथ। अगला भजन मोहम्मद रफी के स्वर में। श्रोताओं, संत कबीरदास जी लिखते हैं, माला फेरत जुग भया, फिराना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अर्थात हाथों से माला फेरने से कुछ नहीं होता जब तक मन की मलिनता दूर नहीं होती, यानी सच्ची भक्ति ही मन की शुद्धता में है। आइए मोहम्मद रफी के स्वर में एक और भजन।

0: भगवान श्री राम जी का भजन अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी के स्वर में। भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना के आज के इस क्रम के समापन में हम आपको सुनवा रहे हैं हनुमान जी का एक मुखी ये मंत्र हरिओम शरण के स्वर में।
1: हनुमत कवच का पाठ करने के पश्चात श्री रामदूत भक्त वत्सल अशरण शरण संकट मोचन श्री हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए श्री एक मुखी हनुमत कवच का पाठ करने का विधान है। श्री हनुमान जी का पंचमुख स्वरूप उनका आध्यात्मिक रूप है। श्री राम भक्त श्री हनुमान जी सामान्य रूप

में एक मुखी ही हैं, इसीलिए इस कवच को महाकवच कहा गया है। जो व्यक्ति श्री एकमुखी हनुमत कवच का विधिवत पाठ करता है या श्रवण करता है, उसे समस्त सांसारिक सुखों के साथ साथ मोक्ष भी प्राप्त होता है।

0: स्वर्ण कांतिम द्विभुजम चक्रतांजलिम।
1: श्री हनुमान कवचम के इसी पाठ के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से कुछ देर बाद 6:35 पर किसान भाई खेती किसानी में सुनेंगे ऊसर भूमि सुधार, इस विषय पर जानकारी। 6:40 पर श्री रामचरित मानस गान का संगीतमय पाठ। आज आप सुनेंगे 407वीं कड़ी। गायक होंगे सुरेश वाटकर और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का होगा। 6:50 पर चिंतन। सुबह 7:20 पर बुंदेली सुगंध में हम आपको सुनवाएंगे हरबल सिंह लोधी से उनका बुंदेली काव्य पाठ। 7:30 पर फिल्म संगीत। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे गीत गुंजन। 9:00 आप सुनेंगे लोक रंग कार्यक्रम में राजकमल अहिरवार से उनके गाए हुए बुंदेली लोकगीत। 9:30 पर श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का संयोजित साप्ताहिक कार्यक्रम जब आप गुनगुना उठे, प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। 10:05 पर आप सुनेंगे सब रंग में मिश्रित संगीत, इसमें भजन गजल गीत फिल्म गीत और एक फिल्मी धुन आप सुनेंगे। 10:30 पर श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद हम आपके लिए लेकर आएंगे। दिन में 11:00 भोपाल से फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारी, 12:00 भोपाल से ही आपकी फरमाइश, 12:30 पर भोपाल केंद्र से संग्रहालय से, दिन में 1:00 महिला कार्यक्रम महिला सभा आकाशवाणी भोपाल से आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति में, 1:30 पर आकाशवाणी रीवा की ही प्रस्तुति में आकाशवाणी भोपाल से लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति में। हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5:02 पर युववाणी आकाशवाणी रीवा केंद्र की प्रस्तुति में होगी। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। शाम 6:00 आप सुनेंगे केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं पर केंद्रित रेडियो रिपोर्ट, प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। शाम 6:30 पर बुंदेली लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में कलाकार होंगे भागचंद्र पटेल। शाम 7:20 पर ग्रामसभा कार्यक्रम में हमारे ग्रामीण भाई बहन सुनेंगे श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम हेलो लोक रंजन, प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। आज की सीख में जो आप खोना काहे, जो आप खोना चाहे वो कि बाप खोना चाहिए। रात 8:00 आकाशवाणी भोपाल से सुर्खियों में 8:15 पर फिल्म संगीत। रात 9:15 पर आकाशवाणी दिल्ली से स्पॉटलाइट। 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से ही राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती। 10:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। श्रोताओ ये था कार्यक्रम विवरण। हम आपको याद दिला दें सुबह 6:35 पर आप सुनेंगे खेती किसानी में ऊसर भूमि सुधार, इस विषय पर जानकारी। 6:40 पर श्री रामचरित मानस गान का संगीतमय पाठ होगा। 6:50 पर चिंतन। सुबह 7:20 पर बुंदेली सुगंध में हरबल सिंह लोधी से उनका बुंदेली का पाठ होगा। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए आप सुनिए खेती किसानी। आज का विषय है ऊसर भूमि सुधार।
2: पंच भैया रो आज हम अपन का जानकारी दे रहे हैं खासतौर से उन किसान पंचन की लाने जिनके कछु खेत ऊसर हो गए हैं या पहले से ऊसर हैं। एक लाने भैया अपन का करने हैं कि एक प्रकार की कार्य योजना बनाओ ने। पहला तो जितनी जांगा अपनी ऊसर है उखा 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई तक जोत के और फिर उको 100 समतल कर देने हैं, मतलब एक सी जांगा बना लेने। फिर उमे का करने कि जब बस समतल हो जाए और 20-25 सेंटीमीटर गहरी की जुताई हो जाए फिर उमें भैया पानी भर देने और ऊ पानी खा चाहो तो अपन मचा सका था। जैसे अपन धान बेग तब नहीं मचा दे ऊखा मचा ले और वही में जो जैसे कछु नई जांगा है उस रीली हथी से पुरखने नई जोती अपन ऊखा जोतन लगे तो उमें भी 25-30 सेंटीमीटर तक की गहरी जुताई अपन कर देने। इसे भैया जो पानी को रिसाव है वो ज्यादा नीचे तक जे है और अपन खा सुविधा हो जाए। ऊसर सुधार में जल निकास बहुत ही जरूरी रात है भैया। काय से जैसे कहने लगे अपने गुर्दा का बिल्कुल साफ करो खूब पानी पियो तो ऐसे जो ऊसर

0: उमें जितनी ज्यादा अपन उखो पानी से भरो, उके जो घुलनशील लवण है जो हानिकारक अपनी मिट्टी में जाके लवणता पैदा कर दे, वे भैया अपन बाहर निकाल रहे हैं। बाहर निकाल भी मैं सोई एक सावधानी करने है। कैसी कि जब अपन जल निकास नाली खेत से बनाओ तो ऐसी जगह से बनाने हैं कि वह खेत से अपने खेत से दूसरे जगह में वो ना तो पानी जावे वो बना नाली पहुंचे, जो पानी सीधी जो है कोनो नदी नाले में बह जाओ चाहिए। कैसे जी के खेत में जो लवण युक्त जो घुलनशील हानिकारक लवण है पानी जो है तो ऊखा भी वो है ऊसर बना दे है। तो ई बात को ध्यान रखे। अब इमें अपन का करने के कछु ऐसी काम है जिनसे अपन रसायन आउत अपने काया आउत भैया रसायन, इन्हें बोलत है मिट्टी सुधारक रसायन। जैसे अपने जिप्सम रसायन को नाम अपन ने सुनो होंगे, तो ऊसर वाले जो खेत हैं उनमें जिप्सम इका पाइराइट को प्रयोग मिट्टी परीक्षण के परिणाम के आधार पर अपन का कर लेने हैं। अपन जिप्सम को प्रयोग करें उके पहला खेत में 5-6 मीटर चौड़ी क्यारियां लंबाई में बनाऊ चले जाए। मिट्टी परीक्षण परिणाम की जो कृषि वैज्ञानिक भैया या मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला से अपन का सिफारिश मिलत है वही के आधार पे अपन का जिप्सम जो तत्व है जो रसायन है उसको प्रयोग करने हैं। ई के फैलावे के बाद तुरंत ही अपन अपने ट्रैक्टर देसी हल या कल्टीवेटर लगा के उसकी जो माटी है उसकी ऊपरी मतलब 8 से 10 सेंटीमीटर की सतह में उसका मिला देने हैं। काहे का जो जिप्सम रसायन जो है ठीक है खेत खान समतल करके पानी भर के रिसाव क्रिया अपन करने हैं। पहले खेत में 12 से 15 सेंटीमीटर पानी भर के छोड़ देने और जो पानी कम से कम 8-10 दिन तक उन्हें भरो रहो चाहिए और जब इतने दिन हो जाए तो फिर जो अपन ने जल निकास वाली नाली बनाई उके बाहर पहुंच के फिर से जो पानी अपन का निकाल देने और फिर 10-15 सेंटीमीटर पानी में भर देने हैं। जोन के अपने ऐसे ऊसर खेत हैं उनमें भी यह फसल चक्र जरूर अपन का अपनाने का अपनाओने फसल चक्र और कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनका पहले बेवने हैं। जैसे अपन धान बे रहे तो नरेंद्र धान है, धान पंत 4 है, पंत 12 है जो उनके ऊसर माटी में भी पैदा हो जाए। तो अगर कहूँ अपन गेहूं बेओ तो KRL है, 19A लोकवन है, WH 157 है। उमे भैया अपन दूसरी बार का करने हैं कि फसल चक्र बदल बदल के अपन का फसलें बेवने हैं। इमें जो ढेंचा की हरी खाद है वो भी ऊसर के लाने सबसे अच्छी मानी जाती है। मैं ढेंचा फसल को जो बीज है वो अपन बे देने जब वो 30 से 40 दिन को हो जाए फसल तो ऊखा अपन का जो है अपने खेत में मिला देने। उमें जिप्सम रसायन खान 2 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से अपन अपने खेत में मिला लेने और 20 से 30 सेंटीमीटर मोटाई की धान को प्यारनी हो जो ऊखा बिछा के और फिर से पानी भर के और ऊ खाद खा और धान के प्यार खा वही में सड़ा देने। तो निश्चित है कि भैया अपन की जो जमीन है वह ऊसर होवे से बचे और जो ऊसर हो गई वह जो है अच्छी उपजाऊ जमीन बन सकत है।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती किसानी, आज का विषय था ऊसर भूमि सुधार। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरितमानस गान का संगीतमय पाठ। आज आप सुन रहे हैं 407वीं कड़ी। गायक सुरेश वाटकर हैं और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का है।

पक्षीराज गरुड़ काक भुशुंडी से ज्ञान और भक्ति का निरूपण सुनकर वैकुंठ को जा चुके हैं। भगवान शिव गरुड़ काक भुशुंडी संवाद की कथा पार्वती को सुनाते हुए उसका समापन करते हैं। हे उमा, वो कुल धन्य है जिसमें श्री राम के अनन्य भक्त का जन्म होता है। तुम्हारा अनुराग देखकर मैंने ये कथा तुम्हें सुनाई है। ये आख्यान धूर्त व्यक्ति को नहीं सुनाना चाहिए,

नहीं उन हठधर्मियों को जो प्रभु लीलाओं का गान मन लगाकर और श्रद्धा के साथ नहीं सुनते। ये कथा लोभी, क्रोधी तथा कामी लोगों को भी नहीं सुनानी चाहिए। इसे सुनने के अधिकारी वे होते हैं जिनकी गुरु चरणों में प्रीति होती है और जो नीति के मार्ग पर चलते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से जन्म मरण की व्याधि से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। जो इसे कहते सुनते और इसकी प्रशंसा करते हैं उन्हें भव सागर पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। भरतवाज मुनि को शिव पार्वती के माध्यम से राम कथा याज्ञवल्क्य जी ने सुनाई। कहा, शंभु और उमा का ये कल्याणकारी संवाद शोक का नाश कर जन्म मरण से मुक्ति दिलाने वाला है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कांड का संगीतमय पाठ, गायक सुरेश पाटकर और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए आप सुनिए आज का चिंतन।
1: आज मनुष्य मानसिक और दैहिक पीड़ा से ग्रस्त है। कारण है हम प्रकृति जन्य जीवन के शाश्वत सत्य और मूल्यों से स्नेह स्नेह दूर होते जा रहे हैं। हम व्यक्तिगत तो होते जा रहे हैं, किंतु व्यक्तिगत चिंतन मनन आत्म साधना और ज्ञान से भी परे होते जा रहे हैं। सदियों से हमारे पूर्वजों विशेषकर ऋषियों मुनियों का संपर्क संसर्ग सदैव प्रकृति से रहा है। उन्होंने जप तप एवं साधना के बल पर जो हमें ज्ञान दिया उसके मूल में प्रकृति ही रही है। उनके प्रेरणा स्रोत पशु पक्षी नदी नाले वृक्ष लता ही थे, जिनके संसर्ग से हमें ज्ञान विज्ञान और भौतिक सुखों की प्राप्ति हुई। विज्ञान ने हमें भौतिक सुख सुविधाएं तो दी, परंतु हमें प्रकृति से दूर भी किया है। प्रकृति से परे अथवा उससे छेड़छाड़ करके हम चिरंतन सुख प्राप्त नहीं कर सकते। उसके किसी भी भाग का अत्यधिक दोहन करने से उसकी कमी के कारण दूसरी समस्याएं आन खड़ी होती हैं, चाहे वो वन जल भूमि समुद्र पर्वत पत्थर अथवा पर्यावरण ही क्यों न हो।

0: प्रकृति सदैव परोपकारी रही है, वो किसी न किसी रूप में मानव को कुछ न कुछ देती रही है और देती रहेगी। अब वृक्ष को ही लें जिन्हें हम निर्जीव मानते हैं, क्योंकि वे बढ़ते हैं, प्रजनन करते हैं, लेकिन मानव की भांति संपूर्ण रूप से सजीव भी नहीं मानते। ऐसा निर्जीव वृक्ष भी अपने को पत्थर मानने वाले को फल देता है, काटने वाले को लकड़ी, ईंधन और इमारत की छाया देता है। उसका जीवनोपरांत भी परोपकारी गुण हमारे लिए अनुकरणीय है। तुलसी संत स्वंब तरु फूल पलही पर हेतु इत्ते जे पाहन हनत उत्ते भी फल देत। ठीक वृक्षों की ही भांति संतों का स्वभाव भी होता है कि अपने को क्षति पहुंचाने वाले का भी वे उपकार ही करते हैं। आज भौतिकवादी मनुष्य सज्जनता को मूर्खता का पर्याय मानता है और अपने स्वार्थी दृष्टिकोण के कारण उसका दुरुपयोग करता है। वृक्ष और सज्जन की एक ही स्थिति है, निश्चय ही ये स्थिति विराट रूप लेती जा रही है। अपने भौतिकवादी और स्वार्थीपन के कारण अध्यात्म और परोपकार से हम दूर होते जा रहे हैं। हमारा सारा ध्यान वर्तमान जीवन पर ही केंद्रित है, जबकि इसके ऊपर आत्मा है। शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। जो अनश्वर है वो कभी भी हमें गलत कार्य हेतु प्रेरित नहीं करती, वो तो परमात्मा का स्वरूप है और परमात्मा कण कण में व्याप्त है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो मौन है, शांत है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। वो भी इस संसार का एक अंग है और प्रकृति का प्रत्येक अंग एक दूसरे से सांगोपांग संलग्न है, एक दूसरे का पूरक है तथा प्रकृति के संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भी है। जैसे हमारे शरीर का एक अंग रोगी, क्षतिग्रस्त अथवा कार्य करने के योग्य न होने के कारण सारा तन मन प्रभावित होता है, शरीर दुखी और असमर्थ हो जाता है, उसी प्रकार प्रकृति के एक भाग की कमी सारे संसार को प्रभावित भी करती है। हमारी अनजान फूलों का वो दंड भी देती है। पर्यावरण प्रदूषण, वर्षा का न होना या संतुलित न होना, वन्य तथा अन्य प्राणियों की अनेक प्रजातियों का विलुप्त होना, ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र का मर्यादा लांघना, मनुष्य द्वारा प्रकृति से छेड़छाड़ और संसाधनों जंगलों का अंधाधुंध दुरुपयोग और सफाया ही प्राकृतिक दंड नहीं तो और क्या है। ये सब हम और हमारी आत्मा जानती है, पर हम अपने भौतिकवादी स्वभाव और सुविधा भोगी बन के कारण उसे अनदेखा कर देते हैं। दूसरे को पत्थर मारकर हम उससे प्रेम की अपेक्षा रखते हैं। यदि हम प्रकृति से प्रेम, संरक्षण, संवर्धन एवं संतुलन स्थापित करने में सहायक होंगे तो प्रकृति भी हमें पल्लवित और पोषित करने का कार्य जो सदियों से करती चली आ रही है अवश्य ही करेगी। हमारी परमात्मा स्वरूपा आत्मा भी तृप्त और आनंदित होगी। ईश्वर की असीम अनुकंपा के हम पात्र स्वयमेव बन जाएंगे। आवश्यकता है तो हमारे परोपकारी स्वभाव को पुनर्जागृत करने की, प्रकृति में समाहित परमात्मा के स्वरूप के दर्शन कर उसे आत्मसात करने की और अपने ही समान सबके महत्व को स्वीकारने की। इसीलिए हम समझें कि हम प्रकृति के महत्वपूर्ण अंश तथा अंग हैं और प्रकृति हमारी ही आधार है। इसीलिए प्रकृति को माँ की गोद कहा जाता है। कौन भला ऐसा होगा जो अपनी माँ को दुखी देखना चाहता हो, और कौन ऐसी माँ होगी जो अपनी संतान को दुखी करे। हाँ, न समझियों पर दंड देने की उसे आवश्यकता न पड़े, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से होंगे।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्येषश्च आतंकवादं निवारणाय बहुपक्षीय प्रयासानां सुदृढीकरणाय तथा संयुक्त राष्ट्र संघस्य संरचनान्तर्गतं अन्ताराष्ट्रिय आतंकवादस्य विषये समग्र सम्मेलनं शीघ्रमेव अन्तिमीकृत्य स्वीकर्तुम् आहूतवन्तौ। ह्यः नवदिल्ल्याम् उभयोः नेत्रोः मध्ये वार्तायाः अनन्तरं प्रदत्ते संयुक्त वक्तव्ये उभौ पक्षौ संयुक्त राष्ट्रसंघे तथा यूरोपीय संघे च निर्दिष्टानाम् आतंकवादिनाम् आतंकिसंघटनानां च विरुद्धम् अपि च संयुक्त

0: संघस्य सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समित्याः अन्तर्गतं सूचीबद्धानां सप्तषष्ठ्यधिक द्विशतोत्तरैक सहस्रं यावत् आतंकि संघटनानां विरुद्धं प्रबलं समन्वितं च कार्याचरणाय आग्रहं कृतवन्तौ।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: उभौ पक्षौ साइबर सुरक्षायाम् अपि च उदयोन्मुख प्रौद्योगिक्यां विशेषावधानेन सह रक्षा उद्योगयोः मध्ये सहयोगेन सह रक्षा सुरक्षा सहकारं सुदृढीकरणेऽपि सहमतौ अभवताम्। अस्मिन् सन्दर्भे साइप्रस डिफेंस एंड स्पेस इंडस्ट्रीज क्लस्टर तथा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इत्येतयोः मध्ये संधिपत्रे हस्ताक्षरं जातम्। प्रधानमंत्री श्रीनरेन्द्रमोदी अद्य 21वें रोजगार मेलायां विविध प्रशासकीय विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तानां यूनां कृते 150,000+ नियुक्तिपत्राणां वितरणं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति आभासीय माध्यमेन करिष्यति। अमेरिकादेशस्य विदेश सचिवः मार्को रूबियो इत्येषः अद्य भारतस्य चतुर्दिवसीय यात्रायां कोलकातानगरम् आगमिष्यति। इदं तस्य प्रथमं भारत पर्यटनं भविष्यति। कोलकातानगरे प्रवासावधौ श्रीरूबियो वर्येण मदर टेरेसा वर्यायाः समाधिस्थले श्रद्धाञ्जलिः अर्पणस्य अपेक्षा अस्ति। सः विक्टोरिया स्मारकमपि द्रष्टुं शक्नोति। पश्चात् अमेरिकादेशस्य विदेश सचिवः नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह मेलनं विधास्यति। श्वः श्रीरूबियो राष्ट्रिय राजधान्यां विदेश मन्त्रिणा एस जयशंकरेण सह वार्तालापं करिष्यति। सः अमेरिकादेशस्य दूतावासस्य स्वातन्त्र्य दिवसोपलक्ष्ये आयोजिते कार्यक्रमेऽपि भागं ग्रहीष्यति। सोमवासरे श्रीरूबियो वर्यः आगरा जयपुर नगरयोः भ्रमणं करिष्यति। तत्पश्चात् मंगलवासरे भारते आयोजिते क्वाड विदेश मन्त्रिणां सभायां भागं ग्रहीतुं नवदिल्ल्यां प्रत्यागमिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य पूर्वीय मध्य प्रदेशे, पूर्वीय उत्तर प्रदेशे, विदर्भे च तीव्रतर उष्ण तरंगस्य स्थित्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारितास्ति। अद्य दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्ण तरंगस्य स्थित्यां आईएमडी विभागेन नारंगवर्णीया संचेतना प्रदत्ता अस्ति। तटीये आन्ध्रप्रदेशे, तेलंगानायां, पश्चिम मध्यप्रदेशे, पश्चिम उत्तरप्रदेशे च अद्य दिने तथैव स्थितिः भविष्यति। अद्य दिल्ल्याम् अधिकतमं तापमानं 45 डिग्री सेल्सियस यावत्, न्यूनतम तापमानं 27 डिग्री सेल्सियस यावत् भवितुं शक्नोति। अन्त्यक्रीडा वार्तायाम् आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां सनराइजर्स हैदराबाद दलेन हैदराबादे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू दलं 55 धावनांकैः पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ नगरे पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स दलयोः मध्ये क्रीडा भविष्यति। इति वार्ताः।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने

0: तथा अपनाने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। दोनों नेताओं ने उग्रवाद, कट्टरता, आतंकवाद का वित्त पोषण और धन शोधन का मुकाबला करने के लिए अधिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आतंकी गतिविधियों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग रोकने तथा आतंकियों की भर्ती से निपटने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अमरीका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री गैबार्ड ने कहा कि वे 30 जून से अपने पद से हट जाएंगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सुश्री गैबार्ड की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रशासन को उनकी कमी महसूस होगी। सुश्री गैबार्ड के बाद राष्ट्रीय खुफिया प्रधान उपनिदेशक आरुण लुकास कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। मंत्रालय ने कहा कि जिम्मेदारी के साथ उपयोग और जनता का सहयोग ईंधन की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होगा। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में राज्यपाल संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सके। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Sunil Verma. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidis have called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and for the early finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. In a joint statement issued after talks between the two leaders in New Delhi yesterday, both sides urged strong

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। 47 शहरों में एक साथ होगा आयोजन। देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर्याप्त, पेट्रोलियम मंत्रालय की लोगों से अपील, खपराहट में ईंधन न खरीदें। भोपाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्री समिट का हुआ आयोजन। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, जीडीपी का आधा हिस्सा जैव विविधता से जुड़ा। और त्रिशा शर्मा मौत मामले में पति समर सिंह ने कोर्ट में किया आत्मसमर्पण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश के 47 स्थानों पर एक साथ आयोजित होगा। चुने गए युवा रेल, गृह, स्वास्थ्य और वित्त समेत कई सरकारी विभागों में काम संभालेंगे। श्री मोदी इस मौके

0: पर युवाओं को संबोधित भी करेंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर्याप्त और स्थिर है। कुछ जगहों पर अस्थायी दबाव को तेल कंपनियां निगरानी और समन्वय से दूर कर रही हैं। मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि घबराहट में ईंधन न खरीदें और केवल जरूरत के मुताबिक ही खरीदारी करें। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर कल भोपाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का प्री समिट हुआ। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश की जीडीपी का आधे से अधिक हिस्सा जैव विविधता से जुड़ा है और इसे बचाना जरूरी है। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व के आसपास वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर बनाए जाएंगे ताकि घायल जानवरों को भोपाल न लाना पड़े।
1: तो हमारा कान्हा वैसे तो दुनिया का सबसे बढ़िया टाइगर रिजर्व के रूप में उसको नंबर वन का स्थान मिला है और उसकी नई शोभा बढ़ गई। हम अपने जंगली बफेलों को लेकर के वहां आज एक अलग प्रकार के दौर में पहुंचे। प्राणी जिनके कारण से जंगल की शोभा बढ़ती है वो सब हमारे यहाँ होना चाहिए। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार ने जल संरक्षण को लेकर भी तीसरा साल चल रहा है। अपने प्रदेश भर के अंदर इसमें बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने दोनों मंत्रालयों में 10-10 अधिकारियों की टीम बनाने का निर्देश दिया जो नागरिकों की शिकायतों की भी रोज समीक्षा करेगी। बैठक में कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र में एआई और डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता पर जनता के सुझाव लेने के लिए कल ucc.mp.gov.in नाम से वेबसाइट लॉन्च की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में इस वेबसाइट का विमोचन किया। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और भरण पोषण जैसे पारिवारिक कानूनों पर 15 जून 2026 तक सुझाव दिए जा सकते हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में उसका पति समर्थ सिंह कल शाम जबलपुर जिला न्यायालय में आत्मसमर्पण के लिए पहुंचा, जहां पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। ट्विशा की मौत के बाद से वो फरार था। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत न मिलने के बाद उसने आत्मसमर्पण किया। वहीं दूसरी तरफ कल हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए ट्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स से कराने का आदेश दिया है। ट्विशा की 12 मई को संदिग्ध हालात में मौत हुई थी। इसके अलावा राज्य सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को भी सौंप दी है। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एनटीए की विशेषज्ञ मनीषा हवलदार को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, पुणे, लातूर समेत कई शहरों में कुल 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सीबीआई ने लातूर के 2 डॉक्टरों से भी पूछताछ की है। इन पर बच्चों के लिए लीक पेपर खरीदने का संदेह है। जांच में और अभिभावकों, छात्रों, बिचौलियों के नाम सामने आने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में बताया गया कि ड्रोन से पेट्रोलिंग के जरिए बिजली लाइन ट्रिपिंग 35% कम हुई है। वहीं समाधान योजना के तहत उपभोक्ताओं के 473 करोड़ रुपए के सरचार्ज माफ कर दिए गए हैं और 40 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। बालाघाट की सांदीपनी विद्यालय वारा सिवनी के 12वीं के छात्र मयंक मात्रे ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान प्रतियोगिता में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। 15 मई को जूम पर हुए लाइव फाइनल में मयंक ने 155 अंक लेकर ग्रैंड विनर का खिताब जीता। इस जीत के साथ उनका चयन सितंबर 2026 में होने वाले नासा एजुकेशन टूर के लिए हुआ है। इस दौरान वे कैनेडी स्पेस सेंटर समेत कई शैक्षणिक स्थलों का दौरा करेंगे। प्रदेश के अनारक्षित वर्ग के मेधावी छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए राज्य सरकार $40,000 यानी करीब 36 लाख रुपए तक की मदद देगी। इसके लिए 25 मई शाम 6 बजे तक आवेदन किए जा सकते हैं। योजना के तहत हर साल 20 छात्रों का चयन होता है। इस योजना में आवेदन के लिए परिवार की सालाना आय 8 लाख से कम होनी चाहिए और आवेदक किसी भी नौकरी में नहीं होना चाहिए। स्वर्णिम 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य

कक्ष में आकाशवाणी भोपाल आज शाम 7 बजे रविन्द्र भवन में एक खास संगीत संध्या का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में पुष्पलता शर्मा लोकगीत और उस्ताद मुनव्वर मासूम कव्वाली पेश करेंगे। वहीं कल इंदौर केंद्र के 71वें स्थापना दिवस पर मालवा हाउस में जबरदस्त जश्न मनाया गया। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 1 जून से 12 जून तक भोपाल के 2 परीक्षा केंद्रों पर होगी। परीक्षा हर रोज 4 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। इस साल से क्लर्क और स्टोरकीपर पदों के अभ्यर्थियों का टाइपिंग टेस्ट भी ऑनलाइन केंद्र पर ही लिया जाएगा। प्रदेश में राज्यव्यापी गिद्ध गणना कल से शुरू हो गई है। पहले दिन 8,748 स्थानों पर गणना हुई, जिसमें 8,810 गिद्ध मिले। ये गणना 24 मई तक सूर्योदय से सुबह 9 बजे तक चलेगी। इस बार ऑनलाइन ऐप के जरिए गणना हो रही है, जिसमें वन कर्मचारियों के साथ पक्षी विशेषज्ञ, छात्र और स्थानीय नागरिक भी शामिल हैं। प्रदेश में मछली पालन उत्पादन बढ़ाने को लेकर कल भोपाल में हितधारक सम्मेलन हुआ। निवेशकों ने 2 लाख केस लगाने के प्रस्ताव दिए हैं, जबकि सरकार का लक्ष्य पहले साल सिर्फ 10,000 केस का था। राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केस कल्चर के आवेदन की कोई समय सीमा न रखी जाए। सरकार कोल्ड चेन, हैचरी और फिश फील्ड के लिए सब्सिडी देगी। नौतपा शुरू होने से पहले ही प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। कल प्रदेश के 10 शहरों में तापमान 44 डिग्री के पार रहा। नौगांव में गर्मी का असर सबसे ज्यादा देखने को मिला, वहां पारा 46.8 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज 42 जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना में लू का रेड अलर्ट है। आईपीएल में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रनों से हरा दिया। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में आरसीबी 200 रन ही बना सकी। ईशान किशन प्लेयर ऑफ द मैच रहे। वहीं आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत इंदौर जिले में 25 मई को विभिन्न ग्राम पंचायतों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खंडवा जिले के ग्राम मामाडोह में कल हुई भीषण अग्नि दुर्घटना के बाद जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने मामाडोह पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। आगरमालवा जिले के लिए प्रेक्षक कृष्णमोहन गौतम ने कल जिले सहित बड़ौद के विभिन्न वार्डो के मतदान केंद्रों के साथ ही जिले के विभिन्न गांवों का निरीक्षण किया। मंडला में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वर्ष 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन प्रक्रिया राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुकी है। झाबुआ कलेक्टर ने ग्राम समोई में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत तालाब से गाद निकासी कार्यों का निरीक्षण किया। बैतूल कलेक्टर ने कल खोड़ा डूंगरी जनपद पंचायत कार्यालय में बैठक लेकर विभिन्न गांवों में नियुक्त जिला अधिकारियों से ग्रामीण समस्याओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर, जो आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए बुंदेली सुगंध में हरबल सिंह लोधी से उनका बुंदेली काव्य पाठ।
2: आपके समक्ष प्रस्तुत हैं माता पिता और गुरु के सम्मान में ये चंद लाइनें।
3: के शिक्षा और संस्कार से जीवन बनते है बहुत महान, करो गुरु माता पिता को सम्मान, करो गुरु माता पिता को सम्मान, करो गुरु माता पिता को सम्मान, करो गुरु माता पिता को सम्मान। के गुरु बिन ज्ञान कहाँ आई जग में, मात पिता बिन

पालन शिक्षा दे के हमें सुधारें करवे लालन पालन। सो गुरु बिन ज्ञान कहाँ ई जग में मात पिता बिन पालन शिक्षा।

सम्मान करो गुरु माता पिता को सम्मान करो गुरु माता पिता को सम्मान कि राह सही जे दिखावे हमखो जीवन भव बनावे ओ हमसे कछु गलती हो जावे फिर भी

सम्मान करो गुरु मात पिता को सम्मान करो गुरु माता पिता को सम्मान करो गुरु माता पिता को सम्मान करो गुरु माता पिता को सम्मान के माँ की ममता पिता की क्षमता सुरक्षा और आधार ओ गुरु ने जीवन धन्य बना दो दे के हमें संस्कार माँ की ममता पिता की क्षमता सुरक्षा और आधार गुरु ने जीवन धन्य बना दो दे के हमें

0: करो गुरु माता पिता को सम्मान, करो गुरु माता पिता को सम्मान, करो गुरु माता पिता को सम्मान, करो गुरु माता पिता को सम्मान। और इसी क्रम में प्रस्तुत है एक नशा पर बुंदेली गीत के, नशा नाश की जड़ है भाई इससे जीवन है दुखदाई।
1: कि नशा नशा दे जीवन को सारो सुख चैन, नशा नशा दे
0: कि नशा नशा दे जीवन को सारो सुख चैन।

ज्ञान साधे, ताकि वह हम आओ के कर्म अच्छे कर लो और छोड़ दो नशा, कर्म अच्छे कर लो और छोड़ दो नशा, वो नहीं बिगारो हंसते खेलते परिवार की दशा, नशा नशा दे वो नशा नशा दे जीवन को सारो सुख चैन, नशा नशा दे वो नशा न करियो सबसे के वो है हमाओ, नशा न करियो सबसे के वो है हमाओ।

साधे और इसी क्रम में एक पर्यावरण पर बुंदेली गीत। आजकल हमारे देश में एक पॉलीथिन की बहुत विकराल समस्या रूप ले चुकी है, तो इस गीत से मेरा संदेश कि पॉलीथिन मुक्त वातावरण बनाने की सभी कोशिश करें, ऐसा आप सभी से अपील है इस गीत के माध्यम से। कि पॉलीथिन के प्रकोप से रो रही, कि पॉलीथिन के प्रकोप से रो रही धरती और नदियां बेचारी, वो पर्यावरण।

0: खो आज बचा लो तो सुखी रे ओ नर नारी, पर्यावरण खो आज बचा लो तो सुखी रे ओ नर नारी। के पॉलीथिन को लगो अंबार, धरती माता करे पुकार, ओ बंजर हो रहे करो विचार। पॉलीथिन जो मृदा में मिल जाती है उससे हमारी मृदा प्रदूषित हो रही है, और एक प्रकार से जो उसका दुष्प्रभाव हो रहा है वो देखिए। के पॉलीथिन को लगो अंबार, धरती माता करे पुकार, बंजर हो रहे करो विचार। सो पॉलीथिन उपयोग न करियो, पॉलीथिन उपयोग न करियो, हो रही मृदा प्रदूषित सारी, ओ पर्यावरण खो आज बचा लो तो सुखी रे ओ नर नारी। पर्यावरण खो आज बचा लो तो सुखी रे ओ नर नारी। के नदियन की आवाज सुनो जब, के रही बचा लो आज हमें अब, पॉलीथिन हटो आदो मिल सब। सभी व्यक्तियों की धारणा है कि जहां भी जाते हैं केवल नदी में सभी पॉलीथिन का विसर्जन करते हैं, पॉलीथिन उसमें डाल देते हैं, जिससे हमारी गंगा मैया बहुत प्रदूषित हो रही है। तो नदियन की आवाज सुनो जब, कह रही बचा लो आज हमें अब, पॉलीथिन हटवा दो मिल सब। पॉलीथिन ना फेंको नदी में, दूषित हो रही गंगा हमारी, ओ पर्यावरण खो आज बचा लो तो सुखी रे ओ नर नारी। पर्यावरण खो आज बचा लो तो सुखी रे ओ नर नारी। ओ गोवंश अब पाले नैया, भूखी फिर रही हैं अब गैया। सो पॉलीथिन ना फेंको इते उते, पॉलीथिन ना फेंको इते उते, गाय माता पे संकट भारी, ओ पर्यावरण खो आज बचा लो तो सुखी रे ओ नर नारी। पर्यावरण खो आज बचा लो तो सुखी रे ओ नर नारी। अंत में क्या वो कहे के आदत एक सुधारो अपनी, आदत एक सुधारो अपनी, ना पॉलीथिन ना कोई पन्नी, ओ बाजार को कपड़ा के थैला की शुद्ध करनी। बन के जागरूक गंगा गाय, और बन के जागरूक गंगा गाय, और भूमि बचावे की बारी, ओ पर्यावरण को आज बचा लो तो सुखी रे ओ नर नारी। पर्यावरण खो आज बचा लो तो सुखी रे ओ नर नारी। जय हिंद, जय भारत।
1: अभी आप सुन रहे थे बुंदेली सुगंध में, बुंदेली काव्य पाठ कवि हरबल सिंह लोधी से। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज, और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। सबसे पहले लता मंगेशकर की आवाज में अपने अपने फिल्म का गीत। गीतकार हैं गुलशन बावरा, संगीतकार RD बर्मन।

0: श्रोतो अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में ये पहला गीत अपने अपने फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। श्रोतो देश के कई हिस्सों में बढ़ते तापमान और लोक की स्थिति को देखते हुए जन स्वास्थ्य की दृष्टि से इन उपायों को हम अपना सकते हैं जो हमें मौसम विज्ञान से प्राप्त हुए हैं। हम देख रहे हैं हमारे मोबाइल पर मैसेज भी आता है, अलर्ट भी आता है कि हमें इस समय से इस समय तक तेज लू से बचना है और घरों से बाहर नहीं निकलना है। तो हम क्या कर सकते हैं लू से बचाव के लिए? सबसे पहले तो पर्याप्त मात्रा में हम पानी पिए, नारियल पानी, मट्ठा, नींबू और जैसे तरल पदार्थों का भी हम सेवन कर सकते हैं। और जो चेतावनी हमारे मोबाइल पर आती है कि 11 से 4 बजे के मध्य हमें सीधे तरह से धूप में जाने से बचना है, हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने हैं और जो मौसमी फल हैं तरबूज, खीरा, खरबूजा, लौकी, टमाटर जैसे शीतल हाइड्रेटिंग पदार्थों का भी हम सेवन कर सकते हैं। और उन लोगों के लिए भी सलाह चेतावनी मिली है जैसे शिशु और बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग व्यक्ति और हमारे जो श्रमिक भाई बहन हैं जो खुले में काम कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो इन सभी से भी अनुरोध है कि वो 12 से 4 के बीच में काम को थोड़ा रोक सकते हैं ताकि हम लू और इस तेज गर्मी से बचे रह सकें। साथ ही कार्यस्थलों और सार्वजनिक आयोजन जो सलाह हो रहे हैं उनके लिए भी ये प्रयास प्रशासन करते हैं कि छायादार विश्राम स्थलों पर ही इन्हें करें, नियमित रूप से जो हमारे अतिथि हैं उनका जलपान करें ताकि डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो और ज्यादा धूप में हम ना जाएं, तो इस तरह से हम लू से बचे रह सकते हैं। फिल्म संगीत का कार्यक्रम जारी रहेगा, एक संदेश हम आपको सुनाते हैं।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लीजिए, अब हम आपको सुनाते हैं फिल्म संगीत का अगला गीत, हाथों की लकीरें। इस फिल्म से महेंद्र कपूर की आवाज, गीतकार हसन कमाल, संगीतकार प्यारी मोहन।

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है। श्रोताओं, अत्यधिक गर्मी और लू से बचाव के लिए कई तरह की जन स्वास्थ्य सलाह आप तक पहुंच रही है, आपके मोबाइल फोन पर भी सरकार द्वारा भेजी जा रही है। और अगर आपको महसूस हो कि हमारा शरीर का तापमान कुछ बढ़ रहा है तो ये लू के संकेत हो सकते हैं। कुछ लक्षण भी आपको इसमें नजर आते हैं, चक्कर आने लगते हैं, सिर दर्द जैसा होने लगता है, मतली भी आने लगती है, शरीर का अत्यधिक गर्म होना भी इसका एक लक्षण है, और साथ ही निर्जलीकरण यानी बार बार गले का सूखना, मुंह का सूखना यानी पानी की कमी हमें होने लगी है, मानसिक स्थिति में भी बदलाव होने लगता है और बेहोशी या दौरे पड़ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो तत्काल आपातकालीन जो हेल्पलाइन है 102 यानी 102, और एक और हेल्पलाइन है 108 यानी 108, इस पर भी आप सूचना दे सकते हैं। हीट स्ट्रोक एक चिकित्सा आपात स्थिति है, गंभीर लक्षण अगर हमें दिखें तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। फिल्म संगीत का कार्यक्रम जारी रहेगा, एक और संदेश आपके लिए।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: फिल्म संगीत के क्रम में एक और गीत मेरे महबूब फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार शकील बदायनी, संगीतकार नौशाद।

0: अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में मेरे महबूब फिल्म का ये गीत। हम रुकते हैं एक और आकाशवाणी संदेश के लिए।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद

0: चंद तक
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: फिल्म संगीत के समापन में सुने ना फिल्म का गीत यशुदास की आवाज में, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

0: इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है समाचार प्रभात, कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवा

0: नेताओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव चयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
3: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हो रहे हैं। हमारी जानसीपुर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में यह तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प योजना।

0: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को

0: रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर्ड ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
1: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
2: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी आईएएस अफसर

0: सर तो बच्चों को आरक्षण क्यों? राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है। जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट यूजी की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे शत प्रतिशत त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम न करें WFI। लोकसत्ता की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। एनसीईआरटी की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रूपये के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to distribute over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments today. RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden 4-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha today. Indian Army officer Major Abhilasha Barak honoured with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, hosts Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality.
3: Rozgar Mela is a step towards fulfillment of the Prime Minister's commitment to accord highest priority to employment generation. The Rozgar Mela is playing a significant role in providing meaningful opportunities to the youth for their empowerment and participation in nation building. Since its inception, around 12 lakh recruitment letters have been issued through 18 Rozgar Melas organized across the country. The 19th Rozgar Mela will be held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments, including Ministries of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare, and Department of Higher Education, among others. With Dipendra Kumar, Rishu Jaiswal, Akashwani News, Delhi.
2: the Reserve Bank of India, RBI, has approved a transfer of record 2.86 lakh crore rupees as surplus to the central government for the financial year 2020.

0: overs. Ishan Kishan was the top scorer with unbeaten 79 runs, and so he was named player of the match. Today, Lucknow Super Giants will take on Punjab Kings in Lucknow at 7:30 this evening. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Neena Arakal.
1: Thank you, Sunil. The Asian Age leads with the headline, India-Cyprus Inc. six-packs boost trade security ties. The Reserve Bank of India Central Board has approved a record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to the government for financial year 26, reports the Economic Times. In its editorial piece titled "She Putin Meet, a New Axis in the Making," the Pioneer argues that the recent summit between Xi Jinping and Vladimir Putin signals a deepening China-Russia alignment with potentially major consequences for the global order. The piece suggests that Beijing and Moscow are moving beyond symbolism and toward a more coordinated challenge to American influence. It concludes that the emergence of such an axis may become one of the defining geopolitical developments of our time. And finally, in a bold push to boost biodiversity and climate resilience, the Andhra Pradesh Forest Department has launched preparations to produce 25 million seed balls in June during the monsoon season, writes the Statesman. And with that, it's back to you, Sunil.
0: Thank you, Neena. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to distribute over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments today. RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden four-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha today. Indian Army Officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, host Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se
3: मीडियम वेव 444 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर जी आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है. लीजिए आप सुनिए फिल्मी गीतों का संयोजित कार्यक्रम गीत गुंजन. श्रोताओं, गीत गुंजन लेकर मैं हाजिर हूं आपका दोस्त राजेंद्र हरवाहर और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं रविंद्र कुमार प्रजापति. श्रोताओं, आज हम बात करेंगे जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण की. हम आगामी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे और लगातार जीवन में पर्यावरण और पौधों के बारे में हम चर्चा कर ही रहे हैं. हम सभी जानते हैं ये पेड़ पौधे पशु पक्षियां कीट पतंगे नदियां पहाड़ और सूक्ष्म जीव हमारी दुनिया है. प्रकृति का ये विशाल परिवार ही जैव विविधता के रूप में हम समझते हैं. दोस्तों, पहले हम समझें कि जैव विविधता है क्या. जीव जंतुओं और वनस्पतियों की विभिन्न प्रजातियों का अस्तित्व, ये विविधता ही धरती को संतुलित बनाए रखती है. यदि जंगलों में पेड़ ना रहें, नदियों में जल ना बहे, पक्षियों की चहचहाट और उनका कलरव हमें सुबह सुबह सुनाई ना दे, तो सोचिए जीवन की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं. लगातार मानव की अंधाधुंध होड़ ने वनों और पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाया है, यानी वनों के कटाव को लगातार किया है मानव ने. हमें अनगिनत उपहार दिए हैं पर्यावरण ने और हमारी जैव विविधता ने. जैव विविधता के द्वारा ही जल, औषधियां, स्वच्छ वायु, लकड़ी और ऊर्जा, सब कुछ हमें ये परोपकारी प्रकृति ही हमें देती है. ऑक्सीजन देते हैं हमारे पेड़ हमें. मधुमक्खियां परागण कर फसलों को उपज बढ़ाती हैं. समुद्र और नदियां करोड़ों लोगों के जीवन का आधार हैं. कृषि को मजबूत बनाती है जैव विविधता. और जब हम सुरम्य वातावरण में विचरण करते हैं, घूमते हैं, तो बस अनायास ही इस तरह से पक्षियों के बीच हम खुद ही खो जाते हैं.

श्रोताओं, कुदरत ने इंसानों का असीम ख्याल रखा है। हजारों लाखों किस्म के वृक्ष प्रकृति का उपहार ही हैं। माने प्रकृति को कैसे सजोया है हम सब देखते हैं। चारों तरफ पेड़ पौधे लहलहाते हैं तो हम ये भी देखते हैं कैसे पौधों और जैव विविधता पेड़ों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम इनका ख्याल भी रखें।

तो आज के गीत गुंजन में हम बात कर रहे हैं हमारी प्रकृति यानी जैव विविधता के संरक्षण और अपनी जिम्मेदारी के बारे में। श्रोताओं, मानव ने विकास के अहंकार में पर्यावरण को भी इंतहा नुकसान पहुंचाया है। इंसानी अस्तित्व पर भी इसे संकट गहराता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण प्रदूषण और कई तरह के नुकसान हमें देखने को मिल रहे हैं। एक जंतु या पादप प्रजाति खत्म होती है तो उसका दुष्प्रभाव पूरे परितंत्र पर पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में हम ये भी देखते हैं कि हम कैसे पर्यावरण के प्रति और वृक्षों और इसके जो अवयव हैं उनके प्रति कैसे सचेत रहे संरक्षण में। जैव विविधता को हो रहे नुकसान को रोकने और इसे बहाल करने के लिए सभी को संघर्ष करने की जरूरत है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो सुखद आश्चर्य होगा कि कई लोग हमारी परंपरा और इसे बचाने में लगे हुए हैं। और आदिवासी समूह की हम बात करें तो उनका अधिकांश समय जंगलों की देखरेख में ही होता है और वो पेड़ और कई तरह के जीवों की प्रजातियों को बचाने के लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे पर्वत हो, पौधे हो, पेड़ हो या उनके आवास। इनको बचाने का काम हम सबका है। कई दुर्लभ पक्षियों के शिकार भी हो रहे हैं। अवैध शिकार को भी हमें रोकना होगा, जिससे जो प्रजातियां हैं वो विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई हैं, जैसे बाघ, गैंडा, कछुआ और कई प्रजातियां आज भी संरक्षण की प्रतीक्षा कर रही हैं। तो आइए इन जीवों का और खासकर अपने पर्वतों का संरक्षण करें, इनके कटाव को रोकें।

श्रोताओ, लगातार पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है। अपनी थाली के आईने को देखें। हाल के वर्षों में जैव विविधता संरक्षण के लिए जो समितियां लगी हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड लगा है, निष्कर्ष ये निकला है कि हर दिन 150 प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं। अध्ययनों में ये भी पाया गया है कि जब कोई जीव पारिस्थितिकी तंत्र से गायब हो जाता है तो ये लगभग 2 दर्जन अन्य जीवों को भी सीधे प्रभावित करता है। अर्थात किसी एक प्रजाति के विलुप्त होने से पारिस्थितिकी तंत्र की संपूर्ण खाद्य श्रृंखला असंतुलित हो जाती है। 2020 के विश्लेषण के अनुसार पृथ्वी पर वन्य जीवों का 6ठा सामूहिक विलोपन तेजी से बढ़ रहा है और स्थल पशुओं की 500 से अधिक प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं, जो संभवतः अगले 2 दशकों के भीतर लुप्त हो जाएंगी। क्योंकि भारत दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात यानी नहीं है कि यहां पशु व पादप प्रजातियों को प्रभावित करने वाली मानव गतिविधियां और विकास तेजी से बढ़ रहा है। और ये विकास जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इन जीव जंतुओं को खतरा हो रहा है। जैसे टाइगर, एशियाई शेर, हिम तेंदुआ, एक सींग वाला गेंडा, काला हिरण, शेर पूंछ वाला मकाक, वृक्ष मेंढक, कश्मीरी लाल हिरण, नीलगिरी तहर, इंडियन वायरस, गौर आदि हैं। ये जीव दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। और पेड़ों पर ही विनोद पदरज अपनी कविता में लिखती हैं, साढ़ बीत जाता था, पुरवा नहीं चलती थी, बरखा नहीं होती थी तो अपनी सांवली चट्टान जैसी पीठ बीचनी की ठंडी से सुलझाते थे। बाबा कहते थे, 100 पेड़ों के नाम लो, पुरवा चलेगी बरखा आएगी, पर मुझको तो याद नहीं थे 100 पेड़ों के नाम, आम, पीपल, बड़, शीशम और पलाश, खैर, खिमी, धोंक, नीम, बबूल, अमलताश। फिर मैं चुप हो जाता था, बड़े भाई कुछ और नाम जोड़ते थे, काका कुछ और, अंततः बाबा ही 100 पेड़ों के नाम लेते थे एक सांस में। पुरवा चलने लगती थी, अटा टूट ताल तलैया भर जाते थे, खेत तरबरर हो जाते थे। बाबा चले गए और किसी को याद नहीं है 100 पेड़ों के नाम। जितने नाम हम लेते हैं शायद उतने ही नाम बचे हुए हैं। तो आइए हम सब आसपास पेड़ लगाएं और जैव विविधता संरक्षण में अपनी भूमिका।

आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं गीत गुंजन। और श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं जैव विविधता संरक्षण की। क्या आप सभी जानते हैं समस्या बन चुका है प्लास्टिक? जी हाँ श्रोताओं, एक विकराल समस्या हमारे चारों ओर घूम रही है। ये सिंगल यूज जो प्लास्टिक पॉलिथीन हम खरीदते हैं, सामान लेते हैं, कितनी नुकसानदायक है। प्लास्टिक के बारे में कहा जाता है इसे प्राकृतिक रूप से विघटित होने में 20 से लेकर 500 साल तक का समय लग सकता है। जो प्लास्टिक के प्रकार पर्यावरण दशाओं जैसे कि सूर्य के प्रकाश आदि पर निर्भर भी होता है। पॉलीएथिलीन, टेरेप्थिलेट और विघटित होने में 450 इसे लग सकते हैं। और प्लास्टिक के थैले जो कि HPE यानी हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन से बने होते हैं, उन्हें लगभग 20 साल नष्ट होने में लगते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण विश्वव्यापी समस्या है, इससे निजात पाने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। और अगर कहा जाए तो स्वास्थ्य पर भी इसकी बहुत दुष्परिणाम है और इसका कोई समाधान नहीं है। समाधान यही है कि हम जूट के बने हुए थैलों का उपयोग करें या घर से ही थैला लेकर जाएं, तो निश्चित रूप से हम प्लास्टिक प्रदूषण से भी बचे रह सकेंगे। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है, ये हम पर्यावरण संरक्षण

श्रोताओ, आज के इस कार्यक्रम में हम संदेश दे रहे पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण के संबंध में। तो आइए वन संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण और आसपास हो रहे प्रदूषण को कम करने में

अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और सरकार द्वारा जो भी अभियान चल रहे हैं उनमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण में अपना योगदान देकर जीवन को खुशी खुशी बिताएं और चलते रहें आगे।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का संयोजित कार्यक्रम गीत गुंजन, प्रस्तुति रविंद्र कुमार प्रजापति की थी। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए लोक रंग। श्रोताओं, लोक रंग कार्यक्रम में आज हमारे कलाकार हैं राजकमल अहिरवार, संगत कर रहे हैं ढोलक पर सुरेश कुमार खरे, बेंजू पर हैं अरुण कुमार नामदेव। सबसे पहले देवी गीत, कलाकार हैं राजकमल अहिरवार।

अभी आप सुन रहे थे राजकुमार अहिरवार के स्वर में ये देवी गीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से लोक रंग। हम यहाँ रुकते हैं एक अंतराल के लिए।

0: साक्षरता संबंधित लोक रचना भी आप सुन रहे थे राजकमल अहिरवार के स्वर में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से लोक रंग। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा विराम।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
0: लोकरंग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लीजिए सुनिए राजकमल अहिरवार के स्वर में ये हास्य लोक रचना।
3: आई टीवी रो रो के रही

0: अभी आप सुन रहे थे राजकमल अहिरवार के स्वर में ये हास लोक रचना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से लोक रंग, और आज हमारे कलाकार हैं राजकमल अहिरवार। लीजिए सुनिए राजकमल अहिरवार के स्वर में एक चौकड़िया।
1: अरे फूटी आंखों घरई के कोरोआ।

0: अभी आप सुन रहे थे ये चौकड़िया कलाकार थे राजकमल अहिरवार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से लोक रंग और आज हमारे कलाकार हैं राजकमल अहिरवार। एक बारहमासी लोक रचना राजकमल अहिरवार के स्वर में।
1: अरे रोटी बनावे खा को नैया

0: अभी आप सुन रहे थे बारहमासी लोकगीत कलाकार थी राजकमला हिरवार। लीजिए सुनिए लोक रंग के समापन में राजकमला हिरवार के स्वर में ये लोक शैलीबद्ध लोक रचना समानता पर केंद्रित।
1: रखो एक ही समान, रखो

इसी के साथ ही बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग अब संपन्न हुआ। आज हमारे कलाकार थे राजकमल अहिरवार, संगत कर रहे थे ढोलक पर सुरेश कुमार खरे, बैंजो पर अरुण कुमार नामदेव। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का संयोजित साप्ताहिक कार्यक्रम जब आप गुनगुना उठी। प्रस्तुति रविन्द्र कुमार प्रजापति की है।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आपके दोस्त राजेंद्र अहिरवार का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम हम शुरू करें उससे पहले बता देते हैं हमारा ईमेल आईडी। जब आप गुनगुना उठे कार्यक्रम के लिए हमारा ईमेल आईडी है bhavdeechhatarpur@gmail.com bhavdeechhatarpur@gmail.com और डाक का पता है जब आप गुनगुना उठे कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी छतरपुर मध्य प्रदेश पिन 471001। तो श्रोताओं, आप सभी हमें ईमेल करके और अपने डाक के द्वारा खतों के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। और कार्यक्रम का ये अब पहला मेल हम उठाते हैं और ये पहला मेल हमें प्राप्त हुआ है, लिख भेजा है हमारे श्रोता है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आप लिखते हैं, गमों से घबराकर जीवन के सफर की रफ्तार कम नहीं होती और ये रफ्तार हमारे गमों से जुड़ी रहती है। हमेशा से रात्रि के सघन के बाद काली छाया के पश्चात प्रातः की सुनहली सुबह आती है और फिर क्यों हम दुख रूपी अंधकार से घबराएं। निश्चित है कि खुशियां बौछार भी जीवन में आएंगी। जब भी इस विषय पर और जीवन के इस विषय पर मैं मंथन करता हूं तो मैं गुनगुना उठता हूं।

कार्यक्रम का ही अगला ईमेल हमें प्राप्त हुआ है हरविलास सिंह तोमर का, ग्राम तरसमा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश से। आप लिखते हैं, दोस्तों 23 मई को पूरे विश्व में कछुआ दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य इसके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के प्रति दुनिया भर में जन जागरूकता फैलाना है। ये दिन प्राचीन इस जंती के विलुप्त होने से बचाने और इसके अवैध शिकार को रोकने के लिए लोगों को शिक्षित करने हेतु समर्पित है। आओ हम सब मिलकर कछुआ दिवस मनाएं, इनके संरक्षण के बारे में जन जन को जागरूक बनाएं। वन्य जीव जल जंतु ये मित्र हमारे प्रकृति का संतुलन बनाए, कितने उपयोगी ये सारे, इनके बिना मानव जीवन हो जाएगा बर्बाद। आशियाने ना इनके मने, रखो सदा इन्हें आबाद। कछुआ ज्ञान धीरज व दीर्घायु का है प्रतीक, लुप्त प्रजातियों को बचाए, शिकार ना इनका होता ठीक। हिंदू धर्म में इनको माना जाता है विष्णु का अवतार, समुद्र मंथन में धारण किया था इन्होंने रूप, देव दानव के प्रतीक या उपकार, अविरल दृढ़ता इनकी विशेषता, आश्रय इनका पानी, युगों युगों से सुनते आए हम कछुआ और खरगोश की कहानी। श्रोताओं, कछुआ हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और हमें सीख लेने चाहिए कि जीवन में हरदम चलते रहना ही जीवन है, रुकना नहीं। जब भी ये दिवस आता है तो मेरे होंठ गुनगुना उठते हैं ये गीत।

कार्यक्रम का ये अगला ईमेल हमें प्राप्त हुआ है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता का। आप लिखते हैं, दोस्तों आकाशवाणी छतरपुर हमारे व्यक्तिगत जीवन में इस तरह से रची बसी हुई है कि उसका एक आनंददायक अनुभव आपसे साझा करना चाहते हैं। बात उन दिनों की है जब यहाँ के वरिष्ठ उद्घोषक राकेश खरे जी हमारा बुंदेलखंड कार्यक्रम को बहुत ही तन्मयता से पेश करते थे। उन्होंने इस कार्यक्रम के तहत बुंदेलखंड की प्रमुख धार्मिक स्थलों के बारे में जानकारी प्रदान करने वाली एक श्रृंखला का प्रसारण किया। कार्यक्रम के एक अंक में उन्होंने छतरपुर में स्थित माँ पीताम्बरा देवी शक्तिपीठ के बारे में जो अद्भुत बातें बताई उसे सुनकर हमारे मन में इस धार्मिक स्थल के दर्शन करने की उत्कंठा मन में जागृत हो गई। उन्हीं दिनों एक विवाह समारोह में जाने का अवसर मिला और ये विवाह छतरपुर में आयोजित हो रहा था। रात को सभी विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए, सुबह स्नान करके माँ पीताम्बरा देवी के दर्शन का पुण्य लाभ लेने के लिए पहुंच गए। पीत वस्त्रों में माँ की अप्रतिम छवि निहार के जो असीम शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार तन मन में हुआ वह शब्दों से परे है, केवल अनुभव ही कर सके। इसकी मूल प्रेरणा हमारी प्रिय दोस्त आकाशवाणी छतरपुर थी। अपने यार के लिए मेरे होठों पर चलाया ये गीत।

विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती वंदना गौहर और चंद्रेश गौहर का। आप लिखते हैं, गंगा दशहरा भारतीय संस्कृति आस्था और प्रकृति के सम्मान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। ये पर्व हमें केवल आध्यात्मिक शांति ही नहीं देता बल्कि जल और पर्यावरण के महत्व को भी समझाता है। आज से 3 दिन बाद हम बड़ी ही आस्था और श्रद्धा के साथ ये पर्व मनाएंगे। भारत की सभ्यता और संस्कृति में गंगा का स्थान केवल एक नदी के रूप में नहीं बल्कि जीवनदायिनी शक्ति के रूप में रहा है। सदियों से गंगा ने कृषि, समाज, साहित्य और आध्यात्मिक चेतना को घोषित किया है। यही कारण है कि गंगा दशहरा का पर्व लोगों के मन में विशेष आस्था, श्रद्धा और भावनात्मक जुड़ाव रखता है। इस दिन लोग गंगा स्नान, पूजा अर्चना, दीपदान और दान पुण्य करते हैं। साथ ही ये पर्व हमें संदेश भी देता है कि जिस गंगा को हम माँ कहकर पूजते हैं उसकी स्वच्छता और संरक्षण की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि आस्था के साथ जागरूक भी रहें। अगर हम अपनी नदियों को स्वच्छ रखेंगे तभी आने वाली पीढ़ियां भी ये सांस्कृतिक धरोहर का महत्व समझ पाएंगी। आज जब भी ये पर्व आता है तो बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ मैं गा उठता हूँ ये गीत।

कार्यक्रम का यह अगला ईमेल हमें प्राप्त हुआ है, लिख भेजा है। ईमेल है ग्राम पोस्ट अकटोह तहसील लवकुश नगर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से सुरेश कुमार साहू। आप लिखते हैं, एक बार की बात है, एक बूढ़ा व्यक्ति अपने तीन लड़कों के साथ रहता था। तीनों बेटे बहुत अच्छे थे, फिर भी अक्सर लड़ते झगड़ते रहते थे। बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें एक साथ लाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। कई महीने बीत गए और बूढ़ा बीमार हो गया। उन्होंने अपने लड़के से एकजुट रहने का आग्रह किया, लेकिन वो कहां मानने वाले थे। परिणाम स्वरूप उसने एक व्यवहारिक सबक सिखाने का फैसला किया ताकि वे एक हो जाएं। बूढ़े आदमी ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें लकड़ियों की एक गठरी दूंगा, एक बार अलग अलग करके आपको प्रत्येक छड़ी को आधा तोड़ना होगा। जो कोई भी तेजी से लाठी तोड़ेगा उसे अधिक इनाम मिलेगा। बूढ़े व्यक्ति ने उनमें से प्रत्येक को 10 लाठियों की गठरी दी और प्रत्येक छड़ी के टुकड़ों को तोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कुछ ही मिनट में लाठियां चकना

शुरू कर दी और एक इस बात पर बहस करने लगे कि ऐसा करने वाला मैं पहला व्यक्ति हूं। फिर पिता ने प्रत्येक लड़के को लकड़ियों की एक और गठरी दी और उन्हें निर्देश दिया कि भी उन्हें एक साथ तोड़ें। उन्होंने छड़ी की गठरी तोड़ने का खूब प्रयास किया। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वे लकड़ियों के गठर को तोड़ने में असमर्थ रहे। ये देखकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, प्यारे बेटों, देखो एक लकड़ी के टुकड़े को तोड़ना आसान था, लेकिन बंडल को तोड़ना कितना मुश्किल। यही सीख है कि हम सब एकजुट रहें। बेटों ने एकता का मूल्य समझा और बूढ़े को अपना संदेश भी समझ में आया। जब भी मैं इस घटना के बारे में विचार करता हूं, तो मेरे होंठ गुनगुना उठते हैं ये गीत।

कार्यक्रम का ये अगला ईमेल हमें प्राप्त हुआ, ग्राम पोस्ट गौना कुशमार थाना सहजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर से कैलाश नारायण नामदेव और दीपक कुमार नामदेव का। आप लिखते हैं, साथियों 25 मई से नौ तपा प्रारंभ होने जा रही है, जिससे अधिक गर्मी होती है और इसमें पशु पक्षी भी बेहाल होते हैं। इन्हें ये पशु पक्षी बोल नहीं पाते, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि भीषण गर्मी में इनके खाने और पानी का समुचित हम प्रयोग करें। छोटे छोटे जगहों पर हम चिड़ियों के लिए पेड़ों पर उन्हें घोंसले में पानी की व्यवस्था कर सकते हैं या टांग सकते हैं। जब हमारे छोटे बच्चे ने हमसे पूछा कि चाचा जी आप अपने गांव में पेड़ पर पानी क्यों टांगते हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे पक्षियों के लिए जरूरी है कि हमारे पक्षी पानी पिएंगे और वो ठीक रहेंगे। जब भी मैं इस मौसम में ऐसे पशु पक्षियों को देखता हूँ तो स्वयं कुछ न कुछ करने के लिए तत्पर रहता हूँ और मेरे होंठ गुनगुना उठते हैं ये गीत।

0: कार्यक्रम का ये अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खर से और विनोद खर से का। आप लिखते हैं, दोस्तों सुन लेने से कितने ही सवाल सुलझ जाते हैं, सुना देने से हम फिर वही उलझ जाते हैं। इसलिए हमें अक्सर सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत से रिश्ते केवल सुन लेने से बरकरार बने रहते हैं और सुना देने से टूटने की कगार पर आ जाते हैं। उचित समय पर थोड़ा झुक जाने से इंसान की कीमत कम नहीं होती, अपितु विनम्रता से झुकने वाला इंसान बहुत ही समझदार और नेक होता है। इंसान का शांत एवं मौन रहने का यही भाव से अपनों से जोड़े रखता है। यही जज्बात जब मेरे जहन से उभरने लगते हैं तो मेरे होंठ गुनगुना उठते हैं ये गीत।
1: सुनिए
2: कहिए कहिए
1: सुनिए
3: सुनिए
2: कहिए

कार्यक्रम का ये पत्र हमें प्राप्त हुआ है ग्राम पंचायत उपरेखा श्री रामपुर डेरा सरीला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। आप लिखते हैं, मेरे गांव की एक रस्म हमारे गांव में हुई तो हमारे गांव की बेटी शादी होकर विदा हुई। सात फेरों के सातों वचन प्यारी दुल्हनिया कभी ना भूले, ये हमने उसे समझाए और खूब दुआएं दी। जब भी बेटी विदा होती है तो माँ पिता के साथ साथ पूरे गांव की आंखें नम हो जाती हैं और ये दृश्य देखकर मेरे होंठ गुनगुना उठे ये गीत।

श्रोताओं, आप भी अपने ईमेल और खतों से इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल है bhavdiyachhatarpur@gmail.com bhavdiyachhatarpur@gmail.com। और पता है कार्यक्रम जब आप गुनगुना उठी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी छतरपुर मध्य प्रदेश पिन 471001। और आप अपने दोस्त राजेंद्र हरवार को ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। प्रस्तुत करता रविन्द्र कुमार प्रजापति।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का संयोजित साप्ताहिक कार्यक्रम जब आप गुनगुना उठिए। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजने को है। जिले की चिट्ठी कुछ ही पलों में आकाशवाणी भोपाल से होगी।

0: जिले की चिट्ठी आलेख है अनिल जैन का, वाचन स्वर दीपा सिंह के।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है दमोह जिले की चिट्ठी, आलेख अनिल जैन, वाचन स्वर दीपा सिंह। बात सबसे पहले मौसम की। नौतपा शुरू होने में अभी दो दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही दमोह जिले में गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। इस सीजन में पहली बार अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले साल 2022 में इतना तापमान रिकॉर्ड किया गया था। भीषण गर्मी के बीच जिले में जल संकट भी लगातार गहराता जा रहा है। जिला मुख्यालय से लगे हृदयपुर, इमलाई, आमचोपड़ा, बरमासा, सिंहपुर, खजूरी समेत दर्जनों गांवों के लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच पिछले दिनों मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत दमोह रेलवे स्टेशन से यात्रियों को माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए रवाना किया गया। प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास, धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी ने तीर्थ यात्रा के लिए विशेष रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वातानुकूलित ट्रेन से जिले के 263 यात्री माता के दर्शन के लिए रवाना हुए। जिले के प्रभारी मंत्री ने जिला जेल पहुंचकर नवनिर्मित डबल स्टोरी बैरक का लोकार्पण किया। करीब 1,18,00,000 रूपये की लागत से तैयार इस बैरक का उद्घाटन कार्यक्रम जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए कलेक्टर प्रताप नारायण यादव लगातार शासकीय कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान एसडीएम, तहसीलदार समेत कई अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिन पर शोकॉज नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। जिले में वृद्धावस्था, पेंशन से वंचित बुजुर्गो की समस्या को देखते हुए कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने सेवा और आशीर्वाद अभियान शुरू किया है। जिले में 1664 ऐसे पात्र प्रतिजन चिन्हित किए गए हैं, जिनकी समग्र ई केवाईसी लंबित होने के कारण पिछले 8-9 माह से पेंशन बंद है। अभियान के तहत ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां वृद्धजनों के निशुल्क ई केवाईसी कर पेंशन शुरू कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दूसरी ओर दमोह नगर के खजरी मोहल्ला निवासी समीर अहिरवार अपनी अनोखी खोज किसान मित्र छड़ी को लेकर चर्चा में है। ये छड़ी मिट्टी परीक्षण के साथ साथ कंपन पैदा कर किसानों को सर्पदंश से बचाने में भी मदद करती है, जिससे करीब 3 मीटर दूर तक सांप भाप जाते हैं। समीर की इस खोज का लोकार्पण केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं। वहीं उन्हें स्टार्टअप के लिए 5 लाख रूपये की ग्रांट भी मिली है। अब वे पराली से पेपर, पेन और पेंसिल बनाने पर भी काम कर रहे हैं। रासायनिक खेती के दौर में ग्राम बांसा कला के सीमांत किसान परसादी पटेल ने जैविक खेती अपनाकर मिसाल पेश की है। 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन में वे घर पर तैयार केचुआ खाद से गेहूं, उड़द, चना, सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें बाजार में बेहतर दाम मिल रहे हैं। सांसद राहुल सिंह की अध्यक्षता में जिला विकास और समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में किनबेतवा लिंक परियोजना, मेडिकल कॉलेज, सड़क

पुल निर्माण सहित किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। भारत सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा संचालित ज्ञान भारतम पांडुलिपि मिशन के तहत जिले में पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान अब तक जिले में 97 पांडुलिपियों को चिन्हित किया जा चुका है। इनमें से 63 पांडुलिपियों को ज्ञान भारतम मोबाइल ऐप के माध्यम से अपलोड भी किया जा चुका है। खेल जगत से अच्छी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश हैंडबॉल संघ के तत्वाधान में 10 से 12 मई तक अशोकनगर में राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें दमोह जिले की बालिका टीम ने प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है। इसी तरह धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी जिले में उत्साह देखने को मिला है। श्री दिगम्बर जैन श्रवण संस्कृत संस्थान सांगानेर और श्री दिगम्बर जैन पंचायत तथा स्थानीय केन्द्रों के तत्वाधान में श्रवण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिले के 3 केन्द्रों पर हुआ। इसमें 500 ज्यादा शिविरार्थियों ने भाग लिया। शिविर में 22 कक्षाएं संचालित की गई हैं, जिनमें संस्कार, स्वाध्याय, पूजा, संगीत, व्यक्तित्व विकास और जैन संस्कृति से जुड़े विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। वहीं दमोह जनपद के पास स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में पिछले दिनों 35 ब्राह्मण बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में 8 वर्ष के बालकों से लेकर 26 वर्ष तक के युवाओं का यज्ञोपवीत संस्कार आचार्य पंडित द्वारा विधि विधान से सम्पन्न कराया गया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

अभी आप सुन रहे थे दमोह जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम पीपुल्स पद्म अवार्ड श्रृंखला के अंतर्गत कला क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित कलाकार सुश्री एम राजन से विशेष बातचीत।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं देश की जानी मानी वायलिन वादक
2: यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए सब रंग, इसमें मिश्रित संगीत हम आपको सुना रहे हैं। सबसे पहले पुष्पा पाकधरे के स्वर में ये भजन।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: आप सुन रहे हैं सबरंग, और सबरंग में आज हम आपको सुना रहे हैं मिश्रित संगीत। लीजिए सुनिए शिव कुमार सरोज से एक गीत।

अभी आप सुन रहे थे ये गजल स्वर आशा भोसले का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से सब रंग में मिश्रित संगीत, और यहाँ रुकते हैं एक अंतराल के लिए।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत आवाज शिव कुमार सरोज की। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से सबरंग। श्रोताओं लीजिए, आप सुनते हैं इस क्रम में एक धुन, और इस धुन को हम आपको सुनवा रहे हैं सबरंग के इसी क्रम में।

अभी आप सुन रहे थे आंधी फिल्म का गीत, और इस गीत में आवाज़ लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से सब रंग में मिश्रित संगीत। लीजिए अब हम आपको सुनाते हैं एक भजन अनुराधा पौडवाल के स्वर में।

इसी के साथ ही सबरंग कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। सबरंग में आज आप सुन रहे थे मिश्रित संगीत। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। जी आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है और सुबह के ठीक 10:30 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए आपकी ईमेल और आपके खतों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। श्रोताओं, आज का आपकी पसंद लेकर मैं हाजिर हूं आपका ध्वनि मित्र राजेंद्र अहिरवार। सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। ये पहला गाना हम आपको सुनवाएं, उससे पहले आप सभी के लिए ईमेल आईडी AIR छतरपुर 1976@gmail.com AIR CHHATARPUR1976@gmail.com और आप सभी तैयार हो जाइए, अपने अपने मेल कीजिए और अपनी फरमाइश के गाने सुनिए। और कुछ मेल हमें प्राप्त हो रहे हैं। ये पहला गीत शब्बीर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में आज का अर्जुन फिल्म से है, अनजान की बोल, संगीतकार बप्पी लहरी। और खत आप सभी के, ये पहला मेल हमें प्राप्त हुआ है ममना सरीला जिला हमीरपुर से, रामशरण विश्वकर्मा और साहिल मंजू प्रियल दिव्यांशी वंदना विश्वकर्मा का। और इसी गीत में ये पहला एक और मेल मिल चुका है रज्जाक मोहम्मद, समीन बेगम, इमरान खान, इरफान, जीशान खान का, हनुमानगढ़ राजस्थान से। और इसी गीत में एक और मेल है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी और सीता और गीता। एक और मेल है पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा। इसी गीत को पसंद किया है मेल के माध्यम से नलेश्वर नगर वील महाराष्ट्र से पीएस नोहाकर, निर्मला विशाल नोहाकर, मलकापुर से नारायण इंगली, सुपान ताइड़े और आशीष मुरहेकर। इस गीत में एक और मेल है खंडवा मोटक्का माफी से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम शुभम, देवी किशन, भावना, मन मानस, कनिका राज पटेल। और इसी गीत को पसंद किया दतिरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखीलाल वर्मा और इनके परिवार वाले, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल जैवी शर्मा, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र और साहिल बिट्टा बजाज। इसी गीत को पसंद करते हैं हमारे ये मित्र, अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं संबलपुर कांके से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। एक और मेल है सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक आराध्य चंसोलिया, ग्राम पचोनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से। और इसी गीत में एक और मेल हमें प्राप्त हुआ है मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशार, शबिस्ता, मोहम्मद नसीम, पलक लुबना, यश मंसूरी, राम चबूतरा, कालपी, उत्तर प्रदेश से अपनी फरमाइश के साथ जुड़ चुके हैं। और इसी गीत में एक और मेल हमें मिला हुआ है, हमारे श्रोता हैं वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रिहान शेख, करुला मुराबाद से अयूब खान, इरम शुएब खान, गुड़िया खान। और एक और मेल है मुकेश कश्यप, शीतल, सुरेश, राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्मोनी, बलबीर सिंह, रामदुल्हापुर, मुरादाबाद, यूपी से अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी भी जुड़े हुए हैं और इसी गीत को पसंद किया है इन श्रोताओं ने। राजस्थान बाड़मेर गांधी चौक से बबलीस पवार, डैनी पवार, मास्टर मनीष, राम देवरा से दिनेश चौहान, डोंगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफो की बाबरी से खुदा बख्श खलीफा। और इसी गीत को पसंद किया हमारे इन श्रोताओं ने कुम्हार हीड़ा सहारनपुर से सैयद मसरून, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम और इनके परिवार वाले। एक और मेल है परभणी महाराज से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश प्रतीश और इनके परिवार वाले, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा, मऊ से मुन्ना भाई सोनकार, पिंकी, आर्यन कृष्णा, लवली पीहू सोनकार, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक, आर्यन वर्मा, मऊनाथ भंजन यूपी से अपनी फरमाइश से जुड़े हुए। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, महराजा राजा लगा लक्सर, हरिद्वार से। और इसी गीत में अपनी फरमाइश के साथ हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी शहर से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बबू डब्बू। और एक और मेल है अम्बेडकर चौक बाकुड़ी से उत्तम जमदाड़े, स्वराज जमदाड़े, शाजी बोर्ड की, नंदा बोर्ड के, हनुमान बोर्ड के, हिंगोली महाराष्ट्र के श्रोता। आप हैं मेरठ कैंट से दिग्दर्शन, कविता राधा, नामदेव, संजय डिंगे, संदीप मक्कड़, अनिल जैन, भाई दर्शन। इसी गीत में अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं अड़ार नांदगढ़ छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी वर्मा। और इसी गीत में अपनी

फरमाइश के साथ शिव कुमार शर्मा, लोकेश जोशी, वैदेही जोशी और हंसिका जोशी भाटापारा छत्तीसगढ़ से अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं। और इसी गीत में चंदर नगर सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली सुरेश नारंग और अपनी फरमाइश के साथ आप हैं। गांव खोखरा वाले श्री गंगानगर से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास रोशनी बारासा और इसी गीत को पसंद किया है। नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जमुना देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांचल, समीक्षा आराध्या साहू अपनी फरमाइश के साथ आप भी हैं लिख भेजा है। तालगांव भांडी दतिया से मेहरबान सिंह नागल, संतोष कुमार नागल, प्रताप सिंह नागल, कविता गुड़िया छोटू नागल और इसी गीत में लिख भेजा है हमारे इन श्रोताओं ने। मकनियापुरा महोबा उत्तर प्रदेश से के सज्जन, केशव प्रसाद गुप्ता, ऋषभ छाबला और मीहू इसी गीत को पसंद किया हमारे इन श्रोताओं ने। ये हैं राकेश वर्मा बसारी दरवाजा छतरपुर से, ऋतिक वर्मा हैं और साथ में है कपूरी सिंह घोष। इसी गीत में एक और मेल है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से, ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय, दुभा निवादा, दुबिया निवादा जिला गाजीपुर के श्रोता प्रतीक राय, प्रांजल राय उत्तम नगर दिल्ली से सुन रहे हैं, कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल आप सभी अपनी फरमाइश पर जुड़ चुके हैं। कुछ और हैं अशोक सिंह, सुनीता गुड़िया, वेदा सिंह जबलपुर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, रघुवीर नगर दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू भी जुड़ चुके हैं और इसी गीत में अपनी फरमाइश के साथ हमारे ये मित्र भी जुड़े हुए हैं। खम्बरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी प्रजापति और प्रतीक कुमार प्रजापति। श्रोताओं मेल के माध्यम से जुड़ जाइए आपकी पसंद में AIR छतरपुर 1976@gmail.com। एक और मेल मिली है मृतला महोबा से, नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव गुरु महाराज, विनीता और दादी राजपूत की।

श्रोताओं, आप जुड़े हुए हैं अपने पसंदीदा केंद्र आकाशवाणी छतरपुर से आपके पसंद कार्यक्रम में। आप सभी ईमेल कर सकते हैं अपनी फरमाइश के साथ ai@chhatarpur1976@gmail.com इस मेल आईडी पर। हम रुकते हैं एक संदेश के लिए।

90। कार्यक्रम आपकी पसंद में अगला गीत आप सभी की फरमाइश पर कूली नंबर वन। इस फिल्म से अलका याग्निक, कुमार सानू की आवाजें, समीर के बोल, संगीतकार आनंद मिलिंद और खत आप सभी के, मेल आप सभी के। ये मेल हमें मिला हुआ है तीतरा खलीलपुर जिला जालौन से अंजलि सिंह जाटो, आकांक्षा ऋषि जाटो, सोहम सिंह परिहार और शालू सिंह परिहार का। कुछ और मेल हमें प्राप्त हुए हैं, इसी गीत को पसंद किया। ग्रामा पोस्ट मुंगी सापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति, कमलेश, निशा, प्रज्ञा, प्रतिमा और वेद बाबू कठेरिया अपनी पसंद के साथ जुड़े हुए हैं। बठिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित तानिया नारंग और अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर से चंद्रेश गौहर और वंदना गौर। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो भी जुड़े हुए हैं और इसी गीत को पसंद किया हमारे इन श्रोताओं ने। ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, साधु बाबा वीरेंद्र सिंह तोमर, संजय दीपक, सोनू तोमर और इसी गीत को पसंद करते हैं। ग्राम खक्कल तहसील कोंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर, सत्यम सिंह गुर्जर, अंशराज सिंह गुर्जर एवं समस्त परिवार और इसी गीत में अपनी फरमाइश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गांव नथाना पंजाब से अरजिंदर छिंदा, जसवीर जैसे, सीता और गीता। कुछ और मेल मिले हैं ग्राम दुल्हापुर जिला मुरादाबाद से, लिखते हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान इसरार और नरगिस खातून और इसी गीत में लिख भेजा है। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े अपनी फरमाइश में, ये हमारे मित्र हैं। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हीना, हर्षित खुशी गोस्वामी और इसी गीत को पसंद किया है। कुछ खत हमें मिले हैं बिडोरा सिंहवरा दतिया से लोकेंद्र सिंह गुर्जर, यशपाल सिंह, जयपाल सिंह, महपाल सिंह गुर्जर अपनी फरमाइश के साथ। गरौली जतारा टीकमपुर से चतुर्भुज हरवार, विनोद रानू, ब्रजेश, संध्या, सुषमा, अनिकेत और इनके साथ इनके परिवार वाले, ननोरा श्रीनगर महोबा से बलरामदास हरवार, कस्तूरी आराध

सूचना सोनिका उपमा नैतिक वर्मा बन्नी बुजुर्ग पलीरा से बृजन विश्वकर्मा तारादी विश्वकर्मा सोनाली सोनम आशीष विश्वकर्मा महसूल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन वसीम अकरम आरिफ वसीम शमीम ममता बचू शेख चीना पूनम अमन और नदीप अपनी फरमाइश के साथ नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा मोनिका नुपुर ऋषिका और रॉबिन और इसी गीत को पसंद किया है लिबाखेड़ मोहल्ला चांदुर विश्वासी नारायण भाव खर्ची ललिता परी और प्रयाग चौधरी अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे ये मित्र हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर सुमन मिथिलेश तारनी सूरज रियांश गुड़िया ठाकुर जिला खंडवाड़ा खंडवा लोहारी से राजेश कुमार धनजे राहुल कुमार विशाल कुमार गायत्री और इनके परिवार वाले इसी गीत को पसंद किया है। भट्टीपुरा महोबा से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता ने आप सब जुड़ चुके हैं। हमारे एक और मित्र अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं इन्हें भी हम शामिल कर लेते हैं और इसी गीत को पसंद किया है। हमारे ये मित्र अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा लक्ष्य कोयल चंद मल्होत्रा नानक चंद मल्होत्रा शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का कोयल सिक्का डुग्गू और भाविक सिक्का अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं और इसी गीत को पसंद किया है हमारे इन श्रोताओं ने। इसी गीत में भाटापारा दतरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार वर्मा दीपक कुमार वर्मा झावेंद्र कुमार वर्मा भी जुड़ चुके हैं अपनी फरमाइश के साथ और इसी गीत में अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजी है। डाब की रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर सदानंद मंदूरकर और इनके परिवार वाले इसी गीत में खम्बरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति सावित्री देवी प्रतीक कुमार प्रजापति और इसी गीत में पांडर कपड़ा से अनिल बुरांडी उषा बुरांडी अनुश्री बुरांडी धनश्री बुरांडी और बलहार शाह से सूरज लौंडी प्राची लौंडी एकलव्य लौंडी अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। लोरमी चचड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी प्रमला मरावी नेहा पुष्पराज ऋषभ मरावी भी जुड़ चुके हैं इसी गीत में। मलियान साधना मेरठ से अनिल जैन जैन मुस्कान संयम मास्टर जीवीएम जैन भी जुड़े चुके हैं इसी गीत को पसंद किया। मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा मधु बालूजा सागर बालूजा सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक आकांक्षा माही मलिक भी जुड़ चुके हैं। बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया झज्जर हरियाणा से अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं हमारे श्रोता। ऊपर कोट मोहल्ला चौक नटी बुलंद शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगर परवीन अब्बासी नवाज अब्बासी सरफराज फरहान सुहीन अरजान अबान और इनके परिवार वाले इसी गीत में। गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा इंदिरा शर्मा सार्थक शर्मा भी जुड़ चुके हैं। निपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह पल्लवी शाह प्रखर शाह कुशल नीति सुरभि अश्वनी शाह मंगलाबेन जी शाह राजेंद्र जी शाह भी जुड़ चुके हैं अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं। हमारे ये मित्र हैं दादा बाबू रोड गिरडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान साइमन नवाज हसन बाबू अहद मिफरा नवाज और बीबी चाहत और इसी गीत में। अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट अंजलि रुद्राणी और कृष्णा केवट भी जुड़ी हुई हैं इसी गीत को पसंद करते हैं। राजकोट से रश्मि जरना और इनके परिवार वाले और ये मेल हमें मिला हुआ है हमारे श्रोताओं का। विनोद कुमार रॉकस्टार अजनर जिला महोबा उत्तर प्रदेश से अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं इसी गीत में। संदीप मक्कार ज्योति मन्नत और इनके साथ इनके परिवार वाले लिख भेजा है। पिंगावाला चौक गोराया जालंधर पंजाब से अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं हमारे ये मित्र भी हैं लिख भेजा है ये लिख रहे हैं। हाँ ये मेल मिला हुआ है डोंडी लोहरा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया जयदीप तामुरिया तुषार देव पूजा तामुरिया राधिका प्रभा देवी तामुरिया हम आप सबको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

श्रोताओं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी छतरपुर से आपके पसंद कार्यक्रम में और आप सभी सुन रहे हैं अपनी पसंद के फिल्मी गाने। आप सभी मेल कर सकते हैं yarchhatarpur1976@gmail.com इस मेल आईडी पर। अगली फरमाइश के लिए आप सभी के मेल हम तक पहुंच चुके हैं। दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक, स्वाति जायसवाल अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं और इसी गीत में ये पत्र हमें प्राप्त हुआ है नरसिंहगढ़पुरवा छतरपुर से दयाशंकर कुशवाहा, भवानी देवी, रिक्की राम और इनके परिवार वाले। इसी गीत में ये पत्र है विजय वैद, रानी वैद, महिमा, नीतू वैद का। आप लिखते हैं मानपुर खुदी रोड से और इसी गीत को पसंद किया है हमारे इन श्रोताओं ने। अपनी फरमाइश खत के माध्यम से लिखी हुई है प्रभाकर जौंथले, आरती जौंथले ने, गौतम नगर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से। और इसी गीत में चंडीगढ़ सिटी से सतीश, अनिजा, विमला, अनिजा अपनी फरमाइश के साथ जुड़ चुके हैं और बठिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजन नारंग, अंजू नारंग, मोहित और तानिया नारंग भी जुड़े हुए हैं और इसी गीत में अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं। ये मेल मिला हुआ है ग्रामा पोस्ट खेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मणिराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल, हिमांशु पाल और निवेदिता पाल अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी, शिवन्या गोस्वामी और अनु गोस्वामी और इसी गीत में अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं सुरेंद्र, संधु, अनिता, रोहित, रितेश, शिखा, प्रतीक्षा, संधु और इनके साथी कलम रोड होशंगाबाद नगर नवा शहर पंजाब से अपनी फरमाइश के साथ जुड़ चुके हैं। और इसी गीत में दीपक कुमार नामदेव, गौना कुशमार, थाना सौजना, तहसील महरौनी, जिला ललितपुर से दीपक कुमार के साथ द्रौपदी रामदेवी, ब्रजेश कुमार, अखिलेश, लखनलाल, चाइना, आकाश, रानी परी, पायल, रानी परी और इनके मम्मी पापा। हम आप सबको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना और ये गाना है आपने चुना है सिम्बा फिल्म से। नेहा कक्कड़, मीका सिंह और कुमार सानू की आवाज है, तनिष्क बागची का संगीत और गीतकार शब्बीर अहमद।

0: कुमार सानू की आवाज में
1: लड़की।
2: इसी गीत के साथ ही अपने दोस्त राजेंद्र हरवार को आज का आपकी पसंद कार्यक्रम यहीं समेटने की अनुमति दीजिए। अभी आप सुन रहे थे अपने पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीत।

उनका कार्यक्रम आपकी पसंद आकाशवाणी छतरपुर से। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजने को हैं। अगला प्रसारण कुछ पलों में आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से होगा।

0: लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आकांक्षा का नमस्कार। श्रोताओं, आज कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, इसकी शुरुआत बशीर बद्र साहब के एक शेर के साथ। उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, फिर लौटकर बचपन के जमाने नहीं आते। हेलो
2: जी, नमस्कार।
1: नमस्ते, कार्यक्रम बाद आपके गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: एक मैं जो है शायरी बोलना चाहता हूँ।
1: जी बोलिए।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश देश के दिल की धड़कन जो दिल को छू जाता है और आपके हर कार्यक्रम मन में रच बस जाता है, तभी तो दीदी जी हर श्रोता पहले अपना इंट्रोडक्शन कराता है, उसके बाद आपके चैनल में इंटर कर जाता है।
1: वाह, क्या बात है। अब हमारी बात किन से हो रही है वो बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए।
2: चित्रकूट धाम के बहेरी ग्राम से दिनकर सिंह बात कर रहा हूँ। वो दीदी जी को चित्रकूट से सत सत राम राम भेज रहा हूँ।
1: नमस्ते दिनकर साहब जी।
2: दीदी जी का परिचय भी जानना चाहता हूँ।
1: जी बिल्कुल, मैं आकांक्षा बोल रही हूँ
2: जी। बहुत दिनों के बाद आकांक्षा जी आपसे जो है बात हो रही है, इसके लिए धन्यवाद, आपने हमारा फोन रिसीव किया और मैं जानकारी चाहता हूँ किस क्षेत्र पे आज बात होगी।
1: हाँ जी, बहुत बढ़िया। आज हम आपको ले चलेंगे यादों के झरोखों से झांकने के लिए, जहाँ आपने बचपन के वो दिन गुजारे हैं खेल कूद के साथ।
2: जी जी जी जी जी, बचपन में तो एक था हम लोगों के जो पूर्वज थे किसान थे, और किसानी में मैं एक दिन याद कर रहा था कि एक जमाना था कि हम बैल गाड़ी में जो है मेला देखने जाया करते थे
1: जी।
2: चार चार पांच पांच बच्चे बैठ के जो है हमारे पूर्वज हमारे दादाजी हमारे पिताजी लेके जाया करते थे, और कहीं भी हम रिश्तेदारी में 30 से 40 किलोमीटर, और एक जो एक सरपट दौड़ होती है दीदी जी
1: जी,
2: बैलगाड़ी की सरपट, एक एक घंटे में 12 से 13 किलोमीटर वो सरपट दौड़ में हमारे बैल जाते थे।
1: बहुत बढ़िया।
2: और हम लोग 40 से 42 किलोमीटर हमारा एक रिश्तेदारी वहाँ हम 3 घंटे में पहुँच जाते थे
1: जी। हम जानना चाहते हैं आपने उस दौर में खेल कौन से खेले हैं दिनकर जी।
2: उस दौड़ में हमारे यहाँ एक बुंदेलखंड से जो है एक सुर्रा होता था और एक होता है गिल्ली डंडा होता था, जो है पेड़ में चढ़ के उतर के भी जो है ये खेल खेलते थे, और एक खेल होता था जो है आपका ये छुपा छुपी का खेल भी होता था बचपन में।
1: जी जी,
2: तो इसको भी खेला। और मैं क्रिकेट क्लब से भी जुड़ा रहा दीदी जी, जब वयस्क हुआ तो क्रिकेट क्लब से भी जुड़ा रहा, साइनिंग क्लब जो है बहेरी के नाम से जो है, और इससे मैं जुड़ा रहा। लेकिन ये बचपन के खेल मैंने बताया आपको
1: जी, मतलब जीवन के बहुत ही यादगार और खुशनुमा पल आपने बिताए हुए हैं उन दिनों।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये बचपन की जो यादें होती हैं ये बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि जब बचपना निकल जाता है व्यक्ति का
1: जी,
2: तो वो फिर दोबारा कभी वापस लौट के नहीं आता।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और उस समय गली मोहल्ला ही हमारा विशाल खेल का मैदान हुआ करता था।
2: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और एक छुआ छुआल भी होता था, एक दूसरे कौन कितना तेज दौड़ रहा है उसको भी खेलते थे हम लोग
1: जी। एक दौड़ा उसको आउट किया, फिर जब दूसरा आके उसको छू के चला जाता था तो वो फिर से जिंदा हो जाता था, ऐसा ही कुछ था वो।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह के खेल भी खेलते थे, और गर्मी का एहसास भी नहीं होता था, बुजुर्ग कहते थे कि गर्मी लग गई है। और मैं दीदी जी आपको ये बता दूं कि मुझे एक जो गर्मी के सीजन में 3-4 बार लू लगती थी।
1: ओहो,
2: तो हमारे यहाँ एक जो ये चने का साग होता सूखा है, हमारी दादी लगाती थी मुझे जो है, मार मार के लगाती थी, और वो सूखे साग से ही मेरा सब

0: वो सही हो जाता था, कोई ना कोई टेबलेट ना कुछ भी नहीं।
1: असल में क्या था ना दिनकर जी, उस समय धूल मिट्टी से सने हुए हम पसीने से तरबतर अपने दोस्तों के साथ खेलते रहते थे और हमारे अंदर से ये आवाज आती थी कि थकना मना है जब तक घर से बुलावा ना आ जाए।
0: जी जी जी जी जी
1: जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा दिनकर जी।
0: और ये आपकी बातचीत मेरे प्रेमदास बाबा और सुन रहे हैं, बाजू में बैठे हैं, वो भी जो हंस रहे हैं और सुन रहे हैं।
1: हाँ, उनको भी अपने पुराने बचपन के दिन याद आ रहे होंगे अपनी बातों से।
0: जी जी याद आ रहे हैं, वो सभी तो मुस्कुरा रहे हैं
1: जी। उनको भी हमारा नमस्कार कहिएगा।
0: नमस्कार कर लिया उन लोगों ने।
1: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा
0: जी। दीदी जी नमस्कार।
1: नमस्ते नमस्ते।

0: खेलों की जो हमने खेले हुए थे।
1: जी
0: आपने कौन कौन से खेल खेले हैं क्या आप हमें बता सकते हैं?
1: जी जी हमने खेली थी कबड्डी, खो
0: बहुत
1: खो, फुटबॉल,
0: बहुत बढ़िया।
1: गिल्ली डंडा,
0: अच्छा,
1: अंडा दावरी।
0: इनमें आपका सबसे पसंदीदा खेल कौन सा था?
1: मैम कबड्डी खेलते थे ज्यादा।
0: कबड्डी खेलते थे।
1: जी जी
0: अच्छा, ये तो हो गए बाहरी खेल। कभी घर में बैठ के वाला खेल भी
1: खो
0: खेला है आपने?
1: खो वगैरह तो कम खेलने लगी मैम।
0: जी,
1: जी
0: कबड्डी आपका पसंदीदा खेल था।
1: जी
0: अच्छा, आज
1: और
0: हम
1: वॉलीबॉल भी मैन है।
0: वॉलीबॉल।
1: जी, हमारे यहाँ होती भी है बहुत ज्यादा वॉलीबॉल, मतलब मुख्य मानी गई हमारे दमोह जिला की टीम बजी भाई मैम, यहाँ गाँव भी हमारी बहुत रहेगी।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया।
1: जी,
0: असल में आजकल क्या हो गया है कि बच्चे चार दीवारी में सिमट के रह गए हैं। वो बाहर खेलना नहीं चाहते, मोबाइल में खेलेंगे, टीवी देखेंगे। तो
1: वहाँ
0: आप
1: खेलने की तो रुचि नहीं रही उनकी।
0: जी, रुचि नहीं रही।
1: जी
0: कुछ हैं बच्चे, कुछ जो खेलों में हम जिनके अभी रुचि है वो बाहर जाके खेलना पसंद करते हैं,
1: जी
0: और बच्चों के भी गेम वही हैं
1: जी
0: लक्ष्मण सिंह जी,
1: जी
0: लेकिन कुछ के नाम जैसे चेंज हो गए। हम छुपन छुपाई खेलते थे, वो हाइड एंड सीक बोलते हैं उसको
1: हाँ
0: है ना? तो आप अपने बच्चों को अपने पुराने दिनों के खेलों के बारे में बताते हैं कि हम लोग ये खेला करते थे?
1: हाँ बता रही थी मैम, क्योंकि लगे हम जानते नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों से अपन कहा हम खेला तो नहीं, जितने पुराने खेल हैं जो आप और खेले हैं हमारे बताओ जी। हालांकि बच्चों
0: अच्छा,
1: के लिए
0: ठीक है लक्ष्मण सिंह जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: मैं ओम प्रकाश नेमा विद्यानगर तेंदुला जिला दमोई मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैडम,
0: ओम प्रकाश जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छी हैं।
0: आज हम बात कर रहे हैं हमारे बचपन के खेलों की।
1: जी
0: जी, तो उस दौर में 80-90 का जो दशक था और उससे पहले भी हम जो खेल खेलते थे उसके बारे में, बचपन के दिनों के खेलों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप बताइए, आप कौन कौन से खेल खेलते थे बचपन में?
1: बचपन में हम तो गिल्ली डंडा खेलते थे।
0: अच्छा, गिल्ली डंडे का खेल कैसा होता है ये हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे, क्योंकि आज बहुत से नए बच्चे हैं जो वो जानते तो हैं इस खेल का नाम कि गिल्ली डंडा ये है, पर उसको खेलते कैसे हैं ये वो नहीं जानते।
1: एक लकड़ी का डंडा होता था
0: जी,
1: और एक छोटी लकड़ी होती थी
0: जिसको गिल्ली कहते हैं।
1: उस लकड़ी को छोटी लकड़ी पर मारते थे, वो उछलते थे तो वो दूर चली जाती थी। जिसकी लकड़ी वो दूर जाती थी,
0: हाँ,
1: और उससे जो जिसकी लकड़ी पास जाती थी उस पर दाम पड़ता था।
0: अच्छा
1: जी,
0: दूर वाला है वो जीत जाता था।
1: वो जीत जाता था
0: जी,
1: पास वाला
0: हार जाता
1: नहीं
0: था।
1: जीतता था।
0: हाँ, आपको याद है अभी भी अपना खेला हुआ खेल?
1: तीन चार लोग, जितने भी लोग, बहुत सारे लोग भी खेल सकती थी
0: जी।
1: और एक बात ये भी है मैडम कि पुराने खेल जितने थे
0: जी,
1: वो जितने भी बच्चे लोग खेलते रहते थे तो हर प्रकार से कोई ना कोई व्यायाम उसमें होता रहता था,
0: बिल्कुल
1: स्वस्थ रहता था
0: जी। बहुत जरूरी है खेल। आजकल बच्चे खेलना नहीं चाहते हैं, घर में ही रहते हैं, लेकिन खेल हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है,
1: बहुत जरूरी है। और आजकल क्या है, वीडियो गेम खेलने लगे हैं मोबाइल पर
0: जी,
1: तो इसमें स्थिर बैठे रहते हैं तो ये आंखों के लिए भी परेशानी होती है और थोड़ी दिमाग के लिए भी परेशानी होती है
0: जी। बहुत दिक्कत वाला है ये, घर में बैठ के बच्चे जो मोबाइल खेलते रहते हैं उनसे आंखें भी उनकी खराब होती हैं, सेहत पे भी गलत असर पड़ता है उनकी फिजिकल।
2: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसारण के लिए हम आपको ले चलते हैं दिल्ली।

0: इतना कहना है कि आज जबकि हर एक योजना की कल्पना विकसित भारत के लक्ष्य को मद्देनजर रख करके की जाती है, तो ऐसे में ये युवा जब आपके हाथों से नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे तो साथ ही साथ उन्हें सन 2047 के भारत के निर्माण की जिम्मेवारी भी सौंपी जाएगी। परमात्मा उनको सामर्थ्य दे, उनको क्षमता दे, इसी कामना के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आज पूरा विश्व तेजी से विकसित होते भारत की ओर उम्मीद और गौरव से देख रहा है। आज का ये रोजगार मेला भारत की विकास यात्रा में युवाओं के विशाल योगदान का संदेश लेकर आया है। इस अवसर पर प्रस्तुत है एक लघु फिल्म।

0: ऐसी बढ़ता, विकास के नित नए कीर्तिमान बनाता, आज का भारत एक नए दौर में कदम रख चुका है, जहां सपनों की उड़ान केवल मेहनत और हुनर से तय होती है। रोजगार हो या स्वरोजगार, बीते करीब 12 वर्षों में करोड़ों युवाओं के सामर्थ्य को स्वावलंबन से जोड़ने के लिए सतत और सफल प्रयास हुए हैं। गांव, गरीब, किसान के बच्चे हो या मिडिल क्लास के, दूर सुदूर के क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी हो या शहरों में रहने वाले, आज हर किसी के लिए सरकारी सेवा से जुड़ने का रास्ता भी एक ही है। लगन, परिश्रम और दृढ़ संकल्प, न सिफारिश, न जुगाड़ और न कॉन्टैक्ट। हकदार को ही आज मिलता है उसका हक, क्योंकि भारत सरकार की चयन प्रक्रिया है पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी। इस प्रक्रिया के केंद्र में है UPSC, SSC, RRB और IBPS जैसी संस्थाएं, जहां हर योग्य युवा का सपना हो रहा है साकार। इन चयनित युवाओं को राष्ट्र सेवा से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है रोजगार मेला, जहां अपॉइंटमेंट लेटर पाकर ये युवा परिवार, समाज और राष्ट्र का बढ़ाते हैं मान।
1: रोजगार मेला एक इंस्टीट्यूशन बन गया है। इसके जरिए लाखों युवाओं को सरकार के अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं।
0: रोजगार मेलों के तहत अब तक लाखों युवाओं को इस पहल के माध्यम से नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, और इसी क्रम को जारी रखते हुए आज रोजगार मेला के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रेल, इसरो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग आदि क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में अनेक पदों हेतु नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। इस सूची में शामिल है रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट तथा RPF कांस्टेबल, बैंकिंग सेक्टर में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, मैनेजमेंट ट्रेनीज व एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, इसरो में साइंटिस्ट, इंजीनियर तथा टेक्निकल असिस्टेंट, शिक्षा मंत्रालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में नर्सिंग ऑफिसर, स्टोर कीपर कम क्लर्क, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, सीनियर रेजिडेंट, CPSC, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में मैनेजर, डिप्टी मैनेजर एवं असिस्टेंट मैनेजर, रक्षा क्षेत्र में नाविक जैसे विभिन्न पद। देश की समर्थ युवा शक्ति विकसित भारत एट 2047 के संकल्प की सिद्धि में अहम भूमिका निभा रही है। रेलवे को गति देने में, अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां छूने में या वित्तीय सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने में उनका योगदान हर क्षेत्र में दिखाई देता है। ये कर्मयोगी युवा सिर्फ अपने जीवन को ही नहीं बदल रहे, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भागीदार भी हैं और साक्षी भी।

0: यही नए भारत की पहचान है, जहां हर उपलब्धि के पीछे मेहनत की कहानी है और अवसर की समानता का अटूट विश्वास है। रोजगार मेला युवाओं की निरंतर प्रगति, विकसित भारत की गति शक्ति।
1: अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस अभियान का शुभारंभ करें।

मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि रोजगार मेले के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें।

साथियों, आज देशभर के हजारों युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। साथियों, यहां तक पहुंचने के लिए आप सभी ने लंबी तैयारी और कड़ा परिश्रम जरूर किया होगा। इस उपलब्धि के लिए मैं आपको भी और आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको यहां तक पहुंचाने में आपके माता पिता और परिवार का योगदान कम नहीं होता है, लेकिन इतना भी यही है कि जैसे परिवार का योगदान होता है, समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। हमें यहां पहुंचाने के लिए हम सिर्फ अपने कारण नहीं पहुंचते, सिर्फ अपने परिवार के कारण नहीं पहुंचते। इस विशाल देश के 140 करोड़ नागरिकों के योगदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है और इसलिए हमारा दायित्व खुद के प्रति, खुद के परिवार प्रति, वैसे ही संपूर्ण समाज के प्रति भी रहता है। और मुझे विश्वास है इन सभी कामों के लिए आप अपने आप को और अधिक योग्य बनाएंगे। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको पता है अभी दो दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है। दुनिया

भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। इस यात्रा के दौरान अब जैसे नीदरलैंड की मैं बात करूं तो नीदरलैंड्स के साथ सेमीकंडक्टर्स, वाटर, एग्रीकल्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा हुई। स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डिजिटल इनोवेशन, उस पर सहयोग की बहुत सारी बातें हुई। नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात आगे बढ़ी है। UAE के साथ स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर महत्वपूर्ण समझौते हुए। इटली के साथ डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टनरशिप्स पर एग्रीमेंट हुए। साथियों, इन सारे एग्रीमेंट्स का सीधा लाभ भारत के युवाओं को मिलने वाला है। और आपने देखा होगा कि सारे विषय एक उज्जवल समर्थ भारत के भविष्य की गारंटी लेकर के आते हैं, क्योंकि हर नया निवेश, हर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भारत के युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज तो लेकर के आता ही है, लेकिन अनगिनत नए अवसर तैयार करता है। मेरे नौजवान साथियों, हमें याद रखना है ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें आने वाला इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप आने वाले 3-4 दशक की ग्लोबल ग्रोथ को ये शेप करने वाली इंडस्ट्री तैयार करेगी। और निश्चित तौर पर भारत के युवाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, भारत किस तरह दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर कंपनी, आप में से बहुत लोग इस नाम से परिचित होंगे, ASML, ASML के साथ भारत की टाटा कंपनी का एग्रीमेंट है। भारत दुनिया के कुछ ही देशों में से एक है जिसके साथ इस कंपनी ने समझौता किया है। ASML, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच ये अकेला समझौता ही भारत में रोजगार के अनगिनत नए मौके बनाएगा और भारत को एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश द्वार खोल देगा। ऐसे ही स्वीडन के साथ टेक्नोलॉजी और AI पार्टनरशिप्स, UAE का साथ सुपर कंप्यूटिंग को

ऑपरेशन। भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता को बहुत मजबूत करने वाले हैं। इन एग्रीमेंट से युवाओं के लिए नए अवसर तो होंगे ही होंगे। साथियों, आज क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी पार्टनरशिप एक नई इकोनॉमी के न्यू अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल रही है। स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये भारत को क्लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फ्यूचर इंडस्ट्रीज में मजबूत करेगा। इसके अलावा भारत ने पोर्ट्स, शिपिंग और मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एग्रीमेंट पर तेजी से काम किया है। यूएई और नॉर्वे के साथ पार्टनरशिप से भारत का शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा। और आप तो जानते हैं, शिप बिल्डिंग यानी स्किल्ड मैन पावर की बहुत जरूर पड़ती है। यानी भारत के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और स्किल्ड वर्कर्स के लिए इतनी मांग बढ़ने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितने अवसर तैयार होंगे। साथियों, हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। आज दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो इनोवेट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं और जो बड़े स्तर पर डिलीवरी कर सकते हैं। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूं। साथियों, आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है। आने वाले समय में भारत की 10 बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट्स दुनिया में अपना परचम लहराएगी। इनमें बड़ी संख्या में भारत के नौजवानों का सामर्थ्य होगा, भारत के नौजवानों की बुद्धि प्रतिभा होगी, भारत के नौजवानों का कमिटमेंट होगा। और स्वाभाविक है, रोजगार तो है ही है।
भारत आज

शिप बिल्डिंग से लेकर शिप रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग का भी इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। इसके लिए करीब 75,000 करोड़ रुपए 75,000 करोड़ रुपीज का निवेश किया जा रहा है। इसी तरह भारत में ही हम पूरा एमआरओ इकोसिस्टम यानी मेंटेनेंस, ओवरहॉल और रिपेयर फैसिलिटीज तैयार कर रहे हैं। इससे देश के एविएशन सेक्टर को बहुत मदद मिलने वाली है और भारत के युवाओं के लिए रोजगार का नया सेक्टर तो खुलना ही खुलना है। साथियों, भारत आज एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है और हम इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंप्लीट वैल्यू चेन भारत में ही बना रहे हैं। इसके लिए जो पीएलआई स्कीम चल रही है उससे देश में रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हो रहा है और युवाओं को लाखों की संख्या में जॉब्स भी मिल रही है। साथियों, ऐसे अनेकों अभियानों पर भारत का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। ये निवेश देश के युवाओं को देश में ही जॉब्स दे रहा है, उनके सपने पूरे कर रहा है। एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, जो कि आज नियुक्ति पत्र के भरने के बाद आपकी पहचान बनने वाली कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो उस नाते आपको भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देश की कितनी बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसमें ये मानी हुई बात है, आप भी जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब गांव, छोटे शहर और दूर दराज के इलाके विकास से जुड़ते हैं तभी देश की प्रगति का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। पिछले 12 वर्षों में रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कल्पना भर का तेज गति से विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, हर स्तर पर काम हुआ है। आज आप अपने क्षेत्र में किसी की भी दिशा में 100 किलोमीटर अगर जाएंगे तो भारत सरकार द्वारा कोई न कोई काम चलता हुआ नजर आएगा आपको। आज गांवों में भी बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ने से किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुले हैं। आज करोड़ों परिवारों को पक्का घर मिला है, यानी दुनिया के

एग्रीकल्चर में वैल्यूएडिशन होने लगा। पहले अगर वो लाल मिर्ची बेचते थे, अब बिजली आई तो लाल मिर्ची का पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना करके पैकेज बनाते हैं, पैकेज बना करके बेचते हैं। तो गांव में भी छोटे छोटे छोटे छोटे उद्योग इसके कारण बढ़ते जाते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी तो गांव के लोग भी पूरे विश्व के साथ जुड़ रहे हैं, आधुनिकता से जुड़ रहे हैं। शहर और गांव का फर्क मिटता चला जा रहा है और इससे अर्थव्यवस्था की गति तेज हुई है। और इन सब का पॉजिटिव प्रभाव देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बन जाता है। रोजगार तो निर्माण होते ही होते हैं, लेकिन राष्ट्र भी एक नए स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ जाता है, लाखों लोगों को नए मौके भी मिल जाते हैं। साथियों, आज भारत के युवा के पास जिस तरह से आगे बढ़ने के, अपने सपने पूरा करने के मौके हैं, ऐसा अवसर पहले नहीं मिला है। मैं किसी का दोष नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है कि आज बहुत तेज गति से सब हो रहा है, विशाल फलक पे हो रहा है, विविधताओं से भरा हो रहा है। आज मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, डिजिटल सर्विसेज, रेलवे, डिफेंस, इतना ही नहीं स्पेस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में अनगिनत अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवा नए अवसरों का लाभ उठा सके और देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिले। इसलिए स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री लिंक एजुकेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दिया जा रहा है। IITs को मॉडर्न बनाया जा रहा है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को मजबूत किया जा रहा है, पीएम सेतु जैसे अभियान इसी दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 2,30,000 से ज्यादा, ये आंकड़ा याद रखिए, 2,30,000 से ज्यादा रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं और उसमें भी दो चार नौजवान भी जुड़े हुए होते हैं। अहम बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है और मुझे इसका सबसे ज्यादा आनंद है। आजकल तो Tier 2 और Tier 3 शहरों के युवा भी बहुत बड़ी संख्या में स्टार्टअप और इनोवेशन की दुनिया में अपना ताकत दिखा रहे हैं, उनके सामर्थ्य की नोट लेनी पड़ रही है। ये परिवर्तन अब देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बदलाव में हमारी नारी शक्ति की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। आज बड़ी संख्या में विमेन लीड स्टार्टअप्स, ये जब सुनते हैं ना मन गर्व से भर जाता है। मैं जब दुनिया के लोगों को बताता हूं कि हमारे यहां स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही है, मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं ने भी लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है।

आज गांवों में, छोटे शहरों में पहले से ज्यादा महिलाएं अपने दम पर नए काम शुरू कर रही हैं। साथियों, नीतियां और निर्णयों के इस अभियान के बीच आपको एक और बात याद रखनी है, किसी भी व्यवस्था की असली ताकत उसके लोग होते हैं, जनता जनार्दन की शक्ति होती है, जनशक्ति होती है, और जनशक्ति ही तो राष्ट्रशक्ति बनती है। आप सभी जिस व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध करोड़ों करोड़ों देशवासियों के जीवन से है, करोड़ों करोड़ों देशवासियों की आशा आकांक्षाओं से है। सरकारी नौकरी लोगों के जीवन को आसान बनाने का माध्यम ही होती है। आप जिस भी विभाग में काम करेंगे वहां आपके व्यवहार, संवेदनशीलता और काम करने के तरीके का बहुत महत्व होगा। देश ने आप पर भरोसा किया है, अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने काम से, अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से उस भरोसे को और मजबूती देंगे। देशवासियों के हृदय में एक नया विश्वास भर जाएगा, आपको मिलते ही वो नई आशा के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए हर युवा कर्मयोगी अपने काम को जिम्मेदारी की तरह देखें, और मेरे लिए तो आप बहुत कुछ हैं। पहले जमाने में हम सुनते थे ना, सहस्त्र बाहु वाले फलाने, सहस्त्र बाहु वाले ढींकने, आज सरकार के बाहु आप ही हैं, सरकार का सामर्थ्य आप ही है। जो पहले से सरकार में है वो भी है, जो नए आ रहे हैं वो भी है। आज भारत के लोगों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ रही हैं और मैं इसे विकास की पॉजिटिव साइन मानता हूं। हमें अपने देश के लोगों के एस्पिरेशंस को समझना भी है और उसके हिसाब से उतनी ही तेज गति से काम भी करना है। ऐसे में पब्लिक सर्विस में आने वाले युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। आपको लगातार सीखते रहना होगा, खुद को नई टेक्नोलॉजी, नई सिस्टम और नई जरूरतों के हिसाब से तैयार करना होगा। इसमें आपको iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से बहुत मदद मिलेगी। कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। साथियों, आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं, जन सेवा का माध्यम मानते हैं। और हमारे यहां तो कहा, जन सेवा ही प्रभु सेवा। मुझे पूरा विश्वास है आज नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे युवा साथी भारत के विकास यात्रा को नई गति देंगे। आपके काम, आपके फैसलों से
विकसित भारत के संकल्प की।

0: सिद्धि होगी और आपको वो मंत्र कभी भूलना नहीं है। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव, नागरिक देवो भव, नागरिक का कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। मैं एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को आगे के जीवन के लिए, देश सेवा के इस अवसर को निभाने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: देखतुल, अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देशभर के 47 स्थानों पर आयोजित 19 रोजगार मेले के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार पत्र वितरित करने के अवसर पर आयोजित समारोह और माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन सुन रहे थे।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। यह मेला देश के 47 स्थानों पर एक साथ आयोजित हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे कोलकाता पहुंचे। ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सिंगरौली दौरे पर 513 करोड़ के विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। प्रदेश के अनारक्षित वर्ग के मेधावी छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए राज्य सरकार करीब 36 लाख रूपये तक की मदद देगी। इसके लिए 25 मई शाम 6 बजे तक आवेदन किए जा सकते हैं। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 1 जून से 12 जून तक भोपाल के 2 परीक्षा केन्द्रों पर होगी। परीक्षा हर रोज 4 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। भोपाल बीएचएल दशहरा मैदान में आज शाम 5 बजे से फिल्म पेदी के म्यूजिकल इवेंट पेदी की आवाज का आयोजन होगा, जिसमें प्रसिद्ध संगीतकार एआर रहमान की लाइव परफॉर्मेंस होगी। और जापान में आयोजित होने वाले महिला अंडर 18 एशिया कप 2026 के लिए घोषित भारतीय टीम में प्रदेश के 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में हमने गीत लिया है फिल्म आंखें से और स्वर है लता मंगेशकर के। गीत लिखा है सुधीर लुधियानवी ने और संगीत है रवि का। इस गीत को सुनना चाहा है प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, गौतम नगर जिला नांदेड़ से।

0: मत कभी कभी।
1: आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म इज्जत से, स्वर है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के। साहिल लुधियानवी के लिखे गीत को संगीतमय बनाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनना चाहा है दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय ने, श्रीमती रोशनी राय ने और प्रांजल राय ने। इसी गीत को सुनना चाहा है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित ने।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में साहिर की लिखी रचना को। धुन बनाई है खयाम ने और फिल्म है कभी कभी। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रियाज ठाकुर। इसी गीत को सुनना चाहे छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र वर्मा ने।

कार्यक्रम का अगला और बहुत ही खूबसूरत गीत पसंद किया है श्रोताओं ने। ये गीत है फिल्म धर्मात्मा का और इस गीत को गाया है मुकेश और कंचन ने। शब्द रचना हिंदीवर की और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

कार्यक्रम का अंतिम गीत जिसे हमने लिया है फिल्म वंस अपॉन टाइम इन अ मुंबई। आवाजें हैं राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की, शब्द रचना इरशाद कामिल की और प्रीतम की। गीत सुनना चाहा है आपने नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन ने।

इसी गीत के साथ फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय है अंतराल का।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक पंचतंत्र की 10वीं कड़ी।

0: श्रोतागण को मेरा प्रणाम। सभी बच्चे बूढ़े अपने अपने स्थानों को ग्रहण कर लें, क्योंकि अब शुरू हो रहा है पंचतंत्र की कहानियों का सिलसिला। काकोलुकियम की प्यारी प्यारी कहानियों को आगे बढ़ाते हुए पहली कहानी इस प्रकार है। महिला रौप्य नगर में देवशक्ति नाम का एक राजा रहता था। उनका एक ही पुत्र था, जिसे लेकर महाराज अत्यंत चिंतित रहते थे, क्योंकि राजपुत्र के पेट में एक सर्प रहा करता था। उस उदरस्थ सर्प के कारण उसका स्वास्थ्य क्षीण होता चला जा रहा था।
1: हे ईश्वर, लोग पुत्र धन मांगते हैं, मुझे आपने पुत्र धन देकर भी इस कष्ट को भोगने के लिए छोड़ दिया। हर प्रकार से चिकित्सा करवा चुका हूं। अच्छे अच्छे वैद्यों, शास्त्रीय विधि से निर्मित औषधियां, कितने प्रकार के उपचारों के उपरांत भी राजपुत्र स्वस्थ नहीं हो पा रहा है।

0: मैं जानता हूं पिताजी, आप मुझे लेकर अत्यंत चिंतित रहते हैं। युवा पुत्र मां बाप के दुखों को बांटता है, उनकी चिंताएं दूर करता है, और मैं
1: नहीं पुत्र, नहीं, ऐसे निराश नहीं होते। भगवान इतने निष्ठुर नहीं हो सकते, कोई ना कोई उपाय अवश्य निकलेगा। तुम चिंता ना करो पुत्र, तुम चिंता ना करो।

0: मैं जानता हूं पिताजी, आपके हृदय में क्या दुख है। मैं आपको और दुखी नहीं देख सकता। मैं आज ही रात इस महल को छोड़कर चला जाऊंगा। फिर जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा।
1: उसी रात को राजपुत्र ने महल छोड़ दिया। दूसरे नगर में जाकर भिक्षाटन करके वो जीविका चलाने लगा और रात में एक विशाल देवालय में सोकर अपना समय व्यतीत करने लगा। जिस नगर में राजकुमार रहता था उसी नगर का राजा था बलि। उसकी दो कन्याएं युवा हो चुकी थीं। सूर्योदय काल में दोनों प्रतिदिन पिता के चरण स्पर्श करती।
2: प्रणाम पिताश्री।
3: सौभाग्यवती भव।
2: पिताश्री, आपकी ही कृपा से मुझे संपूर्ण सुख भोगने को मिलता है।
3: आयुष्मान भव पुत्री, मेरी कन्याओं को मैं कभी कोई कष्ट नहीं होने दूंगा।
4: परंतु महाराज, मैं तो अपने भाग्य फल का ही उपभोग करती हूँ, आप तो निमित्त मात्र हैं।
3: दृष्टा, ये तुम्हारा दुस्साहस है। मेरे सम्मुख इतनी बड़ी बात कहने में तनिक भी भय नहीं हुआ तुम्हें?
4: भय? भय कैसा पिता महाराज, ईश्वर ने सबको अपना अपना भाग्य दिया है। मैं भी सिर्फ अपने भाग्य का ही खाती हूँ।
3: अच्छा, इतना ही विश्वास है तुम्हें अपने ईश्वर पर? मैं भी देखता हूँ भाग्य कब तक तुम्हारा साथ देगा। महामंत्री, इस कटुभाषिणी कुमारी को ले जाकर इसका विवाह किसी परदेशी के साथ करवा दो।

0: ही अपने कर्मों का भोग करे। जाओ।
1: जैसी आज्ञा पिताश्री।
2: मंत्रियों ने भी राजकन्या को ले जाकर उसका विवाह उस देवालय वासी राजकुमार के साथ कर दिया। राजपुत्री प्रियंवदा ने भी प्रसन्न मन से उसे पति देवता की तरह स्वीकार कर लिया। उसे लेकर वो दूसरे नगर में चली गई।
1: आइए स्वामी, आइए आप यहाँ बैठिए। आप यहाँ इस वट वृक्ष के नीचे विश्राम करें, मैं समीप के बाजार में जाकर कुछ घी, तेल, नमक, चावल लेकर आती हूँ। आप भी भूखे होंगे।
2: वस्तुएं क्रय करके लौटने पर उसने देखा, राजपुत्र किसी सर्प के बिल पर सिर रखकर सो रहा है।
1: हे भगवान, ये क्या? स्वामी के मुख से सर्प फन निकाल कर बैठा है। हे ईश्वर, अब क्या होगा? हे भोलेनाथ, रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना। अरे, इस बिल से तो एक सर्प निकल रहा है। क्या करूं? हे ईश्वर, कैसे स्वामी के प्राण बचाऊं? हे ईश्वर, अरे ये सर्प तो कुछ बोल रहे हैं।
3: अरे दुष्ट, इस राजपुत्र को तुम इस प्रकार क्यों कष्ट दे रहे हो? निकल क्यों नहीं जाते इसके शरीर से?
4: पापी, इस वृक्ष के विवरण में रखी हुई स्वर्ण मुद्राओं से भरे दोनों घड़ों को तुमने क्यों दूषित कर रखा है?
3: दुष्ट आत्मा, क्या तुम्हारी औषधि कोई नहीं जानता कि पुरानी कांजी और काली सरसों को पीसकर गरम जल के साथ पीने से तुम मर सकते हो?
4: तुम्हारी भी औषधि को क्या कोई नहीं जानता? गर्म तेल अथवा खोलते हुए जल को बिल में डालने से तुम मर सकते हो।
1: आज का ये क्षण मेरे जीवन में कितना आनंद दे गया। मैं अभी ये उपाय करती हूँ, मेरे स्वामी स्वस्थ हो जाएंगे। हे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद है।
2: दोनों सर्प मर गए। धन और स्वस्थ पति को लेकर प्रियंवदा श्वसुर गृह लौट गई। इसीलिए कहते हैं, परस्पर विवाद में एक दूसरे के रहस्यों को व्यक्त करने वाले सर्पों की तरह मरते हैं। अब हम सुनेंगे रथकार की कथा। कान्यकुब्ज नगर में वीरवर नाम का एक रथकार अपनी पत्नी कामदमनी के साथ रहता था। कामदमनी व्याभिचारिणी थी। एक बार वीरवर ने सोचा,
5: मुझे इसकी परीक्षा लेनी होगी। इसके उल्टा होने की चर्चा तो सुन चुका हूं, आज मैं स्वयं ही इसकी परीक्षा लूंगा।

0: सुनो प्रिय
1: जी, कहिए।
0: कल प्रातः काल मैं समीप के गांव में जा रहा हूँ, बहुत आवश्यक कार्य है, इस कारण कई दिन लग जाएंगे। भोजन के लिए कुछ बना दो तो अच्छा रहेगा।
1: अरे वाह, ये तो मेरी मनोकामना ही पूरी हो गई। हाँ हाँ स्वामी, क्यों नहीं, आप निश्चिंत रहे।

0: दूसरे दिन प्रातः काल होते ही वो रत्कार घर से बाहर चला गया। पति को बाहर गया हुआ समझकर कामदमनी ने किसी प्रकार दिन व्यतीत किया। शाम होते ही श्रृंगार कर अपने प्रेमी देवदत्त के पास जाकर बोली,
1: प्रिय
2: हाँ?
1: मेरा दुष्ट पति किसी अन्य गांव को चला गया है।
2: अच्छा,
1: जब सब सो जाए तब चुपचाप मेरे घर आ जाना, मुझसे तो अब ये विरह वेदना सही नहीं जाती है।
2: ठीक है, आ जाऊंगा।
0: और इधर की कहानी सुनिए। रथकार घर से तो निकला दूसरे गांव का कहकर, पर वो वन में दिन भर बैठा रहा। शाम होते ही घर के झरोके से प्रवेश कर पलंग के नीचे छिप कर बैठ गया। इसी बीच उसकी पत्नी का प्रेमी देवदत्त भी आकर पलंग पर बैठ गया।
3: दुष्ट अधर्म, जी तो चाहता है अभी निकल कर इनकी हत्या कर दूं। नहीं, जब दोनों साथ में हो तभी निकल कर इन्हें चौंका दूंगा और एक साथ ही मार डालूंगा।
1: उफ, कब से इस पल की प्रतीक्षा में थी मैं।
2: हाँ, मैं भी।
1: मैं दरवाजे पर साकल लगा कर आती हूँ।
2: ठीक है।
1: लो, मैं बैठ गई, आप बताओ। अरे अरे, ये मेरे पैर किससे टकराए? कहीं ये मेरा पति तो नहीं? अवश्य वो मेरी परीक्षा ले रहा है, मैं अभी बताती हूँ। श्रीमान देवदत्त जी, आप मेरे शरीर का स्पर्श न करें, क्योंकि मैं अत्यंत साध्वी, पतिव्रता एवं महासती हूँ। यदि आपने मेरा कहना नहीं माना तो मैं आपको श्राप देकर भस्म कर दूंगी।
4: यदि ऐसा ही करना था तो मुझे बुलाया ही क्यों?
1: सुनिए, आपको यहाँ बुलाने का कारण अभी बताती हूँ। आज प्रातः काल मैं चंडिका मंदिर गई थी।
4: मंदिर? और तुम?
1: मेरी बात सुनो।
4: क्या?
1: जी हाँ, मैं देवी दर्शन के लिए गई थी। मेरे वहाँ पहुँचते ही देववाणी हुई। मैं तुमसे कैसे कहूँ, परंतु तुम मेरी भक्त हो, तुम्हें सत्य बताना ही पड़ेगा। दुर्भाग्य से तुम 6 माह में विधवा हो जाओगे। मैंने देवी से पूछा, भगवती, जैसे आप मेरे ऊपर आने वाली विपत्ति को जानती हैं, उसी प्रकार आप इस विपदा के प्रतिकार को भी जानती होंगी। कृपया मेरे पति के शतायु होने का उपाय क्या है बताएं। देवी बोली, उपाय है पुत्री, परंतु बड़ा कठिन है। तुम्हारे अतिरिक्त इस विपदा का प्रतिकार किसी के भी पास नहीं है। फिर मैंने पुनः निवेदन किया, देवी देवी, यदि वो उपाय मेरे प्राणों के परित्याग से भी संभव है तो भी मुझसे अवश्य कहिए, ताकि मैं शीघ्र उसे कर सकूं। देवी ने पुनः कहा, यदि तुम किसी अन्य पुरुष के साथ शैया पर उसका आलिंगन करो तो तुम्हारे पति की विपदा उस पर चली जाएगी और तुम्हारा पति शतायु हो जाएगा। हे सज्जन, अब ये आपकी इच्छा है कि आप मेरे साथ सहयोग करना चाहते हैं या नहीं, परंतु ये निश्चित है कि देवी का कथन असत्य नहीं होगा।

0: भद्रे, अगर मैं अपने जीवन का दान कर तुम्हारे जैसी नारी के सिंदूर की रक्षा कर सकूं, तो मेरा जीवन तो धन्य हो जाएगा। आओ कामदमनी, आओ।
1: हाँ देवदत्त,
0: आओ।

0: एक कामदमनी, तुष्टों के कहने से मेरे मन में तुम्हारे लिए संदेह उत्पन्न हो गया था। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैं चारपाई के नीचे छिपा बैठा था, अब मेरा संदेह समाप्त हो गया है। तुम पतिव्रत नारियों में श्रेष्ठ हो, क्योंकि पर पुरुष के साथ रहकर भी तुमने संयम का पालन किया। ये सब तुमने अपने पति की आयु वृद्धि के लिए किया। तुम धन्य हो कामधमनी, तुम धन्य हो।
1: स्वामी, स्वामी आपने मुझे पहचान लिया। धन्यवाद तो इस देवदत्त का करना चाहिए, जिसने सब कुछ जानकर भी मेरा साथ दिया।
0: महाशय, मेरे सत्कर्मों के फलों से आप यहाँ पर आए। आप ही की कृपा से मुझे 100 वर्ष की आयु मिली। आइए, मेरे हृदय से लग जाइए। मैं आज सबको बता दूंगा कि आपने मेरा कितना बड़ा उपकार किया है।
2: मूर्ख वीरवर प्रत्यक्ष रूप से पाप करते हुए देखकर भी झूठे समाधान से संतुष्ट हो गया। इन सारी कथाओं को सुनाकर स्थिर जीवी ने मेघवर्ण को बताया कि दूसरे की बातों से नहीं, स्वयं विचार करके ही निर्णय लेना उचित है। इसके पश्चात स्थिर जीवी ने मेघवर्ण को ये भी बताया कि यदि आप छोटी योनि के हैं, तो समान वर्ग के साथ ही मित्रता या शत्रुता शोभा देती है। एक और कथा भी सुनाई। गंगा के तट पर एक आश्रम था। वहां के कुलपति महर्षि याज्ञवल्क्य थे। एक बार वे गंगा के पवित्र जल का आचमन करने ही वाले थे कि तभी किसी पक्षी के मुख से छूटी हुई एक चूहिया उनके हाथ में आकर गिरी। उन्होंने तपोबल से उस चूहिया को कन्या के रूप में परिवर्तित कर दिया और उसे लेकर आश्रम लौट आए। अपनी पत्नी से बोले,
3: भाग्यवान, इस कन्या को ले जाओ, इसे अपनी ही कन्या समझना। प्रयत्न पूर्वक इसका पालन करो, ये ईश्वर का भेजा हुआ आशीर्वाद है।
1: जो आज्ञा स्वामी।
2: समय बीतने लगा।
1: स्वामी, हमारी पुत्री अब बड़ी हो चुकी है, इस कन्या के विवाह का उचित समय आ गया है।
3: देवी, आपने ठीक ही कहा, इसका विवाह मैं योग्य वर से ही करूंगा। यदि आप कहें तो भगवान सूर्य को बुलाकर उनके साथ पुत्री का विवाह करा दूं।
1: ये तो उत्तम विचार है, आप ऐसा ही करें।

0: पुत्री, क्या सूर्यदेव तुम्हें पसंद हैं?
1: तात, ये तो अत्यंत दाहक हैं। मैं इनके साथ विवाह करना नहीं चाहती। आप किसी श्रेष्ठ वर का आह्वान कीजिए।
0: मेघराज सूर्यदेव से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो सूर्य को भी आच्छादित कर देते हैं। मैं उन्हीं का आह्वान करता हूँ।
1: नहीं पिताश्री, मेघराज तो काले हैं। मैं अन्य श्रेष्ठतर से विवाह करूँ।

0: होगी।
1: मेघराज को वायुदेव अपने आघात से छिन्न भिन्न कर देते हैं। अब पवन देव मेघराज से श्रेष्ठ हैं।
0: पवन देव? नहीं नहीं तात, पवन देव अत्यंत चपल हैं। आप उनसे भी श्रेष्ठ का आह्वान कीजिए।
1: पुत्री, मुझे लगता है पवन देव से श्रेष्ठ पर्वत हैं, जो पवन देव के हिलाए भी नहीं हिलते।
0: पवन देव से श्रेष्ठ पर्वत? परंतु पिताजी, वो तो बहुत ही कठोर और निश्चल है। आप किसी अन्य श्रेष्ठ व्यक्ति से मेरा विवाह करें तो अच्छा हो।
1: तो फिर पर्वतराज से श्रेष्ठतर तो चूहे हैं, जो अनायास ही पर्वत में भी छिद्र कर देते हैं। तो क्या मूषक राज तुम्हें पसंद है? मैं उनसे तुम्हारा विवाह करा दूं?
0: अवश्य तात, अवश्य। इनसे श्रेष्ठ वर तो त्रिभुवन में कोई हो ही नहीं सकता है। आप मुझे चूहिया बनाकर इनसे मेरा विवाह करवा दें, ताकि मैं गृहिणी धर्म का पालन कर सकूं।
1: तथास्तु, आयुष्मान भव।
2: याज्ञवल्क्य ने ऐसा ही किया। इस कथा को सुनाकर स्थिरजीवी ने मेघवर्ण को बताया कि समान वर्ग या योनि में ही मित्रता या शत्रुता लाभदायक होती है और वही उचित भी है। इसी कारण इतने सुयोग्य पात्रों को छोड़कर उस मूषिका ने समान योनि के मूषक को ही चुना। एक बार मेघवर्ण के पूछने पर स्थिरजीवी ने कहा, वो दुश्मन के घर में घुसकर उसे मारने की योजनाएं बना रहा है। वहां उलूक राज को उनके ही मंत्रियों के विरुद्ध भड़का रहा है। मेघवर्ण ने उससे पूछा कि आगे क्या होगा और वो शत्रुओं के पास क्यों गया, तो स्थिरजीवी ने बताया,
3: मित्र मेघवर्ण, मैं बस उन्हीं क्षणों की प्रतीक्षा में था। मैंने उनमें फूट डाल दी थी। अब वो उलूकराज अपने ही बंधुओं द्वारा पीड़ित हैं। देखा, मैंने बीच में कार्य को नहीं छोड़ा।
4: तात, आपका कथन यथार्थ है। महान व्यक्ति विपत्तिग्रस्त होते हुए भी आरंभ किए हुए कार्य को विघ्न के भय से नहीं छोड़ते। आपने बुद्धि के द्वारा मेरे शत्रु का विनाश करके मेरे राज्य को निष्कंटक कर दिया है। मैं अत्यंत भाग्यवान हूँ।
3: नहीं महाराज, भाग्यवान तो मैं हूँ। आपके सानिध्य में किया हुआ कार्य स्वयं ही सिद्ध होता चला गया। जो कार्य विचार और बुद्धि से किया जाता है वो विजयकारक होता है।
4: नीति शास्त्र निश्चय ही फलकारक होता है। नीति शास्त्र के बल से ही आप मेरे शत्रु अरिमर्दन के विश्वस्त एवं अनुकूल बन गए और उसके गुप्त भेदों को जानकर उसे सपरिवार विनष्ट कर दिया।
2: और इस प्रकार एक दूसरे का धन्यवाद कर दोनों ने कृतज्ञता स्वीकार की। आज काक और उलूक की कथा समाप्त हुई। काकोलुकियम के पश्चात हम सुनेंगे लब्ध प्रणाश अगले सप्ताह आज ही के दिन आज ही के समय। तब तक के लिए नमस्कार।

0: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक पंचतंत्र की 10वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे कोलकाता पहुंचे। यह उनकी भारत की पहली यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज सिंगरौली दौरे पर 513 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन व लोकार्पण करेंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर्याप्त और स्थिर है। मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि घबराहट में ईंधन न खरीदें और केवल जरूरत के मुताबिक ही खरीदारी करें। नीट पेपर लीक मामले में जांच लगातार तेज होती जा रही है। सीबीआई ने इस कथित घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुणे की एक फिजिक्स टीचर समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रदेश के अनारक्षित वर्ग के मेधावी छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए राज्य सरकार करीब 36 लाख रुपए तक की मदद देगी। इसके लिए 25 मई शाम 6 बजे तक आवेदन किए जा सकते हैं। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 1 जून से 12 जून तक भोपाल के 2 परीक्षा केंद्रों पर होगी। परीक्षा हर रोज 4 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने आज 42 जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। और आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जॉयंट्स और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब महिलाओं के लिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का यह कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

समय की कद्र जो करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, हर प्रयास सफलता देता है। इस विचार के साथ महिला सभा सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को कल्पना शुक्ला का नमस्कार। बहनों, भारत एक विकासशील देश है जहां आज भी कई क्षेत्रों में गरीबी, कुपोषण और शिक्षा की कमी जैसी समस्याएं मौजूद हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित

0: होता है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं और उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना है पीएम पोषण योजना, जो पहले मिड डे मील योजना के नाम से जानी जाती थी। इस योजना का उद्देश्य सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है, जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सके और वे नियमित रूप से विद्यालय आए। बहनों, इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, जैसे कि कुपोषण को समाप्त करना। बहनों, बच्चों में कुपोषण एक बड़ी समस्या है। इस योजना के माध्यम से उन्हें संतुलित आहार प्रदान किया जाता है और जब बच्चों को स्कूल में भोजन मिलता है तो उनकी उपस्थिति बढ़ती है और गरीब परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित होते हैं। पौष्टिक भोजन से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होता है। सभी बच्चों को एक ही स्थान पर भोजन मिलने से समानता की भावना भी विकसित होती है और भोजन में चावल, दाल, सब्जियां, फल भी शामिल होते हैं। भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। बहनों, पीएम पोषण योजना के अनेक लाभ हैं, जिनका प्रभाव समाज और बच्चों दोनों पर पड़ता है, जैसे बच्चों का स्वास्थ्य सुधार, शिक्षा में सुधार, गरीबी में राहत, बाल श्रम में कमी और सामाजिक विकास। बहनों, पीएम पोषण योजना का संचालन केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर करते हैं। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग इनकी निगरानी करते हैं, ताकि किसी प्रकार की लापरवाही ना हो सके। पीएम पोषण योजना भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना की भूमिका निभा रही है। यह न केवल बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, बल्कि यह बच्चों के स्वास्थ्य को भी सुधारती है और शिक्षा को भी बढ़ावा देती है। यदि इस योजना को सही ढंग से और अधिक प्रभावी रूप से लागू किया जाए तो भारत सरकार में कुपोषण और अशिक्षा की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इस प्रकार पीएम पोषण योजना देश के बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव रखने वाली एक मजबूत योजना है। बहनों, गीत संगीत जो सभी के दिलो दिमाग को तरोताजा करते हैं, तो आइए सुनते हैं गीत दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है ज्वार भाटा।
1: ये समझो और समझाओ, होली में मौज मना

0: आधा आधा
1: राधे श्याम
0: ओ सीता राम
1: राधे श्याम
0: ओ सीता राम
1: भूखे की भूख मिटा दुनिया में नाम
2: कमाओ। बहनों अभी हमने सुना गीत दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ जिसे गाया था किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम ज्वार भाटा। बहनों भारत की प्रसिद्ध प्रसारण संस्था आकाशवाणी ने अपने 90 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। तो आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर श्रीमती सरिता सरिल जी जो एक वरिष्ठ कवियत्री हैं। आपने पिछले 45 वर्षों से आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुना और सराहा है। सरिता जी आपका हार्दिक स्वागत है।
3: सरिता जी आपके जीवन में आकाशवाणी का क्या महत्व रहा है?
4: आकाशवाणी का महत्व तो वही बता सकता है जो उसे सुनता है और मैंने तो बचपन से ही रेडियो को सुना है तो मेरे ऊपर तो काफी उसका प्रभाव भी पड़ा है और उसका महत्व भी मैंने जाना है कि आकाशवाणी को सुनने से कहीं ना कहीं जाने अनजाने हमारे अंदर कितने परिवर्तन आते हैं और वो शायद हम नहीं जान पाते लेकिन सामने वाला व्यक्ति जरूर जान जाता है जो हमसे रूबरू होता है क्योंकि हम उसको रेडियो को सुनकर उसकी भाषा शैली उसकी प्रस्तुति गीत संगीत समाचार और बहुत सी ज्ञानवर्धक चीजें लोक संस्कृति कहने का मतलब कि हमारे जो व्यक्तित्व विकास में बहुत सारी चीजों का योगदान होता है वो हमें आकाशवाणी से यानी रेडियो से मिलती है। जी
3: अच्छा सरिता जी क्या आपको बचपन में रेडियो सुनने की कोई विशेष याद आज भी याद है आपको कि आपने कोई ऐसा विशेष प्रोग्राम सुना रही है?
4: जी जी जी कल्पना जी बिल्कुल याद है। बहुत सी घटनाएं ऐसी होती थी क्योंकि बचपन से ही मैं रेडियो सुनती थी और मेरे पापा सुबह से यानी जब से सभा शुरू होती थी और रेडियो शुरू कर देते थे तो जो मंगल ध्वनि वगैरह जो बजती थी शुरू में
3: जी जी
4: उनसे हम लोगों की शुरुआत होती थी दिन की और चूंकि स्कूल में पढ़ते थे तो उसी के साथ हमको जगाया जाता था और बिस्तर छोड़ते छोड़ते मालूम है कल्पना जी हम लोगों को 6:35 हो जाते थे कि जब रामचरित मानस आने लगा।
3: अच्छा
4: जी जी और उसके बाद हम लोग दौड़ लगाते थे जल्दी से तैयार होना है क्योंकि 7 बजे फिर स्कूल भी जाना है और स्कूल जाते जाते जैसे ही 7:10 या 7:05 पर जो प्रादेशिक समाचार आते हैं उसकी वो संकेत ध्वनि बजती है और हम लोग स्कूल के लिए रवाना हो जाते हैं। मतलब कि बचपन ही मेरा जो है रेडियो से ही पूरा टाइम चुका हुआ था।
3: अच्छा सरिता जी आपके अनुसार आकाशवाणी ने भारतीय संस्कृति और संगीत को आगे बढ़ाने में क्या भूमिका निभाई है?
4: बहुत बड़ी भूमिका है कल्पना जी। भारतीय संस्कृति और संगीत साथ में बहुत सा ज्ञान विज्ञान भी सिर्फ संस्कृति और संगीत ही नहीं बहुत सारा ज्ञान विज्ञान बहुत सारे समाचार बहुत सारी योजनाएं हमारे देश के कोने कोने तक रेडियो के माध्यम से ही पहुंची।
3: अच्छा
4: रेडियो जी रेडियो जो है वो हमारे लिए जैसे सूर्य की रोशनी सब तरफ देखती होती है
3: जी जी
4: वैसे ही रेडियो ने हर आम और खास तक हमारी सारी योजनाएं हमारी संस्कृति को हमारे समाचारों को हमारे संगीत को बहुत ही तरीके से पहुंचाया और हर किसी को इसका लाभ दिया। मैं बचपन का किस्सा थोड़ा सा और सुनाना चाहूंगी क्योंकि बात मैं जब 7 बजे जब हम लोग स्कूल जाया करते थे तो उसके बाद जब घर लौटे और उसके बाद रात में क्या होता था शाम को खेलने के बाद हम लोग 7 बजे पढ़ने के लिए बैठा थी और जैसे ही 8:45 पर दिल्ली से समाचार आते थे और पापा हमारे समाचार

0: रहते थे, तो हम लोगों के कान लगे रहते थे कि जैसे ही समाचार शुरू हुए मतलब कि 9:15 बज गए और हम लोगों के बच्चे बंद, मतलब पढ़ाई खत्म, अब खाने का टाइम,
1: अब खाने का टाइम हो गया।
0: और पापा क्या करते थे, मतलब एक मधुर स्मृति है ये, हम लोग हमेशा बैठते हैं तो याद करते हैं कि पापा उस समय थोड़ा सा रेडियो की आवाज धीमी कर देते थे कि बच्चे अभी जल्दी टूट जाएंगे, तो धीमा कर देते थे, तो हम लोगों के काम वही लगे रहे कि अब जो है ये बहुत ही मधुर स्मृतियां हैं, बहुत ही सुखद यादें हैं बचपन की रेडियो से जुड़ी हुई, वही बताना चाह रही थी आपको।
1: अच्छा सर, सर ये 90 वर्षों की इस यात्रा को आप किस प्रकार देखती हैं?
0: देखिए कल्पना जी, सबसे पहले बहुत ही गर्व और खुशी की बात है ये कि एक 90 वर्ष की एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुनहरी, बहुत ही यादगार यात्रा जो है यहाँ तक आ पहुंची है, और हम सभी के अनुभव के साथ जुड़े हैं, क्योंकि हम लोग भी आज उस उम्र में आ गए हैं कि एक

0: कल्पना जी, सबसे पहले बहुत ही गर्व और खुशी की बात है ये कि एक 90 वर्ष की एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुनहरी, बहुत ही यादगार यात्रा जो है यहाँ तक आ पहुंची है और हम सभी के अनुभव उसके साथ जुड़े हैं, क्योंकि हम लोग भी आज उस उम्र में आ गए हैं कि एक लगभग 40-45 साल से हम रेडियो को सुन रहे हैं। अब तो देश की संस्कृति को, ज्ञान विज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो वो रेडियो ने निभाई है। क्योंकि हमने ये देखा है कि यहाँ पर हर आयु वर्ग के लिए अलग अलग कार्यक्रम है। बच्चों के लिए जैसे बाल मंडली होती है, बाल सभा होती है ना, और किसानों के लिए होता है हमारे यहाँ कार्यक्रम, महिलाओं के लिए, ग्रामीण महिलाओं का अलग है, शहरी महिलाओं का अलग है, और युवा श्रोताओं के लिए युवाणी है। तो इस तरह से हर एज ग्रुप के लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद, बहुत ही सकारात्मक भूमिका हमारे 90 साल की यात्रा में लोगों ने उसे महसूस किया है और निश्चित ही कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व में वो निखार आया है ये सब सुन सुन के।
1: अच्छा सरता जी, ये मतलब एक बात और मैं जानना चाहती हूँ, क्या आज के डिजिटल युग में भी रेडियो की उपयोगिता बनी हुई है, और बनी है तो क्यों बनी है?
0: बिल्कुल, दरअसल क्या है कि अगर हम इस यात्रा में कुछ नया भी जोड़ना कर शुरुआत करें, कुछ नए विषय, कुछ आधुनिक तकनीक जी, है ना, इसके साथ अगर हम बहुत सारी खरीदी प्रस्तुत करने लगे और किए भी जा रही है, ऐसा नहीं है, तो निश्चित रूप से युवा पीढ़ी आकर्षित होगी और इसको और भी कहते हैं ना कि पंख मिलेंगे और उड़ाने मिलेंगी आगे, नई मंजिलें, नए उनको सोचने के लिए विकास होगा, सोचने की क्षमता में विकास होगा, है ना जी। तो हर तरफ जो है उनके व्यक्तित्व के विकास में बहुत ही लाभदायी होगा। और टेक्नोलॉजी, आकाशवाणी का एक सबसे बड़ा महत्व मैं अंत में बताना चाहूंगी
1: जी,
0: तो ये है कि रेडियो सुनते वक्त हमें किसी एक जगह पर स्थिर होके नहीं बैठना पड़ता।
1: सही बात,
0: कहने का मतलब कि मैं हम अपने दैनिक कार्य करते भी रहते हैं और रेडियो सुनते भी रहते हैं।
1: सही बात,
0: ये और साधनों में ऐसा नहीं होता और माध्यमों में ऐसा नहीं होता, लेकिन रेडियो के साथ सबसे बड़ा सकारात्मक जो वो है बिंदु वो ये है कि इसके साथ हम अपने काम भी करते रहते हैं और हम गाने भी सुनते रहते हैं, समाचार भी सुनते रहते हैं और अपनी लोक संस्कृति का भी ज्ञान बढ़ाते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा महत्व रेडियो का ये है आज के दौर में।
1: सरिता जी, आप कवित्री भी हैं, जानी पहचानी हस्ती भी हैं, तो जैसे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्व होने पर हम आपकी कविता के माध्यम से आप आकाशवाणी को कोई शुभकामनाएं दीजिए या संदेश दीजिए, जिससे हमारी बहनों को भी प्रेरणा मिले या उनको भी अच्छा लगे।
0: शुभकामनाएं तो मेरी है ही, लेकिन चूंकि महिलाओं का कार्यक्रम है
1: जी,
0: तो मैं महिलाओं के लिए 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी अपनी कागजपाट के रूप में
1: जी।
0: सभी राधा बनी संग रात ही करने चली आई, सभी राधा बनी संग रात ही करने चली आई, कभी लक्ष्मी बनी मैं घर तेरा भरने चली आई, कभी हमसे तुम्हारे प्राण लेने हुई हूँ सावित्री, कभी गंगा बनी और पाप को हरने चली आई, कभी गंगा बनी और पाप को हरने चली आई। बहुत बहुत शुभकामनाएं आकाशवाणी,
1: बहुत अच्छा लगा सरिता जी, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं आशा करती हूँ हमारी बहनों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो सरिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में उपस्थित होने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: बहनों, भारत सरकार ने फरवरी 2026 में HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत 14 वर्ष की लड़कियों को मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है ताकि उन्हें सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाया जा सके। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अजमेर से लॉन्च किया गया। बहनों, भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है सर्वाइकल कैंसर। यह बीमारी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होती है। इस कैंसर से हर साल हजारों महिलाएं प्रभावित होती हैं। इसी समस्या से बचाव के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इस अभियान का शुभारंभ दिनांक 28 फरवरी

2026 स्थान अजमेर राजस्थान से किया गया। बहनों, इसका उद्देश्य 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाना और आने वाली पीढ़ी को कैंसर मुक्त भारत की दिशा में सुरक्षित बनाना है। यह टीकाकरण सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त उपलब्ध है। बहनों, यह टीकाकरण महिलाओं की मृत्यु दर कम करने में सहायक और लंबी अवधि की सुरक्षा प्रदान करता है। बहनों, HPV टीकाकरण अभियान भारत की बेटियों के लिए एक जीवन रक्षक पहल है। यह न केवल सर्वाइकल कैंसर से बचाव करता है, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है। यदि यह अभियान सफलतापूर्वक लागू होता है तो आने वाले वर्षों में भारत को कैंसर मुक्त समाज बनाने में मदद मिलेगी। बहनों, आइए सुनते हैं गीत सर्दी खांसी न मलेरिया हुआ। फिल्म का नाम है राजू बन गया जेंटलमैन, जिसे गाया है कुमार शानू, अलका याज्ञिक, जूली मुखर्जी ने।

बहनों, अभी हमने सुना गीत सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, जिसे गाया था कुमार शानू, अलका याग्निक, जूली मुखर्जी ने, और फिल्म का नाम राजू बन गया जेंटलमैन। बहनों, सौंफ का शरबत एक पारंपरिक और स्वास्थ्य वर्धक पेय है, जिसे विशेष रूप से गर्मियों के मौसम में पिया जाता है। सौंफ की तासीर ठंडी होती है, जिसे यह शरीर को ठंडक प्रदान करता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। भारत में पुराने समय से ही सौंफ का उपयोग भोजन के बाद माउथ फ्रेशनर और औषधि के रूप में किया जाता रहा है, और इसी सौंफ से बना शरबत स्वादिष्ट होने के साथ साथ कई स्वास्थ्य लाभ भी देता है। और इसके लिए आवश्यक सामग्री है सौंफ, पानी, चीनी, नींबू का रस, काला नमक, साधारण नमक और बर्फ के टुकड़े। इसको बनाने की विधि है, सौंफ को एक कप पानी में 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दें। इससे सौंफ नरम हो जाती है। इसके बाद भींगी हुई सौंफ को उसी पानी के साथ मिक्सर में डालकर अच्छी तरह से पीस लें। इस तरह से एक मुलायम पेस्ट बन जाएगा। अब इस पिसे हुए मिश्रण को छन्नी या साफ कपड़े की सहायता से छान लें। अब इस अर्क में पानी डालें और उसमें चीनी मिलाएं। चीनी को अच्छे से घुलने तक चलाते रहें। इसके बाद काला नमक, साधारण नमक डालें, जिससे शरबत का स्वाद और भी बढ़ जाता है। और अंत में नींबू का रस मिलाएं, जो शरबत को हल्की खटास और ताजगी देता है। और अब इसमें बर्फ के टुकड़े डालें और ठंडा ठंडा परोसे। बहनों, सौंफ का शरबत ठंडा ही अच्छा लगता है। इसे आप गिलास में डालकर ऊपर से पुदीने के पत्तों से सजाकर मेहमानों को परोस सकते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि दिखने में भी आकर्षक लगता है। बहनों, इस शरबत के अनेक स्वास्थ्य लाभ हैं, जैसे कि सौंफ शरीर को ठंडक प्रदान करती है, पाचन क्रिया को बेहतर बनाती है, पेट की गैस और जलन को कम करती है, मुंह की बदबू को दूर करने में सहायक होती है, गर्मियों में लू से बचाने में मदद करती है। बहनों, सौंफ का शरबत एक सरल, सस्ता और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक पेय है, जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से घर पर बना सकता है। यह गर्मियों में शरीर को ठंडक पहुंचाने के साथ साथ स्वाद और सेहत दोनों का ख्याल रखता है। नियमित रूप से इसका सेवन करने से शरीर ताजगी और ऊर्जा से भरपूर रहता है। बहनों, अब आपसे इजाजत लेने का, हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए स्वीकारें कल्पना शुक्ला का नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हमारे आकाशवाणी के रीवा केंद्र की प्रस्तुति थी।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
3: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

स्टेशन पेश है कार्यक्रम लोक संगीत। ये आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है और आज हम आपको सुनवा रहे हैं नित्यानंद द्विवेदी के गाए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत विकास की

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। आज का यह कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है और आज हम आपको सुनवा रहे हैं नित्यानंद द्विवेदी के गाए कुछ लोकगीत।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: कवि हेमंत देवलेकर,
2: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है। हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाजें आकाशवाणी के माध्यम से देश में समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाए। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज का यह कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है और आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रकाश तिवारी के गाए कुछ गीत और भजन।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण कार्यक्रम है सुगम संगीत, और आज का यह कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है। कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं प्रकाश तिवारी की गाई गीत और भजन।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं प्रकाश तिवारी के गाए गीत और भजन। कार्यक्रम के अंत में प्रकाश तिवारी का गाया ये भजन।

0: प्रकाश तिवारी के गाय इस भजन के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।

0: अभी आपने सुना मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज में। शब्द रचना थी मजरू की और संगीत ओपी नैयर का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अब सुनिए आर पार फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज में। शब्द रचना मजरूह की है और संगीत भी ओपी नैयर का ही है।
1: मोहब्बत कर लो जी भर लो मुझे किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है इसमें भी धोखा है। मोहब्बत कर लो जी भर लो मुझे किसने रोका है,

और कार्यक्रम के अंत में सुनिए भरोसा फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की है और संगीत रवि का।

0: भरोसा फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए यह बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब यह उनकी जिम्मेदारी है कि वह अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें।
1: साथियों, आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा, यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं, जन सेवा का माध्यम मानते हैं। और हमारे यहाँ तो कहा, जन सेवा ही प्रभु सेवा। मुझे पूरा विश्वास है, आज नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे युवा साथी भारत के विकास यात्रा को नई गति देंगे।
0: आज 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। यह रोजगार मेला पूरे देश में 47 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया था। पूरे देश से चुने गए यह नए कर्मचारी रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग जैसे कई अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में अपनी सेवाएं देंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सिंगरौली जिले के प्रवास पर हैं। वह

यहां जिले को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे और भव्य सिंगरौली महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन करेंगे और भाजपा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में सम्मिलित होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री एनटीपीसी में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के दौरान जिले के विकास के लिए 513 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में नौतपा शुरू होने से पहले

0: इस जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना में तीव्र लू को लेकर रेड अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं ग्वालियर सहित 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल प्रदेश के 10 शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। छतरपुर जिले का नौगांव सबसे गर्म रहा, जहां पारा 46.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके अलावा खजुराहो में 46.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 31 मई तक प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर रह सकती है। सतना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने लोगों से लू से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की है। गर्मी में बिजली की खपत बढ़ने से बिजली बिल अधिक आता है, लेकिन कुछ तरीके अपनाकर बिजली बिल में कमी की जा सकती है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि एक शोध से यह साबित हुआ है कि एसी का तापमान 26 डिग्री पर सेट करने से बिजली बिल में 30% तक की कमी हो सकती है। शोध के अनुसार प्रत्येक डिग्री तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप स्पिल्ट एसी की ऊर्जा खपत में 6% की कमी आती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा आगरमालवा जिले में गंगा दशहरा के अवसर पर जल स्रोत पूजन एवं कलश यात्राएं निकाली जाएंगी। शिवपुरी जिले में विकासखंड कोलारस, नरवर, पिछौर, खनियाधाना समेत अन्य स्थानों पर जन अभियान परिषद द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर जल स्रोतों के बचाव को लेकर जागरूक किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल तक की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।

0: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
0: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित आईसीएफ में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉ सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
2: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई गॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
0: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरल में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री आरसीएफ कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। सीबीएसई ने निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। सीबीएसई ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4

0: करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रूपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रूपये हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थ पदार्थों या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान

0: मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। यह मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सभी सुनने वालों को आपके रेडियो मित्र दिनेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं आज का जो पहला गीत है, जिसे हमने लिया है दबंग फिल्म से। आवाज राहत फतेह अली खान की, शब्द रचना फैज अनवर की और संगीत साजिद वाजिद का। और इस गीत को पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बट्टा, नीलम बट्टा, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और विशाल बट्टा। इसी गीत को पसंद कर रहे हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिण ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रियांश ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से इस गीत को पसंद किया है द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा ने। इसी गीत की एक पसंद हमें मिली है संदलपुर ग्वालियर से कालीचरण यादव, दीपक कुमार यादव, चांदनी यादव, उर्मिला देवी की। तो इन सब की पसंद का गीत सुनते हैं दबंग फिल्म से।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम की अगली फरमाइश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश, इसी गीत को पसंद कर रहे हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हरदिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, पोतरा मुश्तवा खान, राउ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और

वैशाली कटनकर। इसी गीत की एक पसंद हमें मिली है महादेव घाट अम्बलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिण ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। आप सब सुनना चाहते हैं हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का गीत, जिसे स्वर दिया है आशा भोसले और साथियों ने। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत आर डी बर्मन का है। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये गीत।

हरे रामा हरे कृष्णा। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और साथियों की आवाज में। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत आर डी बर्मन का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अब सुनिए अनाड़ी फिल्म का गीत उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में। शब्द रचना है समीर की और संगीत आनंद मिलिंद का। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम है राजा राम नगर देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन, उपाध्याय नगर देवास से मुरली लाल वर्मा, मनीष वर्मा, कमल निगम, कोटवा नारायणपुर बलिया से इस गीत को पसंद कर रहे हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। इसी गीत की एक पसंद हमें मिली है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले की। इसी गीत को पसंद कर रहे हैं लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, सरोजनी और कुंती साहू। तो आइए इन सब की पसंद का गीत सुनते हैं फिल्म अनाड़ी का उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में।

उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में भी आपने सुना अनाड़ी फिल्म का गीत। शब्द रचना थी समीर की और संगीत आनंद मिलिंद का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम की अगली फरमाइश भेजने वाले श्रोताओं के नाम है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका, रॉबिन, सरोचो कमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, रिदिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब खान, पोतरा, मुजातबा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई और गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर इसी गीत को पसंद कर रहे हैं। जयराज प्लोट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमीन और प्रयागराज भट्ट। आप सबकी पसंद का गीत सुनिए जिसे हमने लिया है मुंबई का बाबू फिल्म से। आशा भोसले और साथियों की आवाजें, शब्द रचना मजरू की और संगीत एच डी बर्मन का।

बम्बई का बाबू, आशा भोसले और साथियों की आवाज में अभी इस फिल्म का गीत आपने सुना। शब्द रचना मजरू की थी और संगीत एस टी बर्मन का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगले गीत की फरमाइश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं पाकड़ू झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु भगत, किसु तासु। सारणी जिला बैतूल से इस गीत को पसंद कर रहे हैं अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारस मणिबाग, पंजाबराव निम्बाड़कर और संदीप पाटिल। इसी गीत को पसंद कर रहे हैं देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री। इस गीत की एक पसंद हमें मिली है पटेल नगर मालोट पंजाब से रमेश कुमार जाजूरिया, गीता रानी जाजूरिया, गगनदीप जाजूरिया, बेबी आरजू जाजूरिया। और घंटाघर चौक खंडवा से इसे पसंद कर रहे हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। आप सबने पसंद किया है लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज में हम आपके हैं कौन फिल्म का गीत। शब्द रचना देव कोहली की है और संगीत राम लक्ष्मण का।

0: आपकी फरमाइश अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए यह बातें कहीं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज सिंगरौली दौरे पर हैं। वे यहां 513 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन व लोकार्पण करेंगे और सिंगरौली महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर्याप्त और स्थिर है। मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि घबराहट में ईंधन न खरीदें और केवल जरूरत के मुताबिक ही खरीदारी करें। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 1 जून से 12 जून तक भोपाल के 2 परीक्षा केंद्रों पर होगी। परीक्षा हर रोज 4 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि एक शोध से यह साबित हुआ है कि एसी का तापमान 26 डिग्री पर सेट करने से बिजली बिल में 30% तक की कमी हो सकती है। शोध के अनुसार प्रत्येक डिग्री तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप स्पिल्ट एसी की ऊर्जा खपत में 6% की कमी आती है। स्वर्णिम 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी भोपाल आज शाम 7 बजे रविन्द्र भवन में संगीत संध्या का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में पुष्पलता शर्मा लोकगीत और उस्ताद मुनव्वर मासूम कव्वाली पेश करेंगे। और प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने आज 42 जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सांतकालीन सभा के कार्यक्रमों पर। सांतकालीन सभा में आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत शाम 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगी। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले सकते हैं शाम 5:33 पर, 6:30 पर और रात 8:15 पर। शाम 6:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्षों के गौरवशाली सफर पर आकाशवाणी भोपाल की विशेष प्रस्तुति का चौथा भाग। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान का प्रसारण समय है 7:45। रात 8:00 सुनिए सुर्खियों में। 9:30 पर आप सुनेंगे विज्ञान भारती और रात 10:00 संगीत के अखिल भारती कार्यक्रम में सुनिए चंगन सेरी सीपी माधवन नंपुथरी का कर्नाटक गायन। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। इस समय दोपहर के 3:02 हुए हैं। हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5:00 अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

एवं आकाशवाणी के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजने को है। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। समय है न्यूज हेडलाइंस का, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करते हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए यह बातें कहीं। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज सिंगरौली दौरे पर हैं। वे यहां 513 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन व लोकार्पण करेंगे और सिंगरौली महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से 15 जून तक नागरिक प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 1 जून से 12 जून तक भोपाल के 2 परीक्षा केंद्रों पर होगी। स्वर्णिम 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी भोपाल आज शाम 7 बजे रविन्द्र भवन में संगीत संध्या का आयोजन कर रहा है, जिसमें पुष्पलता शर्मा लोकगीत और उस्ताद मुनव्वर मासूम कव्वाली पेश करेंगे। और आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जॉयंट्स और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी की। मैं आपकी रेडियो दोस्त इशिका, नमस्कार। दोस्तों, विकसित भारत के निर्माण में देश के युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अपनी ऊर्जा, नवाचार, तकनीकी कौशल के माध्यम से ये आर्थिक विकास, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की सबसे मजबूत नींव हैं। देश के विकास और विकसित राष्ट्र के निर्माण में युवा शक्ति का योगदान कई प्रमुख क्षेत्रों में देखा जा सकता है। सबसे पहले नवाचार और उद्यमिता। आज के युवा तकनीकी क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष अनुसंधान और डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में नए स्टार्टअप के जरिए आर्थिक विकास को गति दे रहे हैं। दूसरा, कौशल विकास और शिक्षा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नए जमाने के कौशल को अपनाकर युवा देश की उत्पादकता और कार्यबल की क्षमता में भारी वृद्धि कर रहे हैं। ये सामाजिक और नागरिक दायित्व तो भी बखूबी निभा रहे हैं। एक विकसित राष्ट्र के लिए सामाजिक समरसता, समानता और पर्यावरण संरक्षण पर भी काम कर रहे हैं। युवा सामाजिक बुराइयों को मिटाने, स्वच्छता अभियान और सामुदायिक विकास में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। दोस्तों, हमारी युवा पीढ़ी डिजिटल माध्यमों से सरकारी योजनाओं, बैंकिंग और आधुनिक सेवाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभा रही है।

दोस्तों, युवा देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। उनकी ऊर्जा, नवाचार और सकारात्मक दृष्टिकोण देश को आगे बढ़ाने में सहायक है। दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत हेमा सरदेसाई की आवाज में, चक दे इंडिया फिल्म से।

दोस्तों, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम लाया गया है। ये कार्यक्रम सरकार द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए शुरू किया गया है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें भाग लेने वाले विभागों की विभिन्न योजनाओं को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य 6 केंद्रीय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित और कमजोर वर्गों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी

योजनाओं का लाभ उठाने के लिए समान अवसर मिले और वो समग्र सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान दे सकें। इसके व्यापक उद्देश्य हैं शिक्षा के अवसरों में वृद्धि, मौजूदा और नई योजनाओं, स्वरोजगार के लिए बढ़ी हुई ऋण सहायता और राज्य और केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में अल्पसंख्यकों के लिए समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करना है। सांप्रदायिक द्वेष और हिंसा की रोकथाम और उसमें नियंत्रण करना। दोस्तों, अल्पसंख्यकों की शिक्षा और कौशल विकास के लिए पहल सहित कल्याणकारी योजनाएं जिन्हें अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और कार्यक्रम के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है वो हैं एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता, विद्यालयीन शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना, उर्दू शिक्षण के लिए और अधिक संसाधन, मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण, अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति जिसमें पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, योग्यता सह संसाधन आधारित छात्रवृत्ति योजना आदि शामिल हैं। मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक अधोसंरचना को उन्नत करना, गरीबों के लिए स्वरोजगार एवं मजदूरी रोजगार योजना, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल का उन्नयन, आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अधिवृद्धित ऋण सहायता, राज्य एवं केंद्रीय सेवाओं में भर्ती, ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी, अल्पसंख्यक समुदायों वाली मलिन बस्तियों की स्थिति में सुधार, सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम, सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजना, सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास जैसी योजनाएं अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए नए 15 सूत्री कार्यक्रम में शामिल हैं। दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत सौतन फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में।

दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्तंभ रोजगार समाचार की ओर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत किए हैं। योग्य उम्मीदवारों के लिए लगभग 7,150 पदों पर रिक्तियां उपलब्ध हैं। आवेदक की उम्र 20 से 28 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। अधिक जानकारी के लिए www.sbi.com.in पर देख सकते हैं। इसके साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अप्रेंटिस भर्ती निकाली गई है। कुल पद हैं 5,000। आवेदन करने की तिथि 19 मई से शुरू होकर 19 मई 2026 से 1 जून 2026 है। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष योग्यता। दोस्तों अब सुनते हैं ये गीत विवाह फिल्म से, श्रेया घोषाल और उदित नारायण की आवाज में।

0: हमारे कृष्णकांत जी बेसिकली सोम सरोवर से हैं।
1: अच्छा अच्छा, वही जहाँ के अंगूर बहुत मशहूर हैं।
2: जी जी
1: हाँ।
0: और हमारी भाभी जी भोपाल की हैं।
1: अरे हमारे बच्चों का ननिहाल भी भोपाल के पास ही है।
2: आप लीजिए ना।
1: अरे आप यहाँ आइए, चलिए आइए आइए, प्रेम से बात कीजिए।

0: दोस्तों, हमारे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो चलिए युवा श्रोता राज त्रिपाठी की प्रतिक्रिया सुनते हैं।
1: नमस्कार, मैं राज त्रिपाठी। मैं आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनता रहता हूँ, जब भी मुझे समय मिलता है। ये कार्यक्रम हमारी संस्कृति से जुड़े हुए लगते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। ग्रामीणों के खेती किसानी की जानकारी और देश विदेश की खबरें सुनने को मिलती हैं। इसके अलावा संगीत और स्थानीय बोलियों के कार्यक्रम लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं। किसानों और ग्रामीणों के लिए प्रसारित होने वाले कार्यक्रम बहुत उपयोगी होते हैं। मौसम की जानकारी, फसल उगाने के लिए तरीके और सरकारी योजनाओं की सटीक जानकारी लोगों को काफी पसंद आती है। हमारी बघेली बोली में भी कार्यक्रम सुनाए जाते हैं। लोकगीत, सुगम संगीत, फिल्मी गीत, गजलें भी सुनाई जाती हैं, जिससे मनोरंजन होता है।
0: दोस्तों, अब करते हैं मनोरंजन और सुनते हैं ये गीत दोस्ती फ्रेंड्स फॉरएवर फिल्म से सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में।

दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलने से पहले आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है हमें जरूर बताइएगा। आप अपनी शिकायतें और अपने सुझाव हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है yuvydiriva@gmail.com। तो फिर मिलने के वादे के साथ अपने रेडियो दोस्त इशिका यानी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ संध्या।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: मीडियम 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सतमे जेते फिल्म से आतिफ असलम की आवाज में।

ये थे आतिफ असलम सतमे जीते फिल्म में, गीतकार थे कुमार और संगीत था रोचक कोहली का। कार्यक्रम का अगला गीत स्त्री फिल्म से हमने लिया है, गीत वायु का, संगीत सचिन जिगर का और आवाज़

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

फिल्म संगीत आप आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत जीरो फिल्म से अजय अतुल की संगीत में आवाज है अभय जोधापुकर की।

फिल्म संगीत में अब सुनते हैं दशहरा फिल्म का ये गीत, आवाज ममता शर्मा की, संगीत सिद्धांत माधव का और गीत राजेश मंथन का।

अभी आप सुने थे लता मंगेशकर उदित नारायण को फिल्म दिल तो पागल है से। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

मीडियम पर चार्ज मीडियम 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले हम आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में बताते हैं और उसके बाद हम कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विवरण आपको देंगे। आपसे कुछ देर बाद आप सुनेंगे रेडियो रूपक, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर केंद्रित रेडियो रिपोर्ट, सहयोग राजेंद्र कुमार अहिरवार और प्रस्तुति रविंद्र कुमार प्रजापति की होगी। 6:30 का समय होगा लोकधारा का और इसमें कलाकार हैं भागचंद्र पटेल। 7:20 पर आप सुनेंगे ग्राम सभा और इसमें आप सुनेंगे श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम हेलो लोकरंजन कार्यक्रम, प्रस्तुति रविंद्र कुमार प्रजापति की होगी। 8:15 का समय है फिल्म संगीत।

8:30 पर आकाशवाणी के 90 साल और आकाशवाणी के 50 साल और आकाशवाणी से जुड़ी हुई यादें कार्यक्रम में इसके संबंध में हृदेश नारायण तिवारी से बातचीत आप सुन सकेंगे। 9:30 का समय है राष्ट्रीय पत्रिका विज्ञान भारती का और 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये तो थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम।

कल सुबह 7:20 पर हिंदी महत्व कार्यक्रम के अंतर्गत काफी पाठ होगा। कवि होंगे प्रमोद कुमार मृदुल। 7:30 का समय होगा फिल्म संगीत का। 8:30 पर धारावाहिक गीत गीता, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे भाग 6, शीर्षक होगा ध्यान योग। 9:00 होगा लोक रंग और इसमें कलाकार हैं गणेश प्रसाद यादव। 9:30 हेलो फरमाइश, इसमें आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम। सहयोग भूपेंद्र कुमार वर्मा और प्रस्तुति रविंद्र कुमार प्रजापति की होगी। 10:30 का समय है भवती कार्यक्रम का, पत्रोत्तर का साप्ताहिक कार्यक्रम और सहयोग होगा राजेंद्र कुमार अहरवाल का, प्रस्तुति रविंद्र कुमार प्रजापति की। 11:00 फोन इन कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की प्रस्तुति होगी। 12:00 आपकी फरमाइश होगी। 1:00 महिला कार्यक्रम महिला सभा आकाशवाणी शिवपुरी से हम प्रसारित करेंगे। 2:30 पर बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा आप सुन सकते हैं। शाम 5:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। 6:00 भजन संध्या, कलाकार होंगे उदित नारायण। 6:30 पर बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम होगा लोकधारा, इसमें आप सुनेंगे ब्रज गोपाल गुप्ता को। मीडियम भी 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। कुछ ही समय में न्यूज हेडलाइंस हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करते हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। यह रोजगार मेला पूरे देश में 47 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सिंगरौली दौरे पर हैं। उन्होंने बैढ़न में लगभग 12 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले आधुनिक खेल परिसर का भूमि पूजन किया। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से 15 जून तक नागरिक प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 1 जून से 12 जून तक भोपाल के 2 परीक्षा केंद्रों पर होगी। स्वर्णिम 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी भोपाल आज शाम 7 बजे रविन्द्र भवन में संगीत संध्या का आयोजन कर रहा है, जिसमें

पुष्पलता शर्मा लोकगीत और उस्ताद मुनव्वर मासूम कव्वाली पेश करेंगे। और आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जॉयंट्स और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: मीडियम में 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है रेडियो रिपोर्ट। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर केंद्रित सहयोग राजेंद्र कुमार अहिरवार का, प्रस्तुति रविंद्र कुमार प्रजापति की।
1: कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में। श्रोताओं, भारत सरकार द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, और अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की, तो इनमें जननी सुरक्षा योजना, साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में टीकाकरण योजना, साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान भारत योजना जैसी तमाम योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनके माध्यम से हितग्राहियों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा इस तेज लू से बचाव हेतु अनेक तरह की एडवाइजरी जारी की गई है। कैसे हमें इस लू से बचना है और सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए आप हैं जिला चिकित्सालय छतरपुर में पदस्थ CMHO डॉक्टर RP गुप्ता।
2: शासन के द्वारा बहुत सारी योजनाएं लोगों को लाभ प्रदान करने के लिए चलाई जा रही हैं, और स्वास्थ्य विभाग में भारत सरकार के द्वारा और हमारे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं। पहली योजना हमारी जैसे आयुष्मान कार्ड है, तो आयुष्मान कार्ड में हम 4 कैटेगरी में आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, जिसमें लोगों को किसी भी प्राइवेट अस्पताल में 5 लाख तक के निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध है। इसमें जो पहली कैटेगरी आती है वो 70+। तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे 70+ के जो भी नागरिक हैं वो हमारे पास आए प्राथमिकता के आधार पे, या हमारे जिला पंचायत द्वारा भी गांव में वहाँ पे जो सेक्रेटरी हैं, हमारे आशा हैं, उनके माध्यम से ये आयुष्मान कार्ड के लिए बनवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। GRS जो हमारे हैं वो बनाते हैं, वहाँ पे कई सेंटर हैं जिसमें बायोमेट्रिक आधार कार्ड में OTP के आधार पे आयुष्मान कार्ड उनको वहीं आसपास उपलब्ध हो जाएगा। दूसरी है हमारी जनजाति वाले जो यहाँ पे 66 गांव हैं, उसमें भी हम जनजातियों के आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। और तीसरा है हमारा जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, उनका भी बना रहे हैं। और चौथा है जो गरीबी रेखा के आते हैं, जिनको खाद्यान्न ले रहे हैं, जिनके पास खाद्यान्न पर्ची है। इस तरह की 4 कैटेगरी को आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। तो मेरा लोगों से यही अनुरोध है कि आप आए मेरे पास और आयुष्मान कार्ड या तो अपने GRS के माध्यम से या हमारे हॉस्पिटल में सभी जगह आयुष्मान के कार्यकर्ता हैं, वहां से आयुष्मान कार्ड बनवाएं, जिससे आपको किसी भी गंभीर बीमारी के लिए 5 लाख की निःशुल्क किसी भी प्राइवेट अस्पताल में उपलब्ध हो सके। दूसरा हमारी एक जननी सुरक्षा और प्रसूति सहायता योजना चलाई जा रही है, जो 2 बच्चों तक किसी भी महिला को 1400 रुपए मिलते हैं, और यदि वो संबल कार्ड उनके पास है तो 10600 मिलते हैं। तो ये शासन के द्वारा हम जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका प्रथम प्रसव और दूसरे प्रसव पे हम ये सुविधा उनको देते हैं। 1400 रुपए तो हर महिला को मिलता है, लेकिन जो 10600 है वो संबल कार्ड की जिनको पात्रता है उनको मिलता है। तीसरी योजना है हमारा RBSK के अंतर्गत, जिसमें RBSK में जो हमारे 14 साल के बच्चे हैं, जिनको किसी भी तरह की बीमारी जन्मजात विकृति होती है, जैसे किसी के हार्ट में छेद हुआ, किसी के तालू कटा हुआ, किसी के पैर मुड़े हुए हैं, तो शासन उनको निशुल्क, वो जब मेरे पास आते हैं तो किसी भी प्राइवेट अस्पताल में निशुल्क उसको उपचार करा रही है। ये योजनाएं हमारी हैं। मैं चाहता हूं कि आपसे माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा हो, जिसलिए लोग बाग हमारी टीम तो जा ही रही है, हम तो हमारी जिम्मेवारी है कर ही रहे हैं, लेकिन लोग बाग भी हमारे पास आए, हमसे वो सुविधा मांगे जिससे हमें उनको हम सुविधा दे सके। और ये शासन की बहुत अच्छी योजना है, इस विभाग द्वारा चल रही है।
1: महिला एवं बाल विकास

0: विभाग के द्वारा भी आपके यहाँ जो संयुक्त रूप से टीकाकरण योजनाएं हैं, इस मौसम में खासकर अब क्या कुछ समय बदला हुआ है आंगनबाड़ी केंद्रों का, या उनका जो टीकाकरण है वो स्वास्थ्य विभाग में हो रहा है, इस संदर्भ में कुछ जानेंगे, क्या कुछ चल रहे हैं टीकाकरण कार्य?
1: आंगनबाड़ी के महिला बाल विकास के समन्वय से हमारी कई योजनाएं चलती है, जिनमें से प्रमुख एक है की टीकाकरण। मंगलवार शुक्रवार को हमारे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र पे हमारी NMCHO आशा सभी जाती है, और उस गाँव में जितने भी गर्भवती माताएं और जो 5 साल तक के बच्चे हैं, उनमें मुख्य तौर पे जैसे 1 साल तक के बच्चों को जो आवश्यक 6 बीमारी की बचाने के लिए टीका लगते हैं, उनको उस केंद्र पे जाके वो टीके उनको लगाए जाते हैं। MR1 का टीका, MR2 का टीका, और ये आपके डिप्थीरिया और पोलियो वाला टीका, तो ये टीके उनको लगाए जाते हैं वहाँ पे। जितने भी बच्चे जो हमारे उस लक्ष्य के अंदर 0 से 1 साल, 1 साल से 5 साल, और जो गर्भवती माता है उनको टिटनेस का टीका, तो ये हमारे आंगनबाड़ी के सहयोग से लगाया जाता है। दूसरा एक कार्यक्रम हमारे यहाँ जो कुपोषित बच्चे हैं उनका चल रहा है, जो हमारे ब्लॉक में NRC बन रहे हैं, उसमें हमारे NRC में जो अति कुपोषण बच्चे हैं, सैम वाले बच्चे हैं, उनको वहाँ पे आंगनबाड़ी के सहयोग से वो हमारे NRC केंद्र में पहुँचाते हैं। उन बच्चों को 14 दिन भर्ती रखा जाता है, और उनको जो शासन के द्वारा निर्धारित डाइट है वो डाइट उनको प्रदाय की जाती है, और उनका वहाँ पे रोज एवेल्युएशन किया जाता है कितना वजन बढ़ रहा है। जब सामान्य वजन आ जाता है तो 14 दिन बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है।
0: जी जी सर, ये जो मौसम है अत्यधिक लू का मौसम है, और डिहाइड्रेशन से लोग शिकार हो रहे हैं, और कई घटनाएं भी सामने आ रही हैं, अभी हाई अलर्ट भी आ रहा है, तो इस संदर्भ में जनता को क्या आप संदेश देना चाहेंगे, कैसे हम घरों में रहें और कितने समय के बाद हम निकलें?
1: जनता को तो मेरी यही सलाह है कि आप देखें, मैक्सिमम जो टेम्परेचर रहता है वो 11 से 4 के बीच में रहता है, तो उस समय घर से बाहर यदि आवश्यक नहीं है तो ना निकले, और यदि कोई बहुत आवश्यक काम है तो घर से बाहर निकलने के पहले खूब जम के सारा पानी पिए, तरल पदार्थ पिए, सिर पे गमछा बांधे, और अगर किसी भी तरह की उनको कोई उससे समस्या आती है कि अधिक तापमान में निकलने से यदि कोई दिक्कत पैदा होती है तो अपना ORS का पानी में मिला के सेवन करें। अगर किसी भी तरह की उसके बाद भी ये उनको उससे आराम नहीं मिलता है, राहत नहीं मिलती है, तो वो हमारे नजदीकी अस्पताल में कहीं भी संपर्क कर सकते हैं, 108 को कॉल करके उस अस्पताल में पहुंचे, और वहाँ पे हमने सभी अस्पतालों में इस बार हमने ICU भी बनाए हैं। ICU इन द कहने का मतलब ये है कि हर अस्पताल में कम से कम 2 बेड हमने रिजर्व रखे हैं कि अगर लू से लगने के कोई भी व्यक्ति हमारे अस्पताल में पहुंचता है तो उनको कहीं ऐसा ना हो कि बेड उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए हमने सभी अस्पतालों में रिजर्व बेड रखे हैं। जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, CHC, सिविल हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इसमें हमने रिजर्व रखे हैं बेड, और वहाँ पे सभी अस्पतालों में ORS काउंटर बनाए हैं कि ORS तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहे, क्योंकि जब आदमी कम तापमान से अधिक तापमान में निकलता है तो उससे बॉडी में टेम्परेचर में बदलाव होते हैं, जब होते हैं उससे तो कभी कभी उसको डिहाइड्रेशन हो जाता है या अन्य उनको तकलीफें पैदा होने लगती हैं, तो इसके लिए हमने अपने सभी अस्पतालों में ORS केंद्र बनाए हैं कि उनको तत्काल वहाँ पे ORS उपलब्ध हो सके, जिससे वो डिहाइड्रेशन को और पानी की कमी को पूरा कर सके। तो मेरा लोगों को यही सलाह है कि शरीर में पानी की कमी नहीं होना चाहिए, उसके लिए अधिक से अधिक पानी पिए, तरल पदार्थ यूज करें, और अगर कोई तकलीफ है तो ORS वाला पानी पिए, और अगर ज्यादा तकलीफ है तो हमारे अस्पताल में सभी हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम को प्रशिक्षण दिया गया है, निर्देश जारी किए गए हैं, तो वहाँ पे अस्पताल में संपर्क करें।
2: श्रोताओ, अब हम बात कर रहे हैं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की। श्रोताओ, भारत सरकार द्वारा स्वरोजगार उन्मुखी अनेक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा विद्यार्थियों को कौशल युक्त शिक्षा सीधे उपलब्ध करवाई जा रही है, ताकि विद्यार्थी कौशल से युक्त हों और सीधे सीधे रोजगार से जुड़ पाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है प्रधानमंत्री ई विद्या योजना। ई विद्या योजना के माध्यम से कई तरह के पोर्टल के माध्यम से विभिन्न वीडियोस और ऑडियो द्वारा ऑनलाइन माध्यम से रेडियो के माध्यम से उन्हें सीधे जोड़ा जा रहा है, ताकि वे अपना विकास कर पाए। प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के संबंध में हमें जानकारी देती हुई आप हैं महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में पदस्थ बॉटनी की विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अमिता अर्जरिया।
3: 20 सितंबर 2004 को एजुसेट एक सैटेलाइट भारत द्वारा लॉन्च किया गया था। उसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा शहर का बच्चा एक साथ जुड़कर एजुकेशन प्राप्त कर सके। इसके स्थापित होने के बाद दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा पहुंचाना संभव हो गया, जो पहाड़ी

सड़क नहीं है और पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ते? तो इस सैटेलाइट के छोड़ने के बाद बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज के कोर्स हुए और टीचर्स को प्रशिक्षण दिया गया कि कैसे वो स्लाइड बनाते हैं, कैसे पोर्टल पे डालते हैं, कैसे दूरस्थ क्षेत्र के बच्चों को जोड़ते हैं। तो ये 2004 में चालू हो गया था और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भारत में इसका प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए हम नरोरा अकादमी भी गए थे, जहां पर हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया था कि कैसे सैटेलाइट को अपन मटेरियल देते हैं, कैसे फोटो खींचते हैं, फिर कैसे टेप करते हैं, फिर कैसे दोनों को कोऑर्डिनेट करते हैं। और जिससे उसके आ जाने के बाद बहुत सारे स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सब आपस में जुड़ गए। जिस प्रकार चिकित्सालयों में और न्यायालयों में आजकल सुविधा हो गई, उसी प्रकार 2000 के बाद, एजुसेट के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बहुत क्रांति आ गई थी। उसके बाद 2020 में नई शिक्षा नीति का उद्देश्य था कि कम समय में, कम लागत में बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा दी जाए। इसी शिक्षा के बाद 17 मई 2020 से एक और प्रोग्राम जोड़ा गया। इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था कि बच्चों को विश्वविद्यालयों को, स्कूल को संचार माध्यम के द्वारा जोड़ा जाए, रेडियो के द्वारा, भाई सैटेलाइट के द्वारा, रेडियो रहते हैं, टीवी और मोबाइल, इनसे जोड़ा गया, जिससे जिनके पास सैटेलाइट है, जिनके पास मोबाइल है, जिनके पास टीवी है, जिनके पास रेडियो है, उन सारे माध्यमों से बच्चे जुड़ सके। इसका मेन उद्देश्य था कि बच्चे को, मान लो वो अनुपस्थित है तो उसको गृह कार्य भी प्राप्त हो सके, बच्चा नहीं जा पा रहा किन्हीं कारणों से, तो उन बच्चों को बिना जाए वो शिक्षा घर से प्राप्त हो रही है। सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये था कि जो दूरस्थ ग्रामीण अंचल में बैठा सबसे बाद का कोने का विद्यार्थी है और शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, न उसके पास पैसा है, न उसके पास साधन है, न उन पास लाइट है, तो वो कैसे शिक्षा करेगा, कैसे ग्रहण करेगा? तो ये नई शिक्षा नीति का, प्रधानमंत्री मोदी जी का ये बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस माध्यम से समस्त विश्व को एक सूत्र में बांध दिया है। आज भारत का दूरस्थ का विद्यार्थी हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश का हो, चाहे आंध्र प्रदेश का हो, चाहे ग्रामीण का हो, चाहे एससी एसटी का हो, अगर उसके पास बड़े संसाधन नहीं है तो मोबाइल की सहायता से वो सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अभी विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में कोर्स के अतिरिक्त एक नया कोर्स ऐड किया गया है, स्वयं पोर्टल। स्वयं पोर्टल का उद्देश्य है क्योंकि अब जो शिक्षा का आधार हो गया वो नंबर के आधारित नहीं है कि 10 में 3 नंबर मिल गए, 2 नंबर मिल गए, नहीं, अब क्रेडिट के आधार पे है। अगर किसी विद्यार्थी के पास क्रेडिट अधिक है तो उसको बहुत अच्छी जगह नौकरी मिल सकती है। तो एक जो स्वयं पोर्टल स्थापित किया गया है उसमें क्रेडिट के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, हर क्षेत्र का उसमें ज्ञान है, बड़े बड़े शिक्षित लगे हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लगे हैं, प्रोफेसर लगे हुए हैं जो अपनी वेबसाइट डाले हुए हैं, और हर विषय का, हर भाषा में, सबसे बड़ी बात हिंदी इंग्लिश में तो था ही, इसके अलावा हर विषय का। ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है तो वो हिंदी में झेपता है या संस्कृत में या मलयालम में, वो स्वयं पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है कि भारत में बोले जाने वाली जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाओं को सेंट्रलाइज किया गया है। इंग्लिश का मेन सिलेबस है, उससे हर भाषाओं में कन्वर्ट किया गया है, जैसे हर क्षेत्रीय भाषा का विद्यार्थी उसको प्राप्त कर सके। साथ साथ दूसरी चीज वैल्यू एडिट कोर्स बताया गया है। वैल्यू एडिट कोर्स का मतलब है मूल्य आधारित शिक्षा। अगर तुम्हारे अंदर कोई भी मूल्य है, कुछ भी बनाना आता है, चपाती बनाना आता है, बहुत अच्छा पराठा बनाना आता है, रंग बना, कोई भी कौशल है उस कौशल के आधार पे वो शिक्षा ग्रहण करे और सरकार उसे 5 लाख रुपए तक का ऋण देती है जिससे वो प्रशिक्षित होता है, उसे मेंटर मिलता है। प्रशिक्षण के बाद वो उस क्षेत्र में आगे बढ़कर अपने लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए एक नई चीज बनाता है और उसका उसे मूल्य पता रहता है। उसका वैल्यू का मतलब, वैल्यू एडिट का मतलब है मूल्य आधारित। तो उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत वो पेटेंट करा सकता है, का जीआई टैग करवा सकता है, कुछ भी कॉपीराइट करा सकता है। तो ये अभी उसको भी स्वयं पोर्टल से जोड़ा गया है कि जिन विश्वविद्यालयों में बीएसी के वैल्यू एडिट कोर्स के टीचर्स नहीं है या उतनी सुविधा नहीं है, तो स्वयं पोर्टल में अगर बच्चा वहां एडमिशन लेता है तो उस विषय से संबंधित ज्ञान उसे प्राप्त हो सकता है किसी भी भाषा में, और उस ज्ञान के आधार पर उसको क्रेडिट मिलेंगे। तो बच्चे को दोहरा लाभ हो रहा है, एक

वैल्यू एडेड कोर्स के आधार पर उसको मौलिक शिक्षा मिल रही है और उसके स्वयं के मौलिक जो भी कार्य आता है उसको वो आगे बढ़ा सकता है, और तीसरी उसको 2 क्रेडिट मिलेंगे जिससे वो शिक्षा में आगे बड़ी क्लासेस में या नौकरियों में लगेगा तो उसे 2 क्रेडिट में मिलेंगे। तो स्वयं पोर्टल के आधार पर वैल्यू एडेड कोर्स के लिए बहुत अधिक फायदा है। तो हमारा तो बच्चों से यही कहना है कि जो बच्चे घर से नहीं जा पाते हैं, अपाहिज हैं, अपंग हैं, नहीं जा पाते, महिलाएं हैं, शादीशुदा हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और छोटी बच्चियां हैं जिन्हें आने जाने में डर लगता है या साइकिल नहीं चला पाती हैं, वो स्वयं पोर्टल से घरों से जुड़ सकती हैं। वहां उन्हें एडमिशन मिलता है, बाकायदा उन्हें बीए, बीएससी, बीकॉम, अंडर ग्रेजुएशन, पीजी सभी क्लासेस की डिग्री का एडमिशन होता है, बाकायदा उनकी क्लास चलती है और उनका परीक्षा होती है, परीक्षा के बाद परिणाम प्राप्त होते हैं। एक तो सीधे ऐसे ले सकते हैं स्वयं पोर्टल से, और दूसरा ये वैल्यू एडेड कोर्स है उसकी सहायता

0: बीएससी, बीकॉम, अंडर ग्रेजुएशन, पीजी सभी क्लासेस की डिग्री का एडमिशन होता है। बाकायदा उनकी क्लास चलती है और उनका परीक्षा होती है, परीक्षा के बाद परिणाम प्राप्त होते हैं। एक तो सीधे ऐसे ले सकते हैं स्वयं पोर्टल से, और दूसरा ये वैल्यू एडेड कोर्स है उसकी सहायता से स्वयं पोर्टल से ले सकते हैं। तो हम लोग महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में बच्चों को क्लास में मोटिवेट करते हैं कि हर बच्चा स्वयं पोर्टल से जुड़े, और उसको, और उसमें ये भी नहीं है कि 10 से 4 हो, किसी भी समय वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है। अगर उसे सुबह टाइम है तो सुबह ले सकता है, दोपहर में टाइम है तो दोपहर में ले सकता है, कोई नौकरी वाला अगर कोई डिग्री लेना चाहता है तो शाम को भी पढ़ सकता है। तो स्वयं पोर्टल से उसे बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होता है कि कोई भी बच्चा जो भी काम कर रहा है वो सब पारदर्शी है, कितनी फीस लग रही है वो भी पारदर्शी है, कितने मेरिट पे उसका एडमिशन हो रहा है वो भी पारदर्शी है, किस क्लास में कितनी सीट बची है वो भी ट्रांसपेरेंट है, पहली बात। दूसरी बात, बैंक का जो रिकॉर्ड होता था वो अपन घर से ही सारे बिजली का बिल अपन जमा कर सकते हैं, फोन का बिल जमा कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन का जो माध्यम आया है शिक्षा के अतिरिक्त हर जगह, चिकित्सा के क्षेत्र में जाइए तो घर बैठे आपको डॉक्टर मिल जाता है, घर बैठे दवाइयां मिल जाती हैं, घर बैठे सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। किसानों को सारा बैंक में कब ऋण मिल रहा है, कब बीज आ गया है, कब क्या बोना है, सारे किसानों को, मतलब कृषि के क्षेत्र में भी संचार माध्यमों का बहुत अच्छा योगदान है। पहली क्लास में शुरू हुआ उसे इतिहास भूगोल रटना है और रट के पास होना है, बीएससी तक आया तो उसे मछली काटना है, कहीं घोंगा काटना है, जिससे जंतु भी खत्म होते थे और उसका दैनिक जीवन में कोई उपयोग नहीं था। आज नई शिक्षा नीति के कारण मूल्य आधारित है कि साइंस का विद्यार्थी अगर ड्राइंग करना चाहता है तो आर्ट्स ले सकता है, कॉमर्स का विद्यार्थी अगर एग्रीकल्चर पढ़ना चाहता है तो एग्रीकल्चर ले सकता है। समग्र शिक्षा को जोड़ दिया, समग्र विषयों को जोड़ा है, समग्र लोगों को जोड़ा है कि एक खाना बनाने वाली का या काम करने वाली का या काम काजी वाली करने वाली औरत का बच्चा मान लो स्कूल नहीं जा पा रहा है क्योंकि माँ उस समय नहीं आ पाती है, तो ऑनलाइन के माध्यम से वो सारी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। कि आखिरी छोर का बच्चा महानगर क्या दिल्ली जैसे आईआईटी इंस्टीट्यूट से वो आपस में जुड़ सकता है और लंदन मतलब ऑक्सफोर्ड का भी कोर्स कर सकता है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन एजुकेशन बहुत अच्छी है। ई लाइब्रेरी के बारे में आपको बता दें, ई लाइब्रेरी में क्या होता है कि लाइब्रेरी में कभी किताबें मिलती हैं कभी नहीं मिलती हैं। अपन ने मोबाइल से सर्च किया कि किस जगह कौन सा कंटेंट मिलेगा, दो मिनट में अपना वो आ जाता है और किताबों के पन्ने पलट रहे हैं, लाइब्रेरी में देख रहा है किस सेक्शन में कौन सी किताब डाली, यहाँ तो केवल डालना है और दो मिनट में डाटा प्राप्त हो जाता है। संचार माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को कभी भी कहीं भी कैसी भी समग्र जानकारी मिल जाती है, बस उसमें थोड़ा सा, तो उसके लिए उनके माँ बाप को रात में सोते समय हिस्ट्री जरूर देखनी चाहिए कि अगर बच्चे को हमने मोबाइल दिया है तो उसने किस डायरेक्शन में पढ़ा है, प्लस में पढ़ा है या माइनस में। अगर उसने शिक्षा ग्रहण की है तो बहुत अच्छा, तो अगर वो माइनस जा रहा है तो उन वेबसाइट को हैक कर दे या उनके कुछ ऐसे कोड बट बना ले कि वो वेबसाइट ना खोल पाए। तो ये बहुत अच्छा माध्यम है और बहुत अच्छी सोच है प्रधानमंत्री जी की, जिन्होंने संचार माध्यम से पूरे दुनिया के संचार को एक कर दिया है और कहीं कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जगह पारदर्शिता है और विकास भी हो रहा है, समाज भी जुड़ रहा है और अर्थ भी बढ़ रहा है, क्योंकि इससे क्या है घर बैठे बच्चे अब उन्हें कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ऑनलाइन अपना एडमिशन ले लिया है। हमारे यहाँ का तो छतरपुर छोटा जगह है लेकिन हर साल यहाँ पीएससी में 25 से 30 बच्चों का सिलेक्शन होता है, मेडिकल में भी बहुत बच्चों का सिलेक्शन होता है। वो कहते हैं कि हमें ऑनलाइन जाने उसकी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन सारा डाटा उपलब्ध है। जब सरकार सारा डाटा घर बैठे दे रही है तो क्यों अपना एनर्जी वेस्ट करते, घर बैठे पहले एकाग्रता से पढ़ाई करो, आगे बढ़े तो आपको सफलता मिलेगी। और हमारी शुभकामनाओं के साथ
1: श्रोताओ, पीएम ई विद्या योजना विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण योजना साबित हो रही है। इससे विद्यार्थी दूरस्थ अलग अलग क्षेत्रों में रहते हुए भी भारत सरकार के विभिन्न शिक्षा रूपी योजनाओं से जुड़कर सीधे सीधे अपनी तैयारी कर पा रहे हैं। हमने बात की पीएम ई विद्या के संदर्भ में, इसके क्रियान्वयन के संदर्भ में कैसे ये योजना विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित हो रही है। हमें जानकारी देते हुए आप हैं उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक क्रमांक एक में पदस्थ वरिष्ठ शिक्षक नीरज वाजपेयी।
2: ये माननीय भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक बृहद स्तर का व्यापक डिजिटल शिक्षा उन्मुखीकरण

0: कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य कक्षा 1 से 12वीं तक की स्कूली शिक्षा के छात्रों और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे कुछ युवाओं को टीवी, इंटरनेट और रेडियो के माध्यम से हाई क्वालिटेटिव एजुकेशन को प्रदान करना है, जिससे उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उन्हें मिल सके। और इसको संचालित करने के लिए हमारे भारत सरकार के अंतर्गत जो IT मंत्रालय है और एजुकेशन मिनिस्ट्री है, इन सबके समन्वय से प्रमुख रूप से कई पोर्टल्स चल रहे हैं, जिसमें दीक्षा पोर्टल्स की मैं चर्चा करना चाहूंगा। ये दीक्षा पोर्टल है, इसके अंतर्गत एक बहुत बड़ा अभियान है दीक्षा पोर्टल में। स्कूल शिक्षा के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वन नेशन और वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। भारत के सभी राज्यों और NCERT द्वारा तैयार की गई जितनी भी पुस्तकें हैं और उन सारी पुस्तकों की डिजिटल सामग्री उसमें अपलोड है। अभी कोविड काल के दौरान जब हम स्कूलों को बंद पा रहे थे, तो हमने इसमें सभी प्रकार के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए स्वयं से 16 प्रशिक्षण ऑनलाइन प्रशिक्षण इस दीक्षा पोर्टल पे दिए हुए थे। और विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इसमें जो पुस्तकें हैं NCERT की सारी पुस्तकें मिल जाती हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग, ये इसका शॉर्ट वर्जन है दीक्षा। तो ये कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने बड़ा प्लेटफॉर्म जो पूरे भारत में दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा की बांट जो रहे छात्रों को, ये एक बहुत बड़ा सुगमता प्रदान करता है। शिक्षा से वंचित और बहुत सुदूर स्थित व्यक्ति भी जहां तक इंटरनेट पहुंच जाता है, तो ये दीक्षा पोर्टल उसको डिजिटली लर्निंग प्रोवाइड करने का एक बहुत बड़ा टूल है।
1: श्रोताओ, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न स्कॉलरशिप योजनाएं संचालित हैं, जिनसे विद्यार्थियों का समुचित विकास हो रहा है। उच्च शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित नरेंद्र प्रजापति विद्यार्थी से हमने जाने उनके विचार। आइए, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ आपको कैसे प्राप्त हो रहा है, उन्हीं की जुबानी।
2: मैं महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से राजनीति से मैं MA का छात्र हूँ।
3: जी अरविंद जी, सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं चल रही है। अगर हम बात करें पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की, तो वो भी चल रही है। साथ ही साथ महाविद्यालय में कुछ न कुछ और भी योजनाएं आपको मिल रही है। क्या क्या योजनाओं का लाभ आपको मिले?
2: जी, मुझे अभी तक ही 2 योजनाओं का लाभ मिला है, जैसे कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है, उसका लाभ मुझे मिला है कि 7,500 रुपए आती है पर साल, और 2 साल का जैसे MA रहता है तो 14,000 आती है। और उसी के साथ मुझे एक योजना और है जो आवास की रहती है, जो बच्चे हॉस्टल या छात्रावास में रहते हैं, तो उसका भी मुझे लाभ मिला है, 14,000 रुपए उसका मिला है।
3: बिल्कुल। और महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में क्या क्या और सुविधाएं मिलती हैं, जैसे लाइब्रेरी है या पढ़ने के लिए पुस्तकें मिलती हैं, क्या क्या मिलता है आपको?
2: जी, और जैसे विश्वविद्यालय की बात करें MCBU में, तो लाइब्रेरी है, वहाँ पे लैपटॉप की सुविधा है, प्रत्येक बच्चे के लिए हर एक डेस्क में लैपटॉप मिलता है, और बढ़िया AC, ठंडक के लिए AC लगी हुई है, पंखे लगे हुए हैं, और लाइट है, और मोबाइल चार्जिंग की सुविधा है, तो ये सारी सुविधाएं हैं, और पुस्तकें भी मिलती हैं पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में।
3: और अरविंद जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हम और संस्थानों की बात करें, लेकिन सरकारी संस्थान जितने भी, उनमें बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, खूब पढ़ाई भी होती है और हमारे लिए करियर मार्गदर्शन भी मिलता है, तो क्या ऐसे कैंप भी लगते हैं आपके विद्यालय महाविद्यालय में कि आपको कुछ जानकारियां ऐसी मिलती हों कि हमें आगे बढ़ना है या प्लेसमेंट की बात होती है?
2: जी, जैसे MBA है कोर्स, कई तरह के कोर्स होते हैं, तो उसमें प्लेसमेंट का रहता है, MBA वगैरह उसमें प्लेसमेंट का मिल जाता है, जैसे तो MBA हो गया, और एकाध और हैं, ऐसी याद नहीं आ रहा।
3: अच्छा, रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम भी चल रहे हैं, जैसे प्रशिक्षण देते हैं वो कभी 15 दिन भी हो सकता है, 1 महीने, और कई बार कुछ कंपनियां भी आती हैं जो आपको वहां पर सीधा सीधा हायर करती हैं, आपकी जॉब के लिए आपको ले जाती हैं, तो ऐसी कंपनी में आपने या ऐसे कैंप में भाग लिया जो सरकार द्वारा लगाया गया हो, जिसमें हमारे विद्यार्थी सीधे जाएं और फिर वो समझें कि कहां हम रोजगार ढूंढ सकते हैं?
2: हाँ, जैसे कि NGO के तरफ से काफ़ी हमारे कॉलेज में आए हैं कंपनी वाले, और इसी के लिए कि जो बेरोजगार है उनके लिए रोजगार की सुविधा के लिए आए हैं, कि जिन लोगों को बेरोजगार घूम रहे हैं तो उन लोगों को रोजगार मिल जाएगा, जैसे ग्रामीण विकास के लिए, जैसे ये बीज भंडार वगैरह है, या ऐसे उस पे काम करने के लिए पैसे देते हैं 15,000 रुपए, या अदर ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की तरह तरह की योजनाएं के लिए आते हैं वो लोग।
3: आज हमारे विद्यार्थियों से आप क्या कहना चाहेंगे, जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं वो कैसे स्वरोजगार से जुड़े, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं रहे हैं, हर बच्चा कौशल से युक्त हो, वो पढ़े लिखे, साथ ही साथ वो कुछ तकनीक भी सीखे जिससे उसे रोजगार मिल पाए आसानी से, तो कुछ आप अपने संदेश भी देना चाहें, जैसे आप विश्वविद्यालय में पढ़ ही रहे हैं तो क्या कुछ आप देखते हैं, कितना जरूरी है आपको कौशल से युक्त होना, और कैसे आप अगर प्रशिक्षण लेते हैं तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ते हैं?
2: जी, पढ़ाई के साथ साथ मतलब ये बहुत जरूरी है आज की डेट में, क्योंकि अपने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था

0: अवस्था ऐसी है कि ज्यादातर बच्चे सिर्फ स्टडी पर ध्यान देते हैं, पढ़ाई लिखाई पर। और मेरा कहना ये है कि पढ़ाई के साथ साथ सरकार के द्वारा बच्चों के लिए उन्हें रोजगार की सुविधा भी कराई जा रही है, जो सरकार की योजनाएं हैं बहुत सारी हैं। तो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अपना रोजगार भी देखना चाहिए। और कहें कि जैसे कि काफी सुविधाएं जैसे सौर ऊर्जा प्लांट को लेकर के है, तो उसकी स्टडी भी करवाते हैं, एजुकेशन देते हैं और प्रैक्टिकल भी करवाते हैं और पैसा भी मिलता है उससे। तो ऐसी काफी सारी योजनाएं हैं। तो मतलब पढ़ाई के साथ साथ वर्क भी करना चाहिए, जिससे मतलब प्रकार से देखा जाए तो अपन को नॉलेज भी बढ़ेगा और अपने अपने लिए इनकम का एक स्रोत भी बनता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और हम उम्मीद करेंगे हमारे विद्यार्थी सरकार के जो प्रशिक्षण केंद्र है उनमें प्रशिक्षण लेंगे, युवा उद्यमी योजना है या और भी, तो आप ये अपना समय निकाल के प्रशिक्षण लेते हैं तो आप स्वरोजगार से सीधे जुड़ सकते हैं और अपनी जो पढ़ाई है उसको भी जारी रख सकते हैं।
2: श्रोताओ, प्रधानमंत्री ई विद्या योजना से लाभान्वित एक विद्यार्थी सौरभ द्विवेदी ने हमें बताया कैसे प्रधानमंत्री ई विद्या योजना और ई विद्या योजना के अंतर्गत जो पोर्टल संचालित हैं वो कैसे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं उनकी पढ़ाई में और उनके समुचित विकास में। आइए जानते हैं इनके अनुभव।
3: कई बार ऐसा होता था कि मुझे अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाता था, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाता था। कुछ थिंकर्स ऐसे आ जाते थे कि जिनको मुझे बुक में भी उनका मतलब कि क्लियर कट नहीं मिलता था कि क्या उनने रिसर्च की है। मुझे रिसर्च में प्रॉब्लम हो जाती थी कि उनने क्या की है, क्या पढ़ना है, क्या एग्जाम में लिखना है। तो इसके लिए मैंने स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया। स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैं जब स्वयं पोर्टल पर जाता हूँ तो मुझे जो भी टॉपिक से रिलेटेड मैटर चाहिए होता है तो मैं उस पर सिर्फ टॉपिक का नाम डालता हूँ, उसमें पार्ट बाई पार्ट आ जाता है कि इसमें हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कई जगह ऐसा मिलता है गूगल पे जैसे हम लोग ट्राई करते हैं तो उसमें प्रॉपर आंसर नहीं मिलता है, दो तीन लाइन मिलेंगी फिर यहाँ वहाँ का दे देंगे। पर स्वयं पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिसमें हम टॉपिक का नाम डालेंगे जैसे ही, तो उसमें हम उसकी प्रस्तावना, उसके उपसंहार, उसकी विभिन्न प्रकार की हेडिंग, उसके कार्य क्षेत्र, उसकी आलोचनाएं, हमें सभी चीजें स्वयं पोर्टल पर क्रमबद्ध तरीके से मिल जाती है जिसको पढ़ने में और समझने में काफी सरलता होती है। और सबसे अच्छी बात एक मुझे ये लगी कि स्वयं पोर्टल की जो भाषा होती है वो बहुत ही सरल होती है, एक बार पढ़ने में ही वो हमारे माइंड में आ जाती है।
1: सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे स्वयं पोर्टल पे आपने रजिस्ट्रेशन करवाया तो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और जो नए विद्यार्थी इससे जुड़ना चाहें या जो भी हमारे नागरिक स्वयं पोर्टल से जुड़ना चाहें कैसे जुड़ सकते हैं?
3: जैसे स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आजकल देखिए सभी के पास एंड्रॉइड फोन तो होता ही होता है, लैपटॉप हो तो और अच्छी बात है। यदि नहीं है तो हम अपने एंड्रॉइड फोन में गूगल ओपन करेंगे या गूगल क्रोम ओपन करेंगे, उसमें जाकर हम स्वयं पोर्टल लिख देंगे सीधा, उसकी जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उसको ओपन करना है। उसको जैसे ओपन करेंगे तो एक नीचे ऑप्शन आता है, एक ऑप्शन आता है लॉग इन का। यदि आप पहले से स्वयं पोर्टल पर एनरोल हो तो आप आईडी पासवर्ड से लॉग इन कर सकते हो। यदि आप नए यूजर हो या पहली बार आईडी बना रहे हो तो उसमें ऑप्शन आता है साइन इन का, तो उसमें हम साइन इन अपना मोबाइल नंबर ईमेल डालकर हम उसमें साइन इन कर सकते हैं और अपने पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं। उसमें हमें एक आईडी पासवर्ड मिल जाती है, कभी भी कहीं भी किसी भी फोन में उसको लॉग इन कर सकते हैं, किसी भी ब्राउजर से उसको एक्सेस कर सकते हैं और जो भी हमारे डाउट है, जो कॉन्सेप्ट है, हम उसे क्लियर कर सकते हैं।
1: जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो सौरभ, पीएम ई विद्या के अंतर्गत आपने स्वयं पोर्टल की बात की है, कैसे आपकी पढ़ाई में मददगार साबित हो रहा है, आपको क्या क्या लाभ हो रहे हैं पीएम ई विद्या के स्वयं पोर्टल के माध्यम से?
3: पीएम ई विद्या के स्वयं पोर्टल के माध्यम से मुझे लाभ, सबसे ज्यादा लाभ ये हो रहा है कि मैं कहीं पर भी, जैसे कि मैं अभी यूनिवर्सिटी में किसी काम से आया हूँ, मैं बुक नहीं लिया हूँ, मुझे पढ़ना है तो मैं तुरंत अपने फोन में लॉग इन करके स्वयं पोर्टल में आईडी लॉग इन करके कुछ भी पढ़ सकता हूँ। स्वयं पोर्टल पर हम जाते हैं तो हमें पूरा प्रॉपर मिल जाता है, तो इससे हमें प्रॉफिट है, हम कहीं भी कभी भी पढ़ लेते हैं और एग्जैक्ट आंसर मिलता है।
1: विद्यार्थियों के लिए कैसे मददगार है उनकी पढ़ाई में या उनके और आगे बढ़ने में हमारा पीएम ई विद्या और स्वयं पोर्टल?
3: विद्यार्थियों के लिए पीएम ई विद्या बहुत ही मददगार है। पीएम ई विद्या के माध्यम से कई पोर्टल भी है इनके, लेकिन मैं सबसे ज्यादा अच्छा मानता हूँ जो मैंने अभी तक उसका उपयोग किया है स्वयं पोर्टल है। स्वयं पोर्टल में हमें मददगार ये है कि ना तो उसमें कोई हमारा पैसा लग रहा है अलग से, ना कोई बुक लेनी है, ना बैग में कोई वजन हो रहा है और हम कहीं भी डिजिटल रूप से पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का कहना है कि हम डिजिटलता को अपनाएं, हम डिजिटल हों, हम जितने ज्यादा डिजिटल होंगे उतना ही अच्छा रहेगा।
2: श्रोताओ, माननीय प्रधानमंत्री जी की अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो हितग्राहियों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। आज हमने इस कार्यक्रम में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में उनके विचार हितग्राहियों के लिए जानकारी उपलब्ध करवाई और इसी के साथ ही भारत सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं पर केंद्रित आज की ये रेडियो रिपोर्ट संपन्न हुई। सहयोगी राजेंद्र अहिरवार और प्रस्तुतकर्ता रविन्द्र कुमार प्रजापति।

लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधा रखा। आज हमारे कलाकार हैं भागचंद्र पटेल। सुनते हैं सबसे पहले ये गारी।

लोकधारा कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं भागचंद्र पटेल को। अभी आपने सुना ये गारी, और अब इन्हीं की स्वर में सुनते हैं ये दादरा।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: लोकधारा कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं भागचंद्र पटेल को।

0: लोकधारा कार्यक्रम आप आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से सुन रहे हैं। कलाकार भागचंद्र पटेल और इनके स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये कहरवा।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
0: और अब सुनते हैं ये सीताहरण संवाद, कलाकार भागचंद्र पटेल।

0: कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं ये लोक भजन। कलाकार हैं भागचंद्र पटेल।
1: के मुख्य

अभी आप सुन रहे थे बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक धारा। इसमें आज हमारे कलाकार थे भागचंद्र पटेल, ढोलक पर साथ दे रहे थे सुरेश कुमार खरे और बेंजो पे अरुण कुमार नामदेव। मीडियम 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

कल सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दस बजकर 30 मिनट का समय होगा भव्यती कार्यक्रम का, पत्रोत्तर का साप्ताहिक कार्यक्रम।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए आपको अब गुमशुदगी की सूचना दे देते हैं। पहली सूचना प्राप्त हुई है श्रीमती सीमा, उम्र लगभग 40 वर्ष,

पति का नाम श्री चरण सिंह, इनके पिता शंकर लाल निवासी ग्राम तिरावली कुणेल जनपद जालौन। श्रीमती सीमा का हुलिया कुछ इस तरह से है, रंग सांवला, लंबा चेहरा, नाक कान आंख औसत और लंबाई करीब 5 फीट। काई कलर की साड़ी और फाइबर की चप्पल पहने हुए दिनांक 26 अप्रैल 2026 को लगभग सुबह 8 बजे घर से कहीं चली गई है, जो अभी तक घर नहीं लौटी। इनकी गुमशुदगी की सूचना थाना कुणेन जनपद जालौन में अंकित कराई गई है। जिस किसी सज्जन को इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त हो, थाना कुणेन जनपद जालौन में सूचित करने का अनुरोध है। मोबाइल 9454403600। एक और गुमशुदगी की सूचना प्राप्त हुई है, वो भी हम आपको दे देते हैं।

नाम बिनी देवी, उम्र 35 वर्ष, पति का नाम श्री नाहर सिंह यादव, निवासी भेलावली, थाना रामपुरा, जिला जालौन। चेहरा गोल रंगोरा, आंख नाक कान सामान्य, कद 5 फुट 2 इंच और उम्र करीब 35 वर्ष, पीले रंग की साड़ी और काले रंग की चप्पल पहने हुए घर से कहीं चली गई हैं। सर्व साधारण के माध्यम से सूचना दी जाती है कि बिनी देवी, जो कि करीब 15 मार्च 2026 को सुबह 10 बजे अपने घर से अपने पुत्र जो कि 10 वर्ष का है को लेकर कहीं चली गई हैं, जिसका थाना रामपुर में गुमशुदगी सूचना दर्ज की गई है 15 मार्च को। जिस किसी को इनके बारे में कुछ संपर्क हो, प्रभारी निरीक्षक थाना रामपुरा को सूचना दें। मोबाइल नंबर 9454403603।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। समय है प्रादेशिक समाचारों का, प्रसारित करते हैं भोपाल केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने

0: के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिंगरौली में 513 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का मसौदा नियम प्रकाशित किए। और नौतपा से पहले ही प्रदेश में भीषण गर्मी जारी, 31 मई तक और बढ़ेगा पारा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए यह बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यह भी है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। यह रोजगार मेला पूरे देश में 47 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सिंगरौली जिले के प्रवास पर हैं। मुख्यमंत्री ने सिंगरौली में आयोजित कार्यक्रम में 513 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना व सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों को राशि का अंतरण किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का पर भी प्रकाश डाला।
2: अब तो सोने की खदान भी अगर किसी जिले में मिले तो सिंगरौली है। हमारे लिए सौभाग्य की बात, प्राकृतिक रूप से भी सब प्रकार की संपदा के साथ जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे सारी संभावनाओं के बलबूते पर, तो क्या रहे क्या हो जाए, भविष्य भी आपका और आज भी आपका, ये सौभाग्य अगर किसी का तो सिंगरौली का है।
0: डॉक्टर मोहन यादव ने इससे पहले बैढ़न में लगभग 12 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले आधुनिक खेल परिसर का भूमि पूजन किया। यह अत्याधुनिक खेल परिसर क्षेत्र के युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने, प्रतिभाओं को निखारने एवं खेल संस्कृति को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री सिंगरौली महोत्सव एवं नगर गौरव दिवस के आयोजन में भी सहभागिता करेंगे। यह 23 मई से 25 मई तक आयोजित होगा। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री संपतिया, उनके राज्य मंत्री राधा सिंह भी मौजूद।

हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू फॉर्मेशन से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में मदद मिलेगी और भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने में गति मिलेगी।

मजबूत करने में मदद मिलेगी और भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने में गति मिलेगी। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि देश की जनता पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है और विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में जुटी है। केंद्रीय मंत्री आज शिवपुरी में आयोजित भाजपा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी शामिल हुए। श्री सिंधिया ने सोशल मीडिया पर चर्चित कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर तंज कसते हुए कहा कि राजनीति ट्रेंड से नहीं बल्कि जनता के बीच काम करने से चलती है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का। साथ ही एक्सपर्ट फोन पर सकते हैं। इसके अलावा आप अथवा ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। नए अधिनियम का उद्देश्य वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करना है। यह इस वर्ष 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगा। कृषि कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत आगरमालवा जिले में 4 कृषि रथों के माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, शासकीय योजनाओं एवं कृषि आधारित नवाचारों की जानकारी प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में कल जिले के ग्राम निपानिया, बैजनाथ, मालीखेड़ी, कंकडेल, रामनगर, जयसिंहपुरा सहित विभिन्न पंचायतों में तकनीकी टीम द्वारा किसानों को कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने, कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करने तथा किसानों की आय दोगुनी करने के उपायों की जानकारी दी गई। अभिनेत्री और मॉडल त्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। पुलिस ने त्विशा के पति और मुख्य आरोपी समर्थ सिंह को आज भोपाल जिला अदालत में पेश किया, जहां से उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। प्रदेश में नौतपा शुरू होने से पहले ही भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। राज्य के ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा और उज्जैन संभाग समेत कई इलाके हीट वेव की चपेट में हैं। गर्मी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 42 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की थी। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज जिले का अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण दोपहर के समय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। गर्मी में बिजली की खपत बढ़ने से बिजली बिल अधिक आता है, लेकिन कुछ तरीके अपनाकर बिजली बिल में कमी की जा सकती है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि एक शोध से यह साबित हुआ कि एसी का तापमान 26 डिग्री पर सेट करने से बिजली बिल में 30% तक की कमी हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जनगणना के पहले चरण की प्रक्रिया के तहत शहडोल जिले में मकान सूचीकरण और नंबरिंग का काम अपने अंतिम दौर में है। जिले में अब तक 97% काम सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए संयुक्त टीम ने कटनी जिले के विकास खंड विजय राघवगढ़ के गांवों का भ्रमण कर गर्भवती महिलाओं के एएनसी पंजीयन, टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। देवास जॉब पोर्टल के माध्यम से वेल्सपन लिविंग लिमिटेड द्वारा 3 जून को मल्हार स्मृति मंदिर देवास में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। झाबुआ में गंगा दशहरा पर 25 मई को जिले में जल संरक्षण और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैतूल जिले में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 112 संतृप्ति शिविर आयोजित किए गए। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: मीडियम पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम सभा।

0: ग्राम सभा कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहन खौन नंदनी बहन की राम राम पहुंच जावे। और भैया बहनों देखो गर्मी तो खूब पड़ रही है ना, तो देखो अपन को गर्मी और लू से बचाव करने हैं। लू से बचबे के लाने देखो अपन घर से बाहर ना जावे। अगर देखो जरूरी होए कछु काम बहुत ही जरूरी हो तो देखो घर से अपन निकल रहे हो तो देखो पहले तो पानी पी लेवे और सिर खो तौलिया से ढक लेवे। ढीले हल्के रंग के सूती कपड़ा पहनने हैं पूरी बाहें के। चेहरा और कानन को बढ़िया तरीका से तौलिया से ढक लेने हैं और पानी पीने है। पानी पर्याप्त मात्रा में अपने भैया बहन को पीने हैं। अपने शरीर में देखो पानी की कमी नहीं होने देनी है। लू से बचबे के लाने देखो नींबू पानी है, छाछ है, नारियल पानी, कच्चे आम को पनो, खीरा, तरबूज और खरबूजा जैसे देखो पानी से भरपूर फल अपन को खाने हैं। धूप से बचाओ सभी भैया बहनों को करने हैं। सुबह से देखो ठंडे ठंडे में काम निपटाने हैं, जोनिया के दोपहरी में लगे काम में तो देखो अपन को धूप से बचने हैं। उसके बाद घर के अंदर ही अपने भैया बहनों को रहने हैं। अपने जौन छोटे छोटे बाल गोपाल हैं और बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको भी देखो ध्यान रखने हैं, उनको देखो बाहर नहीं निकालने है। अपन को अगर तेज बुखार हो, सिर दर्द हो, चक्कर आ रहे हो, जी मचल रहा हो तो देखो अपन समझ लें कि लू लग गई। तो देखो लू की चपेट में अपने भैया बहन आ जाए अगर तो देखो अपन को जोनिया के घर में रखी गोली तो वही खा लें। तो देखो अपन को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपन को देखो डॉक्टर भैया से देखो इलाज कराना है, तुरंत अस्पताल ले जाने हैं। और भैया बहन है देखो एक बात को अपने भैया बहन को और ध्यान रखना है, अपनी मौड़ियन को देखो कम उम्र में ब्याह नहीं करना है ना। जब अपनी मौड़ियां 18 साल की हो जाएं तब ही देखो अपन ब्याह चलाए की सोच में। देखो भैया बहनों आज है अंतरराष्ट्रीय प्रसूति फिस्टूला दिवस, जो दिवस हर साल 23 मई को मनाया जाता है। एक और उद्देश्य जो है कि देखो प्रसव के दौरान होबे वाली गंभीर और कष्टदायक चोट के बारे में जागरूकता बढ़ावो और रोकथाम के लाने इलाज के लाने भी बढ़ावा देवो है ना। मुख्य समस्या तो जा होत है कि प्रसूति फिस्टूला प्रसव के दौरान होबे वाली एक विनाशकारी चोट आए। प्रसव के दौरान चिकित्सक भैया की सुविधा ना मिलवे अपनी बहनन को तो उनको बहुत ही कष्ट झेलने पड़त है। प्रसूति फिस्टूला की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2013 में करी हती, जो दिवस 2013 में पहली बार मनाओ हतो। हम तो सभी भैया बहनन से और बहनन से खास तौर से जय के हैं कि देखो अपन को साफ सफाई को ध्यान रखने, साफ सफाई से अपने भैया बहनन को रहने और समय पे देखो टीकाकरण कराने हैं, पौष्टिक से भरपूर भोजन खाने हैं जिसे अपने शरीर में देखो खून की कमी ना हो। खून की कमी हो तो कई रोग राय घेरत है, तो देखो इसे अपने भैया बहनन को खास तौर से अपने शरीर में खून की कमी नहीं होने देने और अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देने हैं और स्वास्थ्य की देखभाल करते रहने हैं। और भैया बहनों देखो बतकाव तो करते ही रहे, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बीआर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
3: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉन्ग।

Solid Info पूरे 90 सालों से non-stop trending. Tune in करो क्योंकि legends कभी outdated नहीं होते. आकाशवाणी 90 years से इंडिया की original आवाज.

0: AIR at 90.
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
3: अब अपने भैया बहन इंतजार कर रहे होंगे हेलो लोक रंजन कार्यक्रम को, और अब देखो देर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, सुनवा रहे हैं अपने भैया बहनों को हेलो लोक रंजन कार्यक्रम। श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित बुंदेली लोकगीतन को फरमाइशी कार्यक्रम है। ई कार्यक्रम की प्रस्तुति है रविन्द्र कुमार प्रजापति जी की। तो लो अपने भैया बहन सुने जो कार्यक्रम।

0: लोक रंजन।
1: हेलो लोक रंजन कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहन खो नंदनी बहन की राम राम। हेलो लोक रंजन कार्यक्रम शुरू कर है उससे पहले हम अपन को बता दें ये कार्यक्रम के फोन नंबर हमारा पहलो नंबर है 2415 88 और दूसरा नंबर है 2980 29 और छतरपुर को एसटीडी कोड है 0682। हेलो लोक रंजन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से 3:30 बजे तक करी जात है और ई में अपनी भैया बहन फोन नंबर लगा के अपनी पसंद को लोकगीत सुन सकते हैं। ई को प्रसारण शनिवार के दिन ग्राम सभा में करो जात है। तो शुरू करते हैं अपन हेलो लोक रंजन कार्यक्रम। हेलो लोक रंजन से भैया।
2: हेलो, हाँ दीदी नमस्कार।
1: नमस्ते भैया।
2: हाँ दीदी, मैं ग्राम बिडौरा जिला दतिया से लोकिंद गुर्जर बोल रहा हूँ।
1: जी भैया लोकिंद गुर्जर जी, स्वागत है अपन को हेलो लोक रंजन कार्यक्रम में फोन लगा भी खिलाने। और आज के कार्यक्रम में की को लोकगीत सुनने?
2: हाँ दीदी, उर्मिला पांडे जी की आवाज में सुनवा दीजिए कोई भी।
1: उर्मिला पांडे को गाओ कोई भी लोकगीत?
2: हाँ जी दीदी।
1: ठीक है, अपन को जरूर सुनवा है। और क्या कर रहे हैं?
2: जी दीदी, खेती बाड़ी का काम है अपना, कृषक है और पशुपालन भी है। तो बस
1: गर्मी तो खूब पड़ रही, तो लपट से कैसे बचाव कर रहे हैं अपन?
2: लपट से दीदी, क्योंकि उनके लिए पशुओं के लिए खास कर बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वे तो बेजवान है, बोल नहीं सकते, लेकिन उनके लिए अपन सब सेवा कर सकते हैं जो कि अपनी सारे है। तो उसमें अंदर बांधना, अंदर ही चारा खिलाना उनके लिए, और सुबह नहलाना, हरा चारा डालना उनके लिए और पानी पिलाना, तो ये माने सभी के लिए, तभी उनका ध्यान रख सकते हैं। मैम वहाँ पंखा लगाया इसलिए पशुओं को ध्यान करते हैं, और अपने लिए तो मैम जब भी कोई जरूरी काम है तो ही घर से निकले और लू से बचे। ज्यादा से ज्यादा पानी
1: आ रहा है तो इतनी लपट है बाहर के बहुत ज्यादा।
2: जी दीदी बिल्कुल, 46 डिग्री तापमान है हमारे भी दतिया जिला में।
1: तो लपट से अपने भैया बहनों को भी बचने हैं कि लपट में अपन ज्यादा ना न करवे। ठीक है लोकेंद्र गुर्जर जी, अपन को सुनवा रहे हैं उर्मिला पांडे को गाओ भाव जो लोकगीत। फोन करवे के लाने अपन को बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो लोकरंजन से भैया।
0: हेलो लोकरंजन से बहुत बहुत नमस्कार।
1: नमस्ते भैया। और को बोल रहा है भैया, ना बताओ अपनो।
0: फूलचंद पाल बोल रहे मनकारी से
1: फूलचंद पाल।
0: जी।
1: और भैया स्वागत है अपन को हेलो लोकरंजन कार्यक्रम में, फोन लगावे के लाने। और
0: बहुत
1: आज
0: बहुत
1: की क्या
0: धन्यवाद।
1: बात की
0: हमें
1: सुन
0: लग
1: रहे
0: रहा
1: हैं?
0: जैसे उमेश कुमारी बोल रही हो आप।
1: जी भैया,
0: हमें सुनने हैं शकुंतला शुक्ला जी की आवाज में 15।
1: अच्छा बन्ना सुनने हैं।
0: बिल्कुल ब्याह शादी को मौसम चल रहा हो,
1: सुनवाए
0: बन्ना
1: हैं
0: सुनने को
1: जरूर।
0: मन कर रहा हूँ आज।
1: बिल्कुल हम बन्ना अपन को जरूर सुनवाए हैं। और हमें जो बताओ कि गर्मी से बचाव कैसे कर रहा है लू लपट से।
0: अब तुम जो पूछो, इतनी भयानक गर्मी है, बहुत तेज गर्मी है। सारे श्रोताओं से निवेदन है कि कृपया पानी बहुत ज्यादा पिए और तले पदार्थ ना खाएं, तेल वाले सिस्टम जितने हैं वो ना खाएं, मिर्चा बिल्कुल ना खाएं
1: बिल्कुल,
0: और
1: ये घर से बाहर ना निकलवे अपन,
0: सादा
1: धूप
0: सैंपल
1: में
0: भोजन खाएं।
1: अपन ज्यादा जरूरी काम हो तब ही अपन निकलवे। सो देखो तौलिया से अच्छा से ढक लेवे, फुलबाजू के कपड़ा पहन ले जब ही अपन को निकलने हैं। वैसे तो अपन ज्यादातर घर ही में रहवे।
0: बिल्कुल घर ही में रहे, जब कोनो ज्यादा जरूरी काम पर जावे तो बाहर निकले तो गले में अपने कानन में तौलिया लपेट लेवे और बाहर निकले और खूब पानी पिए और खूब प्याज खाएं।
1: बिल्कुल, पानी की कमी अपने शरीर में नहीं होने देवे।
0: बिल्कुल ना होने देवे, नहीं तो बीमारी बिल्कुल द्वार पे खड़ी कहाई।
1: और बच्चे और बुजुर्गन को तो देखो खास तौर से निकलने ही नहीं है ज्यादा।
0: बिल्कुल नहीं निकलने, बूढ़े बब्बा हरे हैं जो भी हल्के हल्के लड़का बच्चा है भी अपने घर ही में रहा भीतरे। और ऐसा हमारा सब श्रोताओं से निवेदन है।
1: चलो ठीक है भैया, अपन को सुनवा रहे हैं हम फूलचंद पाल जी, अपन को सुनवा रहे हैं शकुंतला शुक्ला को गाओ भाव जो बनना।

0: हेलो लोकरंजन से भैया।
1: हेलो लोकरंजन दीदी।
0: नमस्ते भैया।
1: नमस्ते दीदी। पाठक मोहल्ला भवन गला जलाटी में बात करिए। परशुराम पाठक बोल रही।
0: परशुराम पाठक
1: जी दीदी।
0: और परशुराम पाठक जी आज के हेलो लोकरंजन कार्यक्रम में की को गाँव लोग की सुनने हैं।
1: आज दीदी हमें मनीषा परिहार की आवाज में सुनवा दो। लोग कोई भी लोग भी सुनवा दो।
0: जरूर सुनवा है मनीषा परिहार को गाँव भाव। और क्या कर रहा है इस समय गर्मी में?
1: कुछ नहीं दीदी, घर पे है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगी
0: तो गर्मी से बचाव कैसे कर रहे हैं अपन घर परिवार को और अपन अपनों?
1: बस घर पर सब किसी को बच्चों को बाहर नहीं निकलने दी। नींबू पानी है, दही है, मच्छा है, इसका सेवन करते हैं। हाँ
0: बिल्कुल भैया, अपन को देखो कछु जरूरी काम हो तब अपन घर से बाहर जावे, नहीं तो अपन
1: हाँ, अगर कहीं जाना है तो
0: ठंडे में देखो अपने भैया बहन को सुबह से काम निपटा लेने हैं और अपने घर के अंदर रहने हैं। और ढो बच्चे उनको कैसे ध्यान रख रहे हैं ऐसी गर्मी में?
1: हाँ तो उनको भी तो बचाव करना है, पशु पक्षी बोलते थे।
0: और जो अपनी जो चिड़ई चुनगुनू है उनके लाने छत पे पानी रखे हो घर के?
1: हाँ दीदी हाँ रखते हैं ना, लोग बाहर जगह अपने अपने पेड़ों पर, कोई नीम के पेड़ पर, कोई किसी पेड़ पर रख देते हैं। एक में पानी रख देते हैं, एक में दाना पानी रख देते हैं खाने के लिए, ये भी रख रहे हैं सब लोग।
0: के देखो गर्मी पड़ी है तो गर्मी से सभी जीव जंतु को बचा
1: जी दीदी।
0: ठीक है भैया, अपन को फोन करवे के लाने बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी दीदी नमस्ते।

0: हेलो लोक रंजन।
1: हेलो लोक रंजन से भैया।
0: गुड्डू चौबे बोल रहे, बम्होई ढूंढा जिला सागर से।
1: जी भैया गुड्डू चौबे जू की तो गालोगी सुने आज के कार्यक्रम में।
0: राम गोपाल नायक को हाथ से गीत है।
1: अच्छा राम गोपाल नायक जू को?
0: जी
1: बिल्कुल जरूर सुनवा है हम अपन को जो लोक गीत हम अपने कार्यक्रम में हम जरूर सुनवा है। और सुना भैया गर्मी तो बहुत ही है तो ऐसे ही गर्मी से कैसे बचाव कर रहे लू और लपट से?
0: अब जो है देसी नुस्खा कर रहे थे मियां को पानो मानो बना लेते हैं अपने जो नींबू को रस मस पी लेते हैं और कहूँ जाते हैं तो कान बांध के चले जाते हैं प्याज की गठिया डाल लेंगे।
1: हाँ पानी खूब पीने है।
0: हाँ मियां को
1: पानी की कमी अपने शरीर में बिल्कुल नहीं होने देना है। घाय से बाहर तन कहीं अपन निकल रहे तो देखो पानी सबसे पहले पीवे।
0: हाँ हाँ
1: और भैया पानी की बचत के लाने का कह हो अपन?
0: अब पानी की बचत को जो है नरवा जहाँ है अपने तो कछु ने तो बोरियों मोरियों को अपने छेक के रख लेके पानी अपन बरसात में आवे तो फालतू न जावे। गांव को पानी गांव में ही रहे कछु न कछु या गड्ढा वड्ढा खदो ले सोखता उखता बनाओ छत को पानी को भी अपन गड्ढा बना ले में डाल के तो पानी को वाटर लेवल बढ़त है। अगर थोड़ा थोड़ा सो करे तो अपन
1: बिल्कुल बूंद बूंद से खड़ा भरत है अपन एक एक बूंद बचा के रखे तो देखो अपने लाने वो हो जाए। काहे के पानी के बिना देखो जिंदगानी संभव नहीं है। पानी के बिना कछु भी संभव नहीं हो सकते है।
0: जी
1: तो अपन को देखो पानी को संरक्षण भी करने है।
0: जी
1: जब ही अपन को देखो पानी आगे तक को मिल है। गुड्डू चौबे जू अपन को सुनवा रहे हैं हम राम गोपाल नायक को गाँव भाव जो हास्य लोक गीत।
0: राम राम
1: फोन करवे के लाने बहुत बहुत धन्यवाद भैया।

0: आसाराम रजक जू
1: हम बहन जी लोग गीत सुनवा चाहे थे
0: भैया की को गा लोग गीत सुनने आज के हेलो लोग इंजन कार्यक्रम में
1: चुन्नी लाल रेकवार को सुनवा दो
0: चुन्नी लाल रेकवार को कोई भी लोग गीत
1: कोई भी
0: बिल्कुल हम जरूर सुनवा है और का कर रहे हो अपन
1: बैठे हैं छाया में
0: छायरे में कन्नीम की छाया है का
1: पीपर की है गई सब
0: अच्छा पीपर और बरगद है
1: भाई बैठे हैं भाई सब फोन लगा रहे हैं
0: गर्मी तो बहुत हो रही है तो इसे कैसे बचाव कर रहे हैं अपन
1: अरे अब वो तो छायरे में बैठ जाता है जी पेड़ निकल में गर्मी तो बहुत और का घरे ही हैंगे
0: कहे के बूढ़े बुजुर्ग खो तो वैसे ही बच्चन खो बाहर नहीं निकलने ऐसी लू में
1: हम तो बूढ़े हैंगे तो हम तबियत ऐसी के थाऊ नहीं जाओ
0: का सुनते ही अपन
1: हम जे सुनते हलो लोक रंजन राम तूला खेती किसानी कीजिए सुनते जय ग्राम सभा अच्छी लगता और हलो लोक रंजन राम तूला अच्छी लगता
0: तो इनसे कछु अपन को सीख मिलत हैगी
1: है हमें सीख खेती में लाभ मिलता है हम
0: तो खेती में जो कछु सुना था खेती बाड़ी के संबंधित तो खेती में उनको उपयोग करत हो
1: करते हम सब
0: ठीक है भैया अपन ने सुनबो चाहो है चुन्नी लाल रेकवार को गाव भाव जो

0: लोकगीत। आसाराम रजक जू अपन खुद सुनवा रहे हैं।
1: जय राम।
0: फोन करबे के लाने बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अरे एक एक पेड़ो लगाने, एक एक पेड़ो लगा।

0: हेलो लोकरंजन से भैया
1: हेलो लोकरंजन से
0: जी भैया हेलो लोकरंजन से
1: दीदी, हम त्रिराम रेडियो श्रोता संघ बवाली तला जिला टीकोण से पाठक बोल रहे।
0: एच एस पाठक जू
1: एक लुगी तो सुनने दो
0: की को गाँव लुगी सुनने आज के कार्यक्रम में
1: चंद्रभूषण पाठक की आवाज में सुनना चाहू।
0: अच्छा चंद्रभूषण पाठक को गाओ हो। और भैया क्या कर रहा है इस समय अपन?
1: इस समय हम पुजारी है मंदिर के, और जो कार्यक्रम कराते हैं जैसे अभी शंकर जी को कार्यक्रम चल रहा मलमास पुरुषोत्तम मास, तो उसमें जाते हैं और शादी विवाह कराते हैं। पुराने श्रोता है, बहुत
0: पुराने श्रोता हो। कब से जुड़े?
1: बहुत सालन से सुन रहे कार्यक्रम।
0: ठीक है भैया। और गर्मी पड़ रही खूब, लू लपट से कैसे बचाव
1: नींबू ठंडी चीजें खा रहे।
0: ठीक है भैया, अपन को सुनवा रहे हैं हम चंद्रभूषण पाठक को गाओ भाव जो लोग।
1: नमस्ते दीदी, नमस्ते भैया।

0: लोक रंजन।
1: अब अपने भैया बहन सुन रहे थे हेलो लोक रंजन कार्यक्रम, श्रोता भैया बहन के फोन कॉल्स पे आधारित हतो जो। और देखो अब बात कर रहे हैं अपनी भैया बहन से आज की सीख की। आज की सीख को विषय है जो आप खोना चाहे उके बाप खोना चाहिए। ई जाए एक देखो बुंदेली प्रसिद्ध कहावत है। ये कहावत को अर्थ है जो व्यक्ति आपका सम्मान या आदर नहीं कराता है, जो पसंद अपन को नहीं कराता है और आपसे कछु संबंध नहीं रखो चाहत है, तो देखो अपन को भी उके व्यक्ति के माता पिता और उके परिवार को सम्मान बिल्कुल नहीं करने है। दूसरे शब्द में हम तो यही कहे कि आत्म सम्मान सबसे ऊपर मानो जात है। यदि सामने वाले व्यक्ति आपकी परवाह नहीं कराता है तो देखो अपन को भी उनके संबंधियों की परवाह नहीं करनी है। जातो हाथी देखो आज की सीख और हो रही है अब चलवे की बेरा। सो बता दें चलत चलत कल की ग्राम सभा के कार्यक्रम। कल अपने भैया बहन सुन है धारावाहिक अटकन चटकन भाग 6 बाता सुन है और आज की सीख में सुन है जैसी करनी उसे भरनी वैसे ही पार उतरनी। और अब सो हो रही है चलवे की बेरा। सो अपनी बहन नंदनी खो दे आ गया भैया बहन राम राम।

अभी ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से किया जा रहा था। कुछ ही पलों में सुर्खियों में कार्यक्रम हम प्रस्तुत करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुभा रोहतगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेला पहल के तहत 51,000 से अधिक योग्य युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये युवा अब विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों में शामिल होंगे और आज हमारी चर्चा का विषय यही है, 19वां रोजगार मेला, रोजगार सृजन से राष्ट्र निर्माण। इस विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर। शेखर जी, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार अनुभा जी।
1: शेखर जी, रोजगार मेला के अब तक के 18 एडिशन्स के माध्यम से

0: से लगभग 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में सरकार की ये पहल कितनी महत्वपूर्ण है?
1: रोजगार मेला अपने आप में सरकार की एक बड़ी इनिशिएटिव है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को एक प्राथमिकता दी गई है। आपने जैसे कहा कि 12 लाख लोगों को नौकरियां दी गई है, ये 19वां मेला था, 47 जगह पर आज आयोजित हुआ है, जिसमें रोजगार मेले में जो एक प्रोसेस रहती है कि जहां जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स होते हैं वो और उनको एम्प्लॉय करने के लिए जो लोग जाते हैं, खास करके सरकारी जो एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट होते हैं, उन दोनों को ये करके किया जाता है। और इसका एज लिमिट जो है 18 से 35 तक है। और सबसे विशेष एस्पेक्ट इस मेला में यह है कि 8वीं क्लास, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास जो लोग पास कर रहे हैं, उन्हीं से लेकर जो ITI डिप्लोमा लिए हैं और जो ग्रेजुएट्स हैं, ये सबको कवर करता है। तो एक यूनिक एक्सरसाइज रहा है जिसमें बहुत लोग फायदा उनको मिला है। और लगातार एक बात आती रहती है कि बेरोजगारी हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार और सरकार के डिपार्टमेंट्स, जो बड़े रिक्रूटर्स है, जैसे रेलवेज है, आपकी बैंकिंग सेक्टर है, आपकी हायर एजुकेशन है, आज के मेले में भी ये लोग सब भाग लिए हैं। सरकारी नौकरी को लेकर हमेशा एक अट्रैक्शन रहती है कि ये सबसे सिक्योर है, लेकिन आज के मेले में जो बातें सामने प्रधानमंत्री ने रखी है कि जिनको ये नौकरियां मिली है उनका भूमिका क्या है, वो आगे जाके क्या करेंगे, ये सब बारे में प्रधानमंत्री ने आज सबको बताया है।
0: जी, ये जो आपने आखिरी बात कही इस पे भी जरूर चर्चा करूंगी मैं आपके साथ शिखर जी, पर अभी बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये जो नए नियुक्त कर्मचारी हैं, ये राष्ट्र की विकास यात्रा में प्रमुख भागीदार बन रहे हैं। पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं।
0: शिखर जी, रोजगार मेला जैसी पहल जो है वो राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी को कैसे सुनिश्चित करती है और कैसे प्रोत्साहित करती है?
1: आज प्रधानमंत्री का आह्वान यही है कि जो लोग सरकारी नौकरी पे जा रहे हैं वो एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट ले रहे हैं। वो कमिटमेंट क्या है? लोगों को सेवा करने के लिए, क्योंकि ये केवल एक नौकरी नहीं है, एक माध्यम है जिसे आप देश की सेवा कर रहे हैं। और इसीलिए आपको अपने आप को कर्मयोगी के रूप में काम निभाना है। और ये जो आज की जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं देश के सामने, जो जॉब में ज्वाइन कर रहे हैं वो भी अपनी शिक्षा बंद नहीं कर सकते
0: जी,
1: लगातार उनके लर्निंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि ये जो नई टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं वो भी एक चुनौती दे रहे हैं कि उसको आप कैसे अडेप्ट करेंगे, सिस्टम में कैसे करेंगे, और लोगों की बढ़ती हुई जो मांगे हैं उसको कैसे आप दूर करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर का यही था कि आज के युवा, उन पर पूरा भरोसा है कि वो ये कर पाएंगे। और साथ में हमेशा ये याद रखेंगे, सरकारी जॉब जो है एक माध्यम है लोक सेवा के लिए, ये बात इनको कभी भूलना नहीं चाहिए।
0: सफल उम्मीदवारों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी हाल में ही संपन्न हुई 5 देशों की यात्रा के आर्थिक और कूटनीतिक परिणामों के बारे में भी विस्तार में बताया, और उन्होंने कहा कि इन साझेदारियों का उद्देश्य ये है कि भारत के युवाओं को रोजगार और वैश्विक अनुभव प्राप्त हो।
2: साथियों, हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। आज दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो इनोवेट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं और जो बड़े स्तर पर डिलीवरी कर सकते हैं। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं हूँ। मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूँ।
0: शिखर जी, प्रधानमंत्री की बातों से स्पष्ट है कि भारत अपनी प्रतिभाशाली युवा आबादी के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने हेतु इन अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों का लाभ उठा रहा है और बहुत अच्छी तरह उठा रहा है।
1: बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अभी जो भारत जिस विकास यात्रा पे चल पड़े हैं उसके सामने एक विजन है, वो है विकसित भारत। विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्त

0: करने के लिए आप देख रहे हैं कि किस तरह अन्य देशों के साथ संबंध बढ़ रहे, समझौता हो रहे, नए नए टेक्नोलॉजी को लेकर, ज्वाइंट कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर, इस तरह कई चीजें हो रही है। हाल में जो प्रधानमंत्री गए थे नॉर्डिक कंट्रीज, वहां जाके इन्होंने कई एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुआ भारत और इन देशों के साथ। इसका फायदा क्या है, क्योंकि बड़ी बात आती है इस पर, इसको आलोचना भी विपक्ष पार्टियों से की गई
1: जी बिल्कुल,
0: कि या एक तरफ आप ऑस्टेरिटी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री विदेश क्यों जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री विदेश जाने का लक्ष्य यही है कि 5 कंट्रीज के साथ जो एग्रीमेंट्स हुए, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, ज्वाइंट पार्टनरशिप होगी, इसका सारा मकसद यही है, ताकि भारत अवसर पैदा करे अपने नौजवानों के लिए, साथ में अन्य देश है वो भी भारत के विकसित यात्रा में भाग लेने चाहते हैं, एक पार्टनर बनना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें समझना चाहिए कि जब भी इस तरह की डायलॉग्स होते हैं, एग्रीमेंट्स बनते हैं, भारत को जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अन्य अन्य क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिजिटल इनोवेशन है, और सबसे बड़ी जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, और दूसरी बात, क्योंकि आजकल समुद्र ये सबसे ज्यादा अवसर देता है,
1: जी बिल्कुल,
0: उसमें मैरिटाइम जो कोऑपरेशन होती है, वो ब्लू टेक्नोलॉजी हो, फिशिंग हो, शिपिंग हो, ये सारे चीजों के साथ बातचीत हुई है और समझौते भी हुए, जिसका फायदा हमारे युवाओं को जाएगा, क्योंकि नए नए अवसर खोलेंगे, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज होगा, उस टेक्नोलॉजी से भी आगे भारत की आर्थिक व्यवस्था भी और सुधरेगी और लोगों को फायदा होगा।
1: शिखर जी, पिछले कुछ वर्षों में भारत द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के माध्यम से अपनी आर्थिक साझेदारियों को बड़े पैमाने पर विस्तार कर रहा है और उसका विविधीकरण भी कर रहा है। क्या आप सहमत होंगे कि इससे न केवल भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और जो उद्यमी युवा पेशेवर हैं, उनके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, बल्कि ये ब्रेन ड्रेन को रोकने और उसे पलटने में भी मदद करेगा?
0: बिल्कुल, देखिए, ब्रेन ड्रेन की जो बात होती थी आपकी 60s, 70s, 80s में, ये बातें आती थी कि हमारे IIT से, हमारे अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, जो टॉप कॉलेजेस है, वहां से लोग पढ़कर निकलकर बस विदेश जा रहे हैं। लेकिन आज क्या है, आज भी लोग विदेश जाते हैं, लेकिन जाके वहां शिक्षा और अधिक एडवांस शिक्षा प्राप्त करके फिर भारत आना चाहते हैं। जिस स्टार्टअप की बात कर रहे हैं वो सब खोल रहे हैं और उसमें हमारे युवा जुड़े हुए हैं। अब जानते हैं भारत में कितने यूनिकॉर्न्स आ चुके हैं, मतलब जिसकी वैल्यूएशन मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। और प्रधानमंत्री की अभी जो यात्रा है, आप देख लीजिए किस किस क्षेत्र में क्या क्या टेक्नोलॉजीज हो रहा है। केवल नेदरलैंड्स को ले लीजिए, सेमीकंडक्टर्स, पानी, सिंचाई, कृषि क्षेत्र में, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में नेदरलैंड्स के साथ हुआ, जो आज प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इनोवेशन स्वीडन के साथ हुआ है, और फिर ग्रीन टेक्नोलॉजी और जो मैरिटाइम कोऑपरेशन करने बात की, वो नॉर्वे के साथ हुआ है। इसके अलावा पीएम यहां जाने से पहले UAE गए थे, वहां स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पे हुआ है, और कई डिफेंस क्रिटिकल मिनरल साइंस टेक्नोलॉजी इटली के साथ हुआ है। ये जिस तरह पार्टनरशिप्स बनते जा रहे हैं, ये सारे पार्टनरशिप्स में हमारे युवा अच्छे शिक्षा प्राप्त करके उसमें अपने आप को केवल जॉब सीकर्स नहीं बनना चाहते,
1: बिल्कुल
0: जॉब गिवर्स बनना चाहते हैं। ये बड़ी चेंज आई है।
1: शिखर जी, अपने भाषण में आज प्रधानमंत्री ने देश की जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो सुधार आ रहा है, जो लगातार तेजी से बढ़ रही है, उसमें उन्होंने नारी शक्ति की भूमिका भी जो बढ़ रही है लगातार, उसके बारे में भी बात कही। उन्होंने कहा कि आज बड़ी संख्या में वुमेन लेड स्टार्टअप्स हैं, और जब वो ये सुनते तो न सिर्फ मन गर्व से भर जाता है, बल्कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं तो दुनिया के लोगों को बताता हूं कि हमारे यहाँ स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है और बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: बिल्कुल, देखिए, महिला मर्द के साथ कंधा मिला के अपने जगह प्राप्त कर ली है। ऐसा कोई एक क्षेत्र नहीं जहां महिलाओं ने अपनी रजिस्टर नहीं की हो, अपनी मार्क ऑफ टैलेंट को, अपना लीडरशिप को, अपना इनोवेटिव स्किल्स को। एक क्षेत्र नहीं है, आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और आगे लीडरशिप की काम इतना जबरदस्त हो रहा है, जिससे लग रहा है कि पूरी जो पोटेंशियल है हमारी महिलाओं की, जो स्ट्रेंथ है, उसको भारत इस समय अच्छी तरह से उसको यूटिलाइज कर पा रहा है। और उसका ज्यादातर कारण है सरकार ने जिस तरह प्राथमिकता दी है महिला शिक्षा, महिला आगे बढ़ने का जितना एवेन्यूज, और उसको एनकरेज करने के लिए जो स्कीम्स और प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके वजह से जो विकसित भारत यात्रा में महिलाओं को, मतलब हर दिन आप देखेंगे कुछ ना कुछ, कहीं ना कोई एक सक्सेस स्टोरी सुनने को मिलता है।
1: सफल उम्मीदवारों को उनकी उपलब्धि पर बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने उनकी सफलता में उनके माता पिता, उनके परिवारों और समाज के योगदान का भी उल्लेख किया।
2: आपको यहाँ तक पहुँचाने में आपके माता पिता और परिवार का योगदान कम नहीं होता है, लेकिन इतना भी यही है कि जैसे परिवार का योगदान होता है, समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है।

0: में यहाँ पहुँचाने के लिए।
1: हम सिर्फ अपने कारण नहीं पहुँचते, सिर्फ अपने परिवार के कारण नहीं पहुँचते, इस विशाल देश के 140 करोड़ नागरिकों के योगदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और इसलिए हमारा दायित्व खुद के प्रति, खुद के परिवार प्रति, वैसे ही संपूर्ण समाज के प्रति भी रहता है।
2: प्रधानमंत्री द्वारा परिवारों और समाज को दिया गया ये जो एक संदेश, एक सकारात्मक ऊर्जा है जो न केवल युवाओं को बल्कि पूरे देश को प्रेरित करने के लिए बेहद जरूरी है, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
3: प्रधानमंत्री ने एक पॉइंट इस कनेक्शन में जो बताया, देखिए आजकल ज्यादातर युवा जो आगे आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, जिनकी लीडरशिप हम देख रहे हैं
2: जी,
3: वो छोटे छोटे शहरों से आ रहे हैं।
2: बिल्कुल,
3: यानी टियर 2 टियर 3 वहां से आगे आ रहे हैं। जो स्टार्टअप की आप देखेंगे प्रोफाइल, ये सारे यही जगह से हमारे युवा आ रहे हैं, जो अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक चैलेंज लेकर कि भाई हमें इनोवेटिव कुछ करना है, और एक प्रकार से एक आंदोलन बन गया है
2: जी,
3: नेशनल इकोनॉमी के लिए हम क्या कर सकते हैं। और देखिए ये सारे नौकरी के चक्कर में नहीं है, वो कहते हैं कि हमारे पास टैलेंट है, सरकार कई सुविधाएं दे रही है, आपको कई स्कीम्स है, मुद्रा योजना, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इतनी कई स्कीम्स है जिसका फायदा लेकर आप देख रहे हैं कि वो सामने आ रहे हैं। इससे ये दिखाता है कि कोई भी संस्था हो उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ, उसकी बल उस लोगों के साथ है, जो लोग उस संस्थाओं को चलाते हैं, जो संस्थाओं को नेतृत्व देते हैं।
2: शिखर जी, अब तक जो रोजगार मेला है वो एक सरकारी पहल रही है जिसका उद्देश्य रोजगार सृजन को प्राथमिकता देना है। ऐसे आयोजनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी के बारे में आपकी क्या राय है?
3: ज्यादातर इन रोजगार मेला में सरकारी संस्था या सरकार से जुड़ा हुआ पब्लिक सेक्टर भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी समय आ गया है
2: जी।
3: ये जो हमारी यंग टैलेंट है, युवा टैलेंट है, उसको उनको भी टैप करना है, क्योंकि सरकार ने बहुत दिया है निजी क्षेत्र के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी कैपिटल अवेलेबिलिटी के लिए बहुत कुछ किया है, और यही समय है, सही समय, बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं, क्योंकि निधि क्षेत्र में क्या है कि कुछ ना कुछ विश्व में कोई चैलेंज आ जाता है तो फिर उससे वो डर जाते हैं कैसे करेंगे, लेकिन भारत सक्षम है, भारत की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी आगे बढ़ाने के लिए सरकार एकदम लीडरशिप लेके आगे जा रही है। ऐसे समय में निधि क्षेत्र को भी अपना भागीदारी निभाना है, जैसे सरकार कर रही है वैसे सरकार के साथ हाथ मिला के अपना जो करना है वो करना है, पी जाके अवसर आगे आएगा।
2: हम जब बात कर रहे हैं निजी क्षेत्र की भागीदारी की रोजगार सृजन में, तो सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार ने जो कदम उठाए हैं, जो इनके इनिशिएटिव्स रहे हैं पिछले कुछ सालों में, वो किस तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं निजी क्षेत्र को रोजगार सृजन में?
3: आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, मान लीजिए शिप बिल्डिंग क्षेत्र ले लीजिए, शिप रिपेयर ले लीजिए, इसके लिए देखिए सरकार ने कह दिया कि 75,000 करोड़ अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए
2: जी।
3: तो आपको इसको हाथ में लेकर फिर उसमें इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जब 50,000 करोड़ की आप बात करते हैं तो उसमें तो मेन इंडस्ट्रीज होंगे, उसके साथ में एंसिलरी इंडस्ट्रीज होंगे, उसके बाकी सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज होंगे। इस तरह कहीं भी एक स्कीम ले लीजिए, उस स्कीम में आप देखेंगे उसके डाउन स्ट्रीम भी होती है, एक मेन प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट से जुड़ा बाकी प्रोजेक्ट है जिसपे अगर निजी क्षेत्र उसमें आना चाहते हैं। देखिए वैसे ही कई क्षेत्र अब खुला गया, आपको डिफेंस खुला गया, डिफेंस में इतनी स्कोप बढ़ गया, आप देख रहे हैं बड़े बड़े जो प्राइवेट कंपनी है वो अभी पार्टनरशिप पे आगे आ रहे हैं, और आजकल हेलीकॉप्टर से लेकर टैंक तक मिसाइल्स, आपके सिस्टम्स, आपके वेपनरी सिस्टम, ये सारे अभी जॉइंट प्रोडक्शन में चल रहा है
2: जी।
3: आप देख रहे हैं कि कैसे हमारी आत्मनिर्भरता किस तरह इसकी और हम कैसे बढ़ रहे हैं।
2: शिखर जी, आप आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने हमारे साथ ये चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, आप सुर्खियों में कार्यक्रम का ये अंक हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: सुर्खियों में
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
6: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

समय है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का पहला गीत आर पार फिल्म से आवाज गीता दत्त की, संगीत ओपी नैयर का और गीत मजरू सुल्तानपुरी का। लीजिए सुनिए।

Akashwadi at 90. फिल्म संगीत में अगला गीत हमने लिया है मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ में। गीत मजरूह सुल्तानपुरी का है, संगीत ओपी नैयर का, और फिल्म है मिस्टर एंड मिसेस 55।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म CID से, गीता दत्त की आवाज में मजरूह का गीत और ओपी नैयर का संगीत। आइए सुनते हैं।

0: मीडियो में पर ही आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 साल और आकाशवाणी छतरपुर के 50 साल और आकाशवाणी से जुड़ी यादें कार्यक्रम के संबंध में हृदयेश नारायण तिवारी से बातचीत हम आपको सुनवाते हैं।
1: भैया बहनहरो राम राम। देखो भैया बहनहरो, आकाशवाणी के 90 साल चल रहे हैं और 8 जून का अपन सभी आकाशवाणी के 90 साल ईद ना आकाशवाणी के 90 साल हो जाए और 7 अगस्त 1976 से लेकर 7 अगस्त 2026 का आकाशवाणी छतरपुर के 50 साल शुरू हो जाए और अपने भैया बहन अपने बीच में आउट हैं और आज एक भैया अपने बीच आए हैं पंडित हृदयेश नारायण तिवारी जी। अपन ने कई साल आकाशवाणी छतरपुर की सेवा करी है, अपन कंपेयर के रूप में रहे हैं, अब सेवानिवृत्त हैं और अब जनता की सेवा कर रहे। तो भैया राम राम।
2: अरे राजेंद्र भैया राम राम, हमसे मिलकर बड़ी खुशी भाई है
1: जी। भैया अपने पंच भैया तो अपन जाने ही गए हुए और आवाज ही एक अलग ही खनकती भाई आवाज है, तो भैया बहन खा अपन कछु अपने बारे में बताओ।
2: देखो भैया ऐसा है कि जीवन में परिवार और बुंदेलखंड जो एक परिवार है, तो एक समय ऐसा हो तो भैया के जब पहले अपना रेडियो माध्यम हतो, दूसरो कोनो माध्यम ना हतो,
1: कोनो माध्यम ना
2: का कहा उते तुम्हारे टेलीविजन हतो ना मोबाइल हतो कछु, तो भैया जैसे ही रेडियो खुलतो तो आदमी चौपाल पे बैठ जाते तो भैया हनु भैया आ रहे, हैसु भैया आ रहे, राजेंद्र भैया आ रहे, अब देखो जी कब बता रहे है ना, तो जी बहुत अच्छी पहचान हती उस समय पे भैया, और जो गांव में लोगन के अंदर जो कला हती लोकगीतन की संगीत की।

0: को जानते ना तो
1: कीर्तन कक्ष को जानते वगैरह
0: तो अपनी आकाशवाणी के माध्यम से उनकी एक ऐसी पहचान बनी है कि बुंदेलखंड में नाम रोशन होगो है। तो जब बहुत बड़ी देन है मतलब है अपनी आकाशवाणी की कि भैया ई के माध्यम से जो अपने गांव के बेचारे भैया बहन है गारी है लोकगीत है तमाम प्रकार की विधाओं के गीत है वो जानते ना तो आकाशवाणी के माध्यम से राजन भैया जैसे लोग गाँव गाँव गए उनकी रिकॉर्डिंग करी तो उन्हें बहुत अच्छा लगो। और भैया सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जब गांव में आकाशवाणी गांव की रिकॉर्डिंग के लाने जाते थे तो भैया पूरा गांव ऐसा सम्मान देते तो लगा तो भैया तबीयत खुश हो जाती कि भैया जी आकाशवाणी के भैया
1: बिल्कुल पंडित जी जो जानू चाहे अपन कई गांव गए हुई हो तो उस समय के अपन जो लोक संस्कृति होती लोग कैसे चाउते मैंने रेडियो लाए रहते सब जने और बढ़िया अपने काम भी करते रहते तो कछु संस्मरण ऐसे बताओ कि अपन एक बार वो गांव गए और बड़ो आनंद आओ सब जन के संगे बैठे बढ़िया भोजन भाई
0: भैया जब अपन ने ऐसी चर्चा करी है राजन भैया तो गए तो कई गांव में है सागर जिला में एक गांव है अपनी आकाशवाणी के अधिकार क्षेत्र में 13 जिला आए थे
1: बिल्कुल
0: तो हर जिला में जाए गए थे तो भैया जैसी मालूम चलो कि आकाशवाणी की भारत सरकार की जगह गाड़ी आई तो भैया गांव वाले ने गाड़ी खेल ली एकदम से
1: अरे
0: और सब जने अरे भैया पांव पड़ने लगे अरे भैया जो नहीं अरे देखो पंच भैया है यहाँ और बड़ी पाल
1: कितना बड़ो नाम हतो
0: अरे भैया ऐसा सुंदर लगा तो देखो चाहिए बे आए बेचारे खाना पीना हम भैया खाना पीना कछु नहीं अरे बोले हम तो धन्य हो गए आकाशवाणी
1: इतनो प्रेम आकाशवाणी के प्रति उनको स्नेह
0: एक भाव जीवन में बहुत बड़ी चीज है और भाव से हम आप जुड़े हैं
1: बिल्कुल
0: तो वह चीज देख के बहुत अच्छा लगा तो और भैया ऊके संगे संगे जैसे अपने छतरपुर जिला में आकाशवाणी के अलावा कोनो जो एसी वालों बोना हतो
1: अच्छा ठंडो
0: ठंडो ठंडो तो भैया दोबारा मिला लगू रात तो भैया हमें आकाशवाणी
1: देख लो
0: राजन भैया संगे लगे हमारे भैया लगे पहले पास बनते भैया पास बन गया आए देखो तो भैया देखो तो यार आकाशवाणी कैसी सुंदर बनी है और भैया उस समय तो चला तो कछु पंच भैया अनभिज्ञ घाते कैसे 50 साल कैसे बोलत हुए कैसे बताते हुए
1: रेडियो में कोई जने घुसेरात
0: बड़ी ऐसी चर्चा होती तो भैया बात चीज इतनी अच्छी लगी और गांव में भैया नाव चिट्ठी डाटा पहले चिट्ठी चलती
1: बहुत
0: तो भैया इतनी ग्राम सभा में चिट्ठी आ रही अपने जैसे घर कार्यक्रम है उमे आ रही लोकगीतन की चिट्ठी आ रही तो भैया रेडियो ने खोल लो और सुन रहा भैया हमारा नाम बोल दियो है तो बड़े खुश हो रहे प्रसन्न हो रहे
1: वो दौर पंडित जी अपन ने देखो आज को दौर मोबाइल को दौर आ माने ईमेल व्हाट्सएप चल गए माने संदेश भेजने के कई तरीका हो गए लेकिन जो अपनोपन उमे है तो
0: कौन नहीं मिलो हम तो भैया जो देखो कई गांव गए हैं तो बखैर से जुताई कर रहे और रेडियो कंधा पे टंगू
1: बिल्कुल माने रेडियो से जो आ रहा है वही के अनुसार कर रहे हैं
0: वही के अनुसार कर रहे हैं भैया अपनी खेती किसानी बातें बता रहे हैं कि ऐसे बोने हैं ऐसा भैया जो करने हैं तो बड़ी ध्यान से सुन रहे हो लिख लेते मतलब बड़ी बात रुचि रखती तो ये सब चीजें अपनी आकाशवाणी यहाँ बुंदेलखंड के माध्यम से जो छतरपुर आकाशवाणी ने दी है भी भैया अपन भूल नहीं सकते।
1: अच्छा पंडित जी जो सो जानू चाहे उस समय जो मोड़ी मोड़ा पढ़ते और आज भी पढ़ रहे तो जब रेडियो को एक बड़ो विस्तार है तो बड़ो माने ऐसी पढ़ने अपन ऐसे समय को सदुपयोग करने अभी भी कर रहे अकेले कछु चीजें मोबाइल में आ गई तो बड़ो थोड़ो सो उमें भी चले जा रहे आदमी तो थोड़े से उस समय को रेखांकित अपन करते कि भैया आज आकाशवाणी जो उस समय से ज्यादा सुनी जा रही कैसे मोबाइल में आ गई आप कोनो भी माध्यम से सुन सकते तो थोड़ा उस समय को सो बताओ
0: राजन भैया उस समय की बात का है कि जैसे अपन कोनो चीज रेडियो के माध्यम से सुन रहे तो वह बहुत अच्छी लगत है जैसे अपन कटिया भा रहे खेती किसानी को काम कर रहे तो रेडियो अपना जो धरो होते
1: बजरो
0: सुन रहे बजरो तो उसे एक बड़ी लगन और सुखता एक अलग टाइप की रात है
1: काम भी हो जा रहा
0: भी हो जा रहा अपन जो देख वाली है तो वह चीज नहीं आए। और दूसरा भैया जो पंचू राम राम परंपरा इतनी है कि वो रेडियो के माध्यम से लोगन में जा भगवान को नाम जागृति के भैया
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: अपने बड़े को सम्मान
1: पंच भैया बथाई पे आ गए अपन बताए अपन बढ़िया चौपाल लगा लो सब जने सुने
0: बहुत अच्छा लगा तो मतलब वो अपने रेडियो के माध्यम के हम जे कहे हैं कि मतलब बहुत बड़ी देन है कि लोगों में संस्कार लोगों में अच्छे विचार मिल भी को एक तरीका जी सब हमें आकाशवाणी ने दो।
1: अच्छा ऐसे कछु संस्मरण हुए कि भैया बहन आपस में कोनो मन मुटाव भाव हुए फिर अपन गए जब तो अपने गले लग गए सब जने बढ़िया रेडियो की बातें सुन के देखो भैया बहन मिलके राने जी तो हमारी संस्कृति है।
0: बिल्कुल जो राजन भैया अपन ने बात करी है तो अपन तो ग्राम सभा में रहे हैं तो बोलते रहे देखो भैया परिवार है तो सब कुछ है मिलजुल के राने हैं तो परिवार अगर मिलजुल के रहे हैं संगठन में रहे हैं स्नेह रहे हैं तो बहुत खुशी मिलत है। जैसे पहले जो रात तो आज से भैया 40-50 साल पहले संयुक्त परिवार
1: बिल्कुल
0: तो संगे बैठे उन्हें की नन्ना ब्यारी कर लो भैया ब्यारी कर लो तो संगे खाना खावे में स्नेह बढ़
1: बिल्कुल।

0: है ना भाई, एक स्नेह बहुत अच्छा लगा तो परिवार में
1: झलका था तू। हाँ। और एक माने सात पांच की लाठी, हाँ, ऐसी एक कहावत हो जाती है, माने
0: एक जनन को पूछ
1: बिल्कुल।
0: तो परिवार को मुखिया है तो भैया उगे बहुत स्नेह में लगते। पहले आपने सुना हो कि दद्दा बाई में बहुत बड़ा स्नेह रहा,
1: बहुत बड़ा।
0: अब आज उन्हें की मम्मी पापा कह रहे बात है, लेकिन दद्दा बाई शब्द है जो वो आत्मीय वाला शब्द है,
1: बिल्कुल।
0: कोनो गाँव में घर में रिश्ता की बात आई तो उनकी दद्दा से पूछ लो, जैसे दद्दा के वैसे
1: खाओ,
0: है ना। तो वो चीज भैया
1: माने वो राम राज्य जो है, हाँ, तो वो आज भी देखो कायम है, बस थोड़े से परंपराएं बदल गई,
0: परंपराएं बदल गई हैं
1: बिल्कुल।
0: तो हम जे कहें जो अच्छे संस्कार और अपनी जो गांव की जो कला है निखार भी को जो मौका जो मिलो है आकाशवाणी के माध्यम से मिलो और रेडियो के माध्यम से मिलो, और जितनी बुंदेलखंड की पहचान है तो अपने कलाकार की, जैसे बड़े बड़े कलाकार हो गए, लोकगीत कलाकार हैं, जैसे बेचारे देसाज पटेल वगैरह जी लोग नहीं रहे हैं, तो ये आकाशवाणी की देन है।
1: जो
0: पूरे बुंदेलखंड में भारत में पहचान बनाई है आकाशवाणी की ऋणी है, उन्हीं की वजह से आज जो नाम रोशन हो।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी को बहुत लंबो सफर रहो है, माने 90 साल में अपन सब प्रवेश कर चुके, तो उस समय के जो कार्यक्रम हती वो बड़ी लोकप्रिय रहे। कछु कार्यक्रम के नाव सो अपन जानो चाहे, जैसे अपन ने पहले
0: बैरी भोजू करके कार्यक्रम हतो, नाटक भी बहुत अच्छे है ना। और भैया उस समय तो उनसे इतनी अच्छी शिक्षा मिलती कि परिवार में जुड़ भी की शिक्षा मिलती, जितने भी नाटक भए हैं रूपक तैयार करे गए हैं अपन ने है? और जैसे घरनी कार्यक्रम है तो बहना है जुड़ भी के क्या बहन राम नाम और देखो बहन का हाल है,
1: अपने व्यंजन बनाने का तरीका
0: है, घर की बातें करेगी। तो जे रेडियो के माध्यम से जिन्होंने गाँव के लोगों ने सुनी है, तो जिन परिवार में स्नेह ना भी हतो तो भी जुड़ गए कि देखो तो भैया और रेडियो से कैसी अच्छी बातें बता रहे, तो परिवार जुड़ो है रेडियो ने, है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आज के संदर्भ में पंडित जी अपन से जानो चाहे का कछु अपन कहू चाहो जो अपने युवा भैया बहन हैं, हम देख रहे एकल परिवार अब बढ़त जा रहा है, माने देखो अपनी अपनी सुविधाएं हैं, लेकिन जो वो बात हती वह धीरे धीरे घट रही, का देखा था अपन
0: राजन भैया हमारा सब पंचन से भैया बहन से जो के अब है के उस समय जो स्नेह बनो रात तो, और आज एकल परिवार के पढ़ लिख तो रहे है ना, खूब पढ़ लिख रहे, लेकिन माता पिता भाई के प्रति मतलब बातचीत नहीं है, उम्र मतलब उदासीन है।
1: अच्छा, कई तरह की बातें अब सुनबे में आऊ लगी, पहले जी बातें बिल्कुल बहुत कम आती, हाँ। बड़ो प्रेम रखते और खूब अंगाऊ बढ़ते भैया, बड़े खुश होते,
0: हाँ, लेकिन
1: आज थोड़ा सा अपन सुझाव का कछु दो चाहो, देखो अपन रेडियो से जुड़े कैसे, रेडियो की वाणी तो आज भी वही है।
0: हम तो भैया यही कहे हैं रेडियो के माध्यम से के एक थोड़ा सा हम उदाहरण दे हैं कि एक दिन चलो सबई खा जाने, बनो इतने नहीं रहने, हिलमिल चाल चलो जा ही से दिनाचार के लाने। जिंदगी में भैया राजन भैया कछु नहीं है, प्रेम स्नेह से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है, पैसा दुनिया कमा लेत सबको कमा लेत, लेकिन भाई माँ बाप जी एक ही बार जिंदगी में मिलते हैं, उनके प्रति हमारा भैया पंच भैया से क्या वो है कि माँ बाप के प्रति समर्पित रहो। आज के युग में सबसे बड़े देवता हमारे माँ बाप
1: बिल्कुल
0: भैया हैं, तो इनके प्रति हमेशा आदर का भाव रखो, कितनों पढ़ लिख जाओ लेकिन उनके प्रति भाव अच्छे रखो
1: बिल्कुल।
0: यही हमारा समाज है और यही हमारे मतलब बुंदेलखंड की पहचान है।
1: जी जी, बहुत नोनी देखो हमने जो
0: है, जैसे राजन भैया कहूं भी मिल जाते हैं तो दूसरा सम्मान कराते हैं, इज्जत कराते हैं
1: बिल्कुल।
0: तो उसे कहा हुआ था जो पुराने बुजुर्ग कह गए भैया कि जैसे बुजुर्ग के अपने पांव छू लाए उन्हीं की तो गंगा जब नालो बिल बढ़े, तो बड़ों की दुआएं लगती हैं
1: बिल्कुल लगती हैं।
0: तो हमेशा हमारा क्या वो है कि नई युवा पीढ़ी बड़े बुजुर्गों को आशीर्वाद ले, दुआएं ले और अपने परिवार का जोड़ के चले
1: बिल्कुल। अब कुछ सरकारी योजनाएं की अपन चर्चा करें, उस समय पे देखो कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं हती, अपन ने खाद की बतकाव करो कि भैया जैविक खाद अपन उपयोग करो, अब देखो खेती किसानी अपन गुरु जी देखा तो बीच में जात हो तो बड़ो माने अब उस हिसाब से किसान थोड़ा सा सोच नहीं रहे, माने डीएपी डर रहा हो यूरिया डर रहो, तो खाद के बगैर खेती हो नहीं रही, तो अपन कछु संदेश दो चाहो कैसे भ्रमण पे खूब अपन जात हो जैसे अपन ने जानो है, तो अपन कछु बताओ थे।
0: हम राजन भैया जो देख रहे हैं कि एक तो क्या है कि एक कहावत है ना कि ज्यादा पढ़ो सो घर से गो, कम पढ़ो सो हर से गो, तो क्या है कि जो किसान है किसान को स्वयं मेहनत करो चाहिए, कदम जानवर रखो गैया भैंसियां रखो और जो देसी गोबर को जो खेत में तुम उपयोग कर रहे हैं और ऊकी उपज देख लो और सरकारी खाद की उपज देख लो,
1: बिल्कुल
0: दोनों को अंतर है,
1: बहुत अंतर है।
0: तो भैया हमारा तो यही कहो है कि जो पशुपालक भैया हैं गाय भैंसे रखें स्वयं मेहनत करें, शुद्ध दूध मिल रहा हो, शुद्ध खावी है मिल रहा हो, अब भैया ये अपन जैसे गल्ला कर रहे जो खाद वालों गल्ला है तो जो कछु ही लगा जो गोबर की खाद को गल्ला वो खा के देखो तुम कैसे लगा
1: स्वास्थ्य के लाने बहुत उपयोगी है बहुत अच्छा है जो वालों अपनों जैविक खाद
0: हम तो यही कह रहे हैं कि किसान भैया जैविक खाद को उपयोग करें और सबका सलाह दें कि भैया जो उपयोग करें हमेशा मिट्टी को परीक्षण करा उतरावे देख रेख करा उतरावे उस हिसाब से तो जी सब चीजें बनी रहे हैं तो भैया अपन स्वस्थ बने रहे हैं और परिवार में जो
1: मेलजोल है आपसी सामंजस्य है
0: भैया पहले परिवार

0: इसे संगे रात को में स्नेह बनो रात तो अब मालूम चलो के तमाय दो ठिया बालक है बे पड़ा रहे बाहर रह रहे तुम्हें अंगन नहीं दे रहे है ना, तो वो स्नेह भी दूर हो जाते और हम राजन भैया के अगर 24 घंटा संग रहे तो स्नेह बनो रहे ममत्व बनो रहे
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और वो एक लगाव रहे है। और दूसरी बात हम जा भी कहे हैं कि लड़का लड़की में भेद न करे,
1: जा बहुत नोनी बात अपन ने कही।
0: आज के समय में लड़का से ज्यादा लड़की माँ बाप के प्रति समर्पित है ना,
1: बिल्कुल।
0: तो हमका बच्चियां हैं वे देवी को रूप है, उन्हें सम्मान देवे बढ़िया पढ़ावे, और जो देख रहे भैया दुनिया में सबसे ज्यादा बिटिया आगे पहुंच रही, कौन क्षेत्र ऐसा नहीं आए तमाम, मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में लो, इंजीनियर के क्षेत्र में लो, चाहे सेना के क्षेत्र में लो, नाम रोशन कर रही, माँ बाप को नाम रोशन कर रही। तो हम पंच भैया ने यही सलाह दें कि आज के युग में बच्चियों से स्नेह रखें, उनको सम्मान करें, और जो बुरी आदतें हैं उनसे बच के रखें, तभी हमारे देश घर पाओ को विकास हो।
1: बिल्कुल, देखो कितनी नोनी अपन ने जानकारी दी, और चला चला तो अपने पंच भैया से का कछु जो संदेश अपन दो चाहो कि अपनी प्यारी आकाशवाणी छतरपुर भैया देश दुनिया में खूब अंगाऊ बढ़ रही, कैसे अब तो मोबाइल में है सो चाहे जहाँ सुन लो अपन सुने और गुने, और पहले जो समय है तो उसी हिसाब से अपन चले सो खूब अंगाई भी अपन बढ़े
0: भैया। अबे भी जब पहचान है कि अबे हम गाँव जाते हैं तो भैया गाँव में उनके भी आगे हनु भैया ए, तो भैया आज भी पंच भैया ऐसे हैं कि आज भी रेडियो सुनते खूब, तुम्हारे टीवी होगा मोबाइल होगा, मतलब अपनी छतरपुर की आकाशवाणी की वो पहचान है बुंदेलखंड में कि जब भैया कहूँ समाप्त नहीं होने आए। इसे मतलब क्या है कि हमारा तो पंच भैया से जय के वो है कि भैया एक पहचान बना के चले, और जो कला है अपने अंदर चाहे लोकगीत के माध्यम से हो चाहे ज्ञान के माध्यम से हो, भी आकाशवाणी में आए और अपनी कला को प्रसार करके भैया अपने पूरा करें।
1: तो देखो भैया बहनों आज कितने नोने विषय पे अपन बताओ के माध्यम से जानकारी दे रहे थे हमारे पंडित हृदेश नारायण तिवारी जी, अपन पूर्व में कंपेयर भी रहे और अपन वरिष्ठ समाज से भी हैं, और आज आकाशवाणी @90 और आकाशवाणी छतरपुर की 50 साल बेमिसाल ई महत्वपूर्ण विषय पे और अपनी खूब देखो अथाई की बातन पे जो कितनों उन्होंने बतकाव भाव पंच भैया जरूर लाभ ले हैं और खूब अपनो विकास करें। तो पंडित जी अपन अपने बीच आए, अपन ने इतनी नोनी जानकारी दी, अपन को बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम
0: राजन भैया, अपन राम राम और सब पंचन भैया राम।
2: आकाशवाणी से जुड़ी यादें कार्यक्रम में हृदेश नारायण तिवारी से बातचीत कर रहे थे राजेंद्र कुमार हरबार। मीडियम पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

0: भूमि पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। कुछ ही समय में हम सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमरीका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश

0: मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमरीका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमरीका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट, मोर देन 5000 आइटम्स

0: की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
1: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
3: विकसित भारत 2047 जब उस गोल उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रिट्रेन करें, रिस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
1: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: विकसित भारत जीरामजी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: निजी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल किंयुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानाऊ से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's consistent support for peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. US Secretary of State Marco Rubio terms India as cornerstone of United States' approach towards Indo-Pacific region. Defence Minister Rajnath Singh asserts the country is becoming self-reliant in defence manufacturing, inaugurates artillery shell manufacturing plant at Shirdi in Maharashtra. Centre asks Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by 5th of next month for strengthening defence infrastructure. 90 people killed in a coal mine explosion in China. And Indian grapplers Suraj Vashisht and Sagar Singh clinch silver medals at Asian Under 23 Wrestling Championships in Vietnam. Prime Minister Narendra Modi and US Secretary of State Marco Rubio today discussed sustained progress in the India-US Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Tirth in New Delhi this afternoon. Mr. Modi said in a social media post that India and the U.S.

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अल्पी कुमारी।
1: और मैं संजय किशोर।
0: विज्ञान भारती में हम विज्ञान, तकनीक, शोध, नवाचार और समाज पर उनके प्रभाव से जुड़े विषयों को आप तक पहुंचाते हैं।
1: आज के अंक में हम चर्चा करेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, विज्ञान और तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका पर।
0: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और सुपर कंप्यूटर,
1: दुर्लभ खनिजों के निष्कर्षण की नई तकनीक,
0: विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और बिहार में प्रवासी पक्षियों की गणना, खरीफ फसलों के नई किस्में एवं जैविक उर्वरक,
1: साथ ही सुनेंगे विज्ञान जगत की बातें, मई माह में जन्मे और दिवंगत महान वैज्ञानिकों के योगदान तथा मई माह के प्रमुख विज्ञान दिवस।

0: वर्तमान में आकाशवाणी के 470 से भी अधिक केंद्र कार्यरत हैं, जो देश के लगभग 92% भौगोलिक सीमा और 99% जनसंख्या तक पहुंच रखते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक है। यह आंकड़ा केवल प्रसारण क्षमता का संकेत नहीं देता, बल्कि यह दर्शाता है कि आकाशवाणी ने भारत के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक विज्ञान और तकनीक की जानकारी पहुँचता इससे। किन्तु वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गयी। बाद में 1957 में इसे आकाशवाणी नाम मिला। स्वतंत्रता के समय देश में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे और इनकी पहुंच लगभग 11% आबादी तक थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। वर्तमान में आकाशवाणी के 470 से भी अधिक केंद्र कार्यरत हैं, जो देश के लगभग 92% भौगोलिक सीमा और 99% जनसंख्या तक पहुंच रखते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक है। यह आंकड़ा केवल प्रसारण क्षमता का संकेत नहीं देता, बल्कि यह दर्शाता है कि आकाशवाणी भारत के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक विज्ञान और तकनीक की जानकारी पहुंचाने में कितनी प्रभावी भूमिका निभाई है। आज एफएम, डिजिटल रेडियो और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से विज्ञान आधारित कार्यक्रम नई पीढ़ी तक पहुंच रहे हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष केवल प्रसारण की यात्रा नहीं, बल्कि ज्ञान, शिक्षा और वैज्ञानिक चेतना के प्रसार की गौरव गाथा है। स्वतंत्रता के बाद देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। कम उत्पादन, पारंपरिक खेती और वैज्ञानिक जानकारी के अभाव के कारण किसान आर्थिक कठिनाइयों में थे। ऐसे समय में आकाशवाणी किसानों का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मार्गदर्शक बनकर सामने आया। कोविड-19 महामारी के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैल रही थीं। वहीं लोग वैक्सीन से डर भी रहे थे, कहीं घरेलू उपचारों को वैज्ञानिक सत्य मान लिया गया था। ऐसे समय में आकाशवाणी ने डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के माध्यम से प्रामाणिक जानकारियां प्रसारित की। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की पहुंच सीमित थी, वहां रेडियो सबसे विश्वसनीय माध्यम बना। बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा और समुद्री तूफान जैसे आपदाएं हर वर्ष लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं। ओडिशा चक्रवात, बिहार बाढ़, असम की बाढ़ और सुनामी जैसी आपदाओं के दौरान रेडियो जीवन रक्षक माध्यम के रूप में सामने आया। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में आकाशवाणी ने स्वयं को तकनीकी रूप से आधुनिक भी बनाया है। विज्ञान एवं तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका के बारे में आइए जानते हैं ICMR के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर VK श्रीवास्तव से।
1: 1990-92 के बीच में ICMR ने आकाशवाणी के साथ मिलकर के एक रेडियो डेट प्रोग्राम किया। डेट मतलब ड्रग, अल्कोहल, टोबैको, एजुकेशन। ये ऑल इंडिया रेडियो के 84 स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हुआ प्रोग्राम, 30 एपिसोड का, 16 लैंग्वेजेस में। तो ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। सबसे ज्यादा का फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। इसका इवेल्युएशन हम सिर्फ 2 जगह कर पाए, कर्नाटक और गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में। उससे पता चलता था 4 से 6% लोगों में, कहीं 4%, कहीं 6% लोगों ने इस प्रोग्राम को सुनने के बाद में इन बुरी आदतों से छुटकारा पाया। एक सबसे और अच्छी बात थी, ये अपने से छोटे बच्चों को सिखाते थे, उनमें बुराइयां बताते थे, उनको शिक्षित करते थे। 2 तरह का फायदा हुआ इस प्रोग्राम से। तो हम तो चाहते हैं इस तरह के प्रोग्राम और होते रहने चाहिए। सन 86 के आसपास भारतवर्ष में HIV का दौर शुरू हुआ। सन 88 में फिर मैंने HIV पर एक नेशनल फीचर, आधे घंटे का फीचर किया। उसमें हिन्दुस्तान भर में जा जाकर जो उस समय के अपने एक्सपर्ट थे, मुंबई में डॉक्टर गिलाडा थे, चेन्नई में डॉक्टर सोलोमन थे, और यहाँ के उनकी पेशेंट्स के इंटरव्यू किए, यहाँ होम्योपैथिक एक्सपर्ट्स, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स, एलोपैथिक एक्सपर्ट्स, WHO, इन सबके से इंटरव्यू करके, इनकी रिकॉर्डिंग करके 30 मिनट का प्रोग्राम एक फीचर किया।
0: विज्ञान जगत में किए गए अपने योगदान को याद करते हुए आकाशवाणी में कार्यरत पूर्व ADG मनोज पटेरिया ने अपने अनुभव इस तरह साझा किए।
2: मैंने नाटक भी लिखे विज्ञान पर, जो ब्रॉडकास्ट हुए। समय नाम का नाटक था, जो टाइम मशीन के ऊपर था, एक प्रदूषण के ऊपर था, जिसमें ये था कि किस प्रकार से प्रदूषण आने वाले समय में मुश्किलात पैदा कर सकता है।
3: अब बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और नवीन अनुसंधानों की। संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एनर्जी और बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। आईआईटी पटना के निदेशक डॉक्टर टीएन सिंह,
4: यहाँ पर 3 शोध के एक नए आयाम खुले हैं जिनको हम इनक्यूबेशन सेंटर कहते हैं, टीबीआई, टीआईएच। इन तीनों का मैंडेट अलग अलग है और इसमें एक नए नवाचार और नए तरह की शोध करने वाले विद्यार्थियों न केवल आईआईटी पटना के लेकिन बिहार और सुदूर

0: राज्यों से भी आए हुए विद्यार्थी इसमें काम करते हैं। नई एक शोध हमारे यहाँ के एक शिक्षक और विद्यार्थियों ने मिलकर किया है कि डिमेंशिया की बीमारी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है और उसके तहत उनका पेटेंट भी ग्रांट हुआ है। इस तरह से हमारे यहाँ 100 से ऊपर के पेटेंट फाइल हुए हैं और बहुत सारे ग्रांट भी हुए हैं। अभी वासिनी प्रोजेक्ट चल रहा है जो अंतर इंस्टीट्यूशनल कार्यक्रम है जिसमें कि कुछ IIT, कुछ NIT, कुछ यूनिवर्सिटी सभी मिलकर के ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें एक भाषा में यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है तो सुनने वाला अपनी लोकल भाषा में उसको समझ सके और उसको सुन सके और प्रश्न भी कर सके अपनी भाषा में, तो वक्ता के पास उसकी भाषा में जिसमें वो बोल रहा है उसको वो प्रश्न का उत्तर देगा। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही सफल प्रयोग है यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए और पहली बार IIT पटना से विदेश में बैटरी गई है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। बिहार में पहला सुपर कंप्यूटर IIT पटना के प्रांगण में स्थित है। हमारे यहाँ जो सुपर कंप्यूटर है ये ब्रह्मास्त्र का हम बोलते हैं, ये सुपर कंप्यूटर की 13 बाइट में इसकी स्पीड हो, 13 बाइट बहुत ही फास्ट स्पीड, त्वरित काम को निष्पादित करने का इसके अंदर जो है काम है। AI के क्षेत्र में काफी यहाँ काम हो रहा है, केवल हम भाषा तक ही नहीं, हम AI के क्षेत्र में फॉर्मेशन तक के अंदर किस तरह से 5G, 6G को स्पीड अप किया जाए उसके लिए भी, और क्वांटम में भी यहाँ का फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विभाग जो है वो राष्ट्रीय स्तर के जो मिशन है क्वांटम का उसके साथ जुड़े हुए हैं।
1: दुर्लभ खनिज यानी रेयर मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स, ये ऐसे खनिज हैं जो स्वच्छ ऊर्जा, विद्युत, वाहन, रक्षा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उन्नत विनिर्माण उद्योगों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर 17 खनिजों को दुर्लभ खनिज का दर्जा दिया गया है जिनकी मांग तेजी से बढ़ रही है क्योंकि विश्व ऊर्जा परिवर्तन यानी एनर्जी ट्रांजिशन और हरित प्रौद्योगिकी की ओर अग्रसर है। भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन या ANRF देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए धन देने, बढ़ावा देने और रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए अनिवार्य सर्वोच्च निकाय है। ANRF ने IIT पटना के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सुब्रत हती के परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबक से दुर्लभ खनिज के निष्कर्षण के अनुसंधान को ग्रांट दिया है।
2: जो आपका दुर्लभ खनिज है और हम लोग बोलते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स है, ये है कि आपका जो हम लोगों का डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होता है तो वो सब चीजों में ये दुर्लभ खनिज इस्तेमाल होता है। हर देश में किसी किसी जगह में आपका ये दुर्लभ खनिज के जो डिपॉजिट्स होता है, सो ये डिपॉजिट से अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं जो हम लोग उनको बोलते हैं कि प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी रिसोर्स, तो वो उसके जियोलॉजिकल हैजर्ड्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो होता है हमारे पास सेकेंडरी रिसोर्स होता है। सेकेंडरी रिसोर्स ये होता है कि जैसे ई वर्ज्य होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो भी हम लोग डे टू डे यूज करते हैं, तो सारा चीज एक यूजुअल लाइफ पीरियड के बाद वो ऑब्सोलीट हो जाता है और ऑब्सोलीट हो जाने के बाद क्या है कि उसमें उससे हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से उसको हम लोग निष्कासित करते हैं। निष्कासित करने के लिए आपके पास तरीका जो होता है, टेक्निकल तरीका, वो बोलते हैं कि पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी एंड बायोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी में हम लोग क्या करते हैं कि आपको हीट ट्रीटमेंट देते हैं और उससे क्या है कि अगर आप मेटेरियल प्राइमरी सोर्स पे अगर कोई मेटेरियल है प्लास्टिक है तो उसको जलाया जाता है तो उससे प्रदूषण हो सकता है। तो इसलिए दूसरा तरीका क्या होता है कि आपके पास हाइड्रोमेटलर्जी होता है। हाइड्रोमेटलर्जी में जनरली लोग क्या करते हैं कि एसिड और अल्काली यूज करते हैं, तो वो जो एसिड और अल्काली होता है वो जनरली कन्वेंशनली लोग उसका स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्काली यूज करते हैं। तो उसके बदले में अगर कुछ अल्टरनेटिव ये है कि अगर आप कुछ नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड यूज करें, और नाउडेज क्या है कि नोबेल जो टेक्निक आया है उसको बोलते हैं कि हम लोग डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट, उससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो हमें NRF से जो रिसर्च ग्रांट मिला है इससे हम लोग कर रहे सेकेंडरी रिसोर्स परमानेंट मैग्नेट। उससे परमानेंट मैग्नेट जनरली आप देखेंगे व्हीकल्स में यूज होता है, जनरली देखेंगे विंड मिल में यूज होता है। सो परमानेंट मैग्नेट जब वो ऑब्सोलीट हो जाता है उस परमानेंट मैग्नेट से, और मेजोरिटी ऑफ द सोर्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट आपका चाइना है, तो वो सब आप एक्सपोर्ट सब बंद कर दिया। जो डेवलप कंट्रीज है जिनके पास क्रिटिकल मिनरल का मेजोरिटी ऑफ द रिजर्व्स है वो लोग इसका दुर्लभ खनिज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। जो अगर स्वावलंबी बनना है भारत को तो इसलिए क्या है कि हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से ये सब पदार्थ और दुर्लभ खनिज निष्कासित करना है। तो इसी संदर्भ में ये जो परमानेंट मैग्नेट से क्रिटिकल मिनरल निष्कासित करना डीप यूटेक सॉल्वेंट लेके, ये एक हमारा पहल है जिसमें हम लोग काफी शोध कर चुके हैं और आगे शोध को हम लोग स्केल अप करेंगे।
3: और अब हम जानेंगे प्रवासी पक्षी के बारे में। प्रत्येक वर्ष हजारों लाखों किलोमीटर का सफर तय करके हमारे देश, हमारे शहर और हमारे इर्द गिर्द

0: पहुंचते हैं और इन्हीं पक्षियों के लिए 9 मई 2026 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम था हर पक्षी महत्वपूर्ण है, आपका नजरिया मायने रखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पक्षी दो प्रमुख वजहों से प्रवास करते हैं, भोजन और घोंसले की तलाश में ये पूरी दुनिया में प्रवास करते हैं। वर्ल्ड लाइफ के अनुसार विश्व के पक्षियों की 40% प्रजातियाँ अब घट रही हैं। प्रवासी पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनकी घटती संख्या जल की गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति कमजोर सहनशीलता का कारण बन रही है। भारत में हर साल 370 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। बिहार में 70 से अधिक प्रवासी पक्षियों सहित कुल 260 से ज्यादा प्रजातियों के 10,000 से अधिक पक्षियों की गणना की गई है। आप ईबर्ड बिहार पर जाकर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पटना, भागलपुर या और भी जो क्षेत्र हैं, उनमें हाल ही में देखे गए पक्षियों की सूची और चेकलिस्ट को देख सकते हैं। बिहार में प्रवासी पक्षियों के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर देव नारायण चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी डिपार्टमेंट, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर।
1: पिछले कई सालों से बिहार का जो वन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो और बॉम्बे की संस्था है बीएनएचएस, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इन दोनों के प्रयास से पक्षियों की गणना शुरू हुई है। 2022 से इसकी शुरुआत हुई और ये 26 लगभग 5 गणना हो चुकी और इससे काफी अच्छे परिणाम आए हैं। हम लोगों ने बिहार के 3800 जिलों में जितने भी इम्पोर्टेंट वेटलैंड है जहाँ पर इन पक्षियों का वास होता है, ये प्रवासी पक्षी जहाँ से आकर के पनाह लेते हैं, वहाँ पर इसकी गिनती शुरू हुई और इसमें जो भी पक्षी विशेषज्ञ थे, जो बर्डर थे, जो ट्रेनर थे, उन लोगों को इसमें लगाया गया और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑर्डिनेटर की बहाली हुई जो एक्सपर्ट के रूप में काम करते हैं। इससे अच्छे परिणाम आए तो धीरे धीरे हर साल कुछ कुछ वेटलैंड की संख्या भी बढ़ती चली गई, उसको भी हम लोग कवर करते हैं। तो इसमें देखा गया कि एक अच्छा डाटा तैयार हो गया और आने वाले दिनों में बिहार के पक्षियों पर एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। जो इसके पहले 2012 में ही एक बुक पब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा, बर्ड्स ऑफ बिहार, उसका जो इन्फॉर्मेशन था उससे कहीं ज्यादा इस रिपोर्ट के बाद जो ये छपेगा, तो आने वाले दिनों में जो एकेडमिक्स के फील्ड में ये एक अच्छी जानकारी साबित होगी।
0: और अब जानते हैं विज्ञान जगत की नवीनतम घटनाओं के बारे में। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाला सुपर एल नीनो 1950 के बाद सबसे शक्तिशाली में से एक हो सकता है, जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह कई क्षेत्रों में बाढ़, सूखा, हीट वेव और जंगलों में आग जैसी घटनाओं को बढ़ा सकता है। जलवायु परिवर्तन इसकी प्रकृति को और अधिक अनिश्चित बना रहा है। सुपर एल नीनो का मतलब समुद्र के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की असामान्य बढ़ोतरी से है, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है। खासकर दक्षिण एशिया पर इसका अधिक असर पड़ता है।
2: भारत के असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली बार सैटेलाइट ट्रैक की गई गंगा सॉफ्ट शेल कछुए को छोड़कर संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। यह संवेदनशील मीठे पानी की प्रजाति का कछुआ है जो नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके व्यवहार, प्रवास और पर्यावरणीय खतरों के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए ट्रैक की जा रही है। यह पहल वैज्ञानिकों को इस जलीय सरीसृप प्रजाति के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने में मदद करेगी। इस प्रजाति को असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है। और अब स्वाद और सेहत से भरपूर बिहार की पहचान मखाना के बारे में जानते हैं। सुपर फूड बन चुका मखाना अब वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। मखाना अनुसंधान केंद्र में मखाना की नई प्रजातियों और उत्पादन तकनीकों पर कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में ICAR राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार।
3: कोरोना काल के बाद से जब स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता काफी तेजी से बढ़ी है, तो मखाना में पाए जाने वाले जितने औषधीय गुण है, इसमें पाई जाने वाली जितनी पौष्टिकताएं हैं, तो इन गुणों के प्रति, इन स्वास्थ्य लाभों के प्रति बहुत तेजी से दुनिया भर में जागरूकता हुई है। इसमें मिनरल्स काफी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम। पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे न्यूट्रिशन के लिए, जैसे आयरन, जिंक इत्यादि बहुत अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। इसके अलावा ये जीरो फैट फूड इसे मानते हैं, इसमें फैट की मात्रा बहुत ही कम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें बहुत कम होता है, मधुमेह के जो मरीज हैं वो भी बहुत सुगमता से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, मोटापे की समस्या से जो ग्रसित है वो भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि फैट इसमें बहुत कम है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के माध्यम से भी एक नई प्रजाति अभी विकसित की जा रही है और मेरा मानना है कि

0: अगले एक वर्ष में ये वैरायटी आ जाएगी, जिसकी उत्पादन क्षमता यहाँ से करीब 15-20% और ज्यादा होगी। और इसके अतिरिक्त कांटे रहित मखाना के प्रभेदों के विकास पर भी अभी चर्चा हो रही है।
1: हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को सीमित करने की बात कही है, ताकि खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा को प्राप्त किया जा सके। बिहार के 13 जिलों में जैविक खेती की जा रही है। कृषि विज्ञान में खरीफ खाद्यान्न की नई प्रजाति के विकास एवं ब्लू अलगी जैविक उर्वरकों के उपयोग के संबंध में बता रहे हैं डॉक्टर दिव्यांशु शेखर, कृषि विज्ञान केंद्र जाले दरभंगा।
2: जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को प्राथमिकता में रखा है कि हम रासायनिक उर्वरकों से हटकर प्राकृतिक या जैविक उर्वरकों की तरफ बढ़े, जिससे कि न कि हमारा फसल की उत्पादकता बनी रहे, साथ में ही उसकी गुणवत्ता में भी कोई ह्रास न हो। खास तौर पे धान की फसल में जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसको हम अजोला कहते हैं, उसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है या आवश्यकता है वो 10-20% तक हम उसके द्वारा कम कर सकते हैं। साथ में ही इसके प्रयोग करने से हमारे भूमि में कार्बनिक तत्वों की भी मात्रा बढ़ती है और साथ साथ जो खरपतवार होते हैं उनकी भी संख्या कम होती है।
3: और अब अंतरिक्ष की बात। हाल ही में विश्व का पहला ऑप्टो SAR सैटेलाइट मिशन दृष्टि लॉन्च किया गया। यह एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट है। अंतरिक्ष क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों के बारे में हमसे बात की भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुअनंतपुरम के कुलपति प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी ने।
4: दो चीज होता है, देखिए आप जो 100 साल से हम लोग कोडाइकनाल से सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं, ये जरूरी इसीलिए है कि वो हमारे सबसे नजदीकी तारे हैं, उसका चुंबक क्षेत्र का कुछ परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन का एक 11 साल का एक हम बोलते हैं सोलर साइकिल जैसा है, तो कभी कभी उसमें चुंबक क्षेत्र थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी कभी थोड़ा कम होता है। एंड ये जो बढ़ना और कमना का जो ऑसिलेटर पैटर्न जो है, उसको स्टडी करने के लिए एक डायनामो मैकेनिज्म को हम लोग मैथमेटिकली अब इस्तेमाल करते हैं। सोलर डायनामो एक थ्योरी है जो हमको समझने के लिए ये करते हैं कि क्यों ऐसा सूर्य में चुंबक क्षेत्र 11 साल का एक पीरियोडिसिटी क्यों रहता है। बट ये तो एक थ्योरी हो गया, थ्योरी को तो मैच करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए। ऑब्जर्वेशन जितना लंबा होगा तभी इतना अच्छा है, इसीलिए ये कोडाइकनाल में ऑब्जर्वेशन हम लोग 1904 साल से चालू किया। उसी जमाने में तो फोटोग्राफिक प्लेट होता था, फिल्म होता था, हमने वो पूरा जो आर्काइव है उसको पूरा डिजिटाइज किया है। आजकल का जमाना में तो कोई हाथ से तो कुछ करते नहीं, आपको इमेज होना चाहिए जो डिजिटल मोड है। एक्चुअली पुराना आर्काइव है उसको डिजिटाइजेशन करना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। तो ये 100 साल का पूरा डेटा डिजिटाइज करने के बाद हमने अभी अध्ययन किया कि ये 11 ईयर साइकिल कैसा होता है। कभी कभी एक साइकिल थोड़ा बड़ा होता है, कभी थोड़ा छोटा होता है। जब बड़ा होगा उसमें सोलर जो तूफान वो और ज्यादा होगा, जब थोड़ा चुंबक क्षेत्र थोड़ा कम होगा तो वो भी जानकारी होना चाहिए। एक तो है कि अभी हाल ही में ये तूफान आने वाला है या नहीं आने वाला, ये जानकारी। और एक है कि पहले ऐसा तूफान होता था कि नहीं होता था। अभी सन जो स्टार वो मिडिल एज में है, वो जब बड़ा हो जाएगा, वो रेड जायंट हो जाएगा, हम तो बच नहीं पाएंगे। अभी मिलियनियर में नहीं होने वाला है तो अभी सोचने का नहीं है, बट ये सब जानकारी होना चाहिए।
1: मई का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद खास है। कई महानतम वैज्ञानिकों का जन्म हुआ जिन्होंने भौतिकी, चिकित्सा और रासायन विज्ञान की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इस महीने देश के कुछ ऐसे महान वैज्ञानिक और गणितज्ञों का जन्म हुआ जिन्होंने न केवल भारत में आधुनिक विज्ञान और परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी बल्कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। डॉक्टर राजा रमन्ना, आप भारत के परमाणु कार्यक्रम के शिल्पकार कहे जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1925 को तुमकुर कर्नाटक में हुआ। KR रामनाथन, आप भारत के मौसम विज्ञान और ओजोन अनुसंधान के जनक माने जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1893 को पलक्कड़ केरल में हुआ। हरीश चंद्र, जो कि गणित और भौतिकी के महान सेतु कहे जाते हैं, आपका जन्म हुआ 11 मई 1923 को कानपुर उत्तर प्रदेश में। आप महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के सहायक भी रहे। आपने लाइक ग्रुप्स और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में क्रांतिकारी सिद्धांत दिए जिन पर आज भी क्वांटम मैकेनिक्स और आधुनिक गणित टिकी हुई है। हमारे अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विजय भटकर, आप भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। आपका जन्म

0: 11 मई 1946 को मोरंबा महाराष्ट्र में हुआ। आपके नेतृत्व में सीडेक ने साल 1991 में भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया। आगे नाम आता है प्रोफेसर डॉक्टर बलराम भार्गव का, जिनका जन्म 3 मई 1961 को हुआ था। आप भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे। पूरी दुनिया जब सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रही थी, तब भारत की वैज्ञानिक लड़ाई का नेतृत्व करने वाले मुख्य चेहरों में डॉक्टर भार्गव का नाम सबसे आगे था। और अब हम जानेंगे मई महीने में दुनिया ने विज्ञान जगत के कुछ बेहद प्रतिष्ठित चेहरों को खोया है। डॉक्टर मोनिका मोंटे फाल्कोन, आपका निधन 14 मई 2026 को हुआ। आपने समुद्री पारिस्थितिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर विलियम चार्ल्स लिविंगस्टन, आपका निधन 2 मई 2026 को 98 वर्ष की आयु में हुआ। आपने सौर खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया।
1: आज विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को याद करते हुए हमारे सुधी श्रोताओं ने अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। बिहार विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार,
2: शब्द ब्रह्म के मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए देश के जन जन की आवाज एवं सूचना क्रांति के उद्घोष के प्रतीक आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के गौरवमयी प्रसित्व के 90 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण आकाशवाणी परिवार और इसे करोड़ों श्रोताओं को मैं प्रेम कुमार, अध्यक्ष बिहार विधानसभा, हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। 8 जून 1936 को अपनी औपचारिक यात्रा शुरू करने वाला आकाशवाणी आज केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं, बल्कि स्वतंत्र भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विकास का जीवंत साक्षी। स्वाधीनता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत का निर्माण तक आकाशवाणी राष्ट्र के सूत्र में पिरोने का अभूतपूर्व कार्य किया है। संकट और आपदा के समय इसकी प्रमाणिक खबरों ने हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है, जिससे इसकी विश्वसनीयता आज भी शून्य है। जन जागृति और राष्ट्र निर्माण सुदूर गांव, खेतों, खलिहानों और सीमावर्ती क्षेत्रों तक ज्ञान और चेतना का प्रकाश फैलाने में इस माध्यम की भूमिका रहती है। कृषि सुधारों से लेकर मन की बात जैसे संवादों के माध्यम से इसने जन जागृति को एक नई दिशा दी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति तक सरल भाषा में पहुंचाकर आकाशवाणी ने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के संकल्प को सिद्ध किया है। मैं इस अवसर पर आकाशवाणी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं कि अद्वितीय संस्थान आदि की अपनी स्पष्टता, राजभक्ति और सेवा से देश को आलोकित करता रहेगा। रेडियो की वह मधुर पुकार आज भी दिलों में बसती है। आकाशवाणी की हर धुन भारत की आत्मा से लगती है।
0: पंचायती राज्य मंत्री बिहार सरकार दीपक प्रकाश,
3: मैं दीपक प्रकाश, मंत्री पंचायती राज विभाग, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबों के सामाजिक जीवन में, देश के राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में और साथ ही साथ जो हमारा देश का इतिहास है, उन सबों में आकाशवाणी का एक विशेष रोल रहा है। आजादी की लड़ाई हो या विभिन्न कालखंडों में जन आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने का काम हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने कमेंडेबल काम किया है। हम सबों के बचपन की यादें भी आकाशवाणी से जुड़ी हैं। क्रिकेट की कमेंट्री आकाशवाणी पे सुननी हो, पुराने गाने आकाशवाणी पे सुनने हो, सभी विद्यार्थियों के लिए टॉक शोज के माध्यम से ज्ञानवर्धन करने की बात हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने काम किया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ आकाशवाणी ने अपने को बदलने का भी काम किया है। एनालॉग से डिजिटल तक का सफर आकाशवाणी का विशेष रूप से कमेंडेबल है। आज के इस चकाचौंध और दिखावटी मीडिया के दौर में आकाशवाणी का एक विशेष स्थान है, जो कि हमें अपने जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। आकाशवाणी का विशेष रूप से हम धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहेंगे कि आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबों के बीच किया जाने वाला मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है। एक बार पुनः आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे करने के लिए बधाई देते हुए, और आकाशवाणी हम लोगों के बीच जीवन का और हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, आज के युवा आकाशवाणी से जुड़े, इस बात की शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
4: मेरा नाम नीलम चौधरी है, मैं एक्स आईएएस ऑफिसर हूं और एक कथक डांसर भी हूं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आकाशवाणी का नाम आते ही एक स्पंदन सा होने लगता है और याद आता है अपने स्टूडेंट लाइफ का वो स्टडी टेबल जहां हमेशा एक ट्रांजिस्टर रखा रहता था। चूंकि मैं म्यूजिक की फील्ड से हूं, इसीलिए म्यूजिक के लगभग सब सब कार्यक्रम मैं आकाशवाणी का सुना करती थी, चाहे वो शास्त्रीय संगीत का हो या फिल्मी गानों का हो, गैर फिल्मी गानों का हो, भजन हो, लोक संगीत हो, मैं सब कार्यक्रम सुनती थी और वो सारे गाने मुझे कॉन्सेंट्रेशन देते थे और मुझे पढ़ाई अच्छी मेरी होती थी। मैंने महसूस किया है कि आकाशवाणी ने समाज के हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों को अपने कार्यक्रम में इनकॉर्पोरेट किया है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र से हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र से हो, तकनीकी क्षेत्र से हो, नारी सशक्तिकरण की बात हो, लगभग सभी क्षेत्र के लोगों के लिए इसने कार्यक्रम बनाया है। बच्चों के लिए हो, शाम में 7:30 बजे अनंत सिंह का न्यूज होता था, वो तो बहुत ही लोकप्रिय था और बहुत स्पष्ट और बहुत अनबायस्ड कार्यक्रम हुआ करता था। उसके अलावा नाटक में हवा महल और लोहा सिंह का नाटक हम लोग बहुत इंतजार करते थे और सुनना करते थे। तो ये रिचनेस आकाशवाणी में शुरू से रहा है। आज भी हर वर्ग के लिए कार्यक्रम बनाना, उसे सक्सेसफुली प्रसारित करना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है आकाशवाणी की और मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से 90 वर्षों का सफर तय हुआ, उससे भी और आगे बढ़कर आकाशवाणी अपना कार्यक्रम करे, लोगों में प्रिय रहे और हर वर्ग के लोग इसमें जुड़े रहें।
1: प्रोफेसर दिनेश सिंह, पद्मश्री, उपाध्यक्ष जम्मू एवं कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद और पूर्व कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय,
5: पूर्ण रूप से अपने हृदय से बधाई दे रहा हूँ आकाशवाणी से जुड़े सारे जो हमारे सहयोगी हैं। और मैं चाहता हूँ कि इसको एक त्योहार के रूप में भारत में मनाया जाए, त्योहार के रूप में कि आकाशवाणी ने भारत के लिए क्या किया। मैं आकाशवाणी से बचपन से जुड़ा हूँ और आकाशवाणी से अमृत बरसता है पूरे देश में, विश्व में। मैंने यहाँ से इतनी रचनात्मक युक्तियों को ग्रहण किया है, इसने भारत की आत्मा को आकाशवाणी ने सींचा है। अब इसके जो एनिवर्सरी आ रही है, इसके 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हम सबको इसमें भागीदारी लेनी है और इस उत्सव को पूर्ण रूप से अपनी अपनी जगह मनाना है। आकाशवाणी ने भारत का बहुत भला किया है।

0: ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे नई जानकारियों, नवीन शोध परक बातों एवं विज्ञान जगत की हलचलों के साथ।
1: तो सीखें कुछ नया, सोचे कुछ अलग। आज की विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती को तैयार करने में स्वर सहयोग रहा अल्पी कुमारी और संजय किशोर का। संयोजक थे दिलीप झा और प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार। आकाशवाणी पटना।
0: नमस्कार।

ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं श्री सीपी माधवन नंबूदरी द्वारा प्रस्तुत कर्नाटक शास्त्रीय गायन। श्री सीपी माधवन नंबूदरी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से चंदनाशेरी माधवन नंबूदरी के नाम से जाना जाता है, आकाशवाणी के ए ग्रेड वोकल आर्टिस्ट हैं और कर्नाटक संगीत में दो दशकों से अधिक के उत्कृष्ट योगदान के साथ अत्यंत सम्मानित कलाकार हैं। उन्होंने 500 से अधिक एकल प्रस्तुतियां की है, जिनमें से अनेक में प्रसिद्ध कलाकारों जैसे डॉक्टर टी के मूर्ति, डॉक्टर उमायालपुरम के शिवरामन, श्री श्रीमुष्णम राजा राव तथा श्री मन्नारगुड़ी ईश्वरन ने संगति की है। उनके कार्यक्रम विदेशों में भी आयोजित हुए हैं, जिनमें अमेरिका, पेरिस, दक्षिण पूर्व एशिया तथा खाड़ी के देश शामिल हैं। केरल के चंगनाशेरी में जन्मे माधवन नंबूदरी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा अपने प्रथम गुरु श्री पीजी पद्म कुमार से प्राप्त की। बाद में वे स्वर्गीय टीवी शंकर नारायणन के शिष्य बने तथा उन्हें श्री पीआर कुमार केरल वर्मा और श्री कलन्यूर चंद्रशेखरन जैसे प्रसिद्ध संगीतज्ञों से उन्नत मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। वे आरएलवी संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय त्रिपोणितरा में पूर्व संगीत प्रवक्ता रह चुके हैं। उन्हें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से जून

0: अब प्रस्तुत है केसी केशव पिल्ले की एक कृति श्री बालकृष्ण पाहिमाम, जो राग पूर्वी कल्याणी पर आधारित है और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू श्री बालकृष्ण पाहिमाम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ केसी केशव पिल्ले इन द राग पूर्वी कल्याणी सेट टू रूपक ताल।

0: अपने गायन को जारी रखते हुए श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अब प्रस्तुत कर रहे हैं श्यामा शास्त्री द्वारा रचित रावे हिमगिरी कुमारी, जो राग तोड़ी पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: द नेक्स्ट आइटम इज रावे हिमगिरी कुमारी इन द राग तोड़ी सेट टू आदि ताल कंपोज्ड बाय श्यामा शास्त्री।

0: इसके साथ ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी का गायन समाप्त होता है। इनके साथ वायलन पर विद्वान तिरुविजा विजु एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार ने संगति की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: With that, we conclude the vocal recital by Sri C.P. Madhavan Nambudiri in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Vidwan Tiruvida Viju S. Anand on the violin, Vidwan Kottayam G. Santosh Kumar on the mridangam, and Sri Vadapalli R. Krishna Kumar on the ghatam. This broadcast was recorded at Akashavani Tiruvida.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: भारत ने पैक सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांचकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग

0: the people of India. In IPL cricket, Punjab Kings defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets at Ikana Cricket Stadium in Lucknow tonight. Chasing a target of 197 runs set by Lucknow Super Giants in Lucknow, Punjab Kings made 200 for 3 in 18 overs. Earlier, Punjab Kings won the toss and opted to bowl. Put into bat, Lucknow Super Giants posted 196 runs for the loss of 6 wickets in stipulated 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम में 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। रात के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर इसी मीटर पर आपके सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।